FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त सन 2026। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब प्रारंभ होती है।

0: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, NPCI और भारतीय रिजर्व बैंक UPI को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने महज 3 वर्षों में 1000 किलोमीटर से अधिक सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में 3रे भारत अंतर्राष्ट्रीय फिनटेक महोत्सव में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच नजदीकी सहयोग से भारत का फिनटेक क्षेत्र देश के आर्थिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण चालक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश के फिनटेक क्षेत्र में विकास के अगले चरण में AI, क्वांटम प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन और विश्वसनीय डिजिटल नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्रीय स्मारक का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति कल विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस निर्णय पर संसद निर्णय करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष

0: जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। इस बीच दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी में समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से FM 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत आइए करते हैं अपनी मातृभूमि के चरणों में नमन करते हुए समूह स्वरों में इस देश वंदना के साथ।

समूह स्वरों में ये देश वंदना अभी आपने सुनी, और अब लीजिए सुनिए ये कबीर भजन वाणी जयराम की आवाज़ में।

वाणी जयराम की आवाज़ में ये भक्ति रचना हम आप तक पहुंचा रहे थे, और अब लीजिए सुनिए चित्रा सिंह का गाया ये भक्ति गीत। संगीत है जगजीत सिंह का।

चित्रा सिंह का गाया ये भजन अभी आपने सुना। और अब लीजिए सुनिए अगली भक्ति रचना हरिओम शरण की आवाज़ में।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में मीरा बाई की ये रचना अभी हम आपको सुनवा रहे थे। और अब इसी भक्ति गीत के साथ ही देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं समाप्त हुआ। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेती की बात। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय है करेला के उन्नत खेती। वाचन स्वर नंद कुमार यादव का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, आज खेती की बात मा लेके पहुंचे हवन करेला के उन्नत खेती के बारे मा जानकारी। संगवारी हो, करेला के अब्बड़ कन जिनिस मा उपयोग होते, जौन ल हमन औषधि के रूप मा, पोषक तत्व के रूप मा और स्वास्थ्य के लाभ बर उपयोग मा लाथन। एकर बाजार मा अब्बड़े मांग रही थे। एकर उपयोग हमन जूस बनाए मा घलाओ करथन, जौन मा विटामिन B1, B2, बीटा कैरोटीन, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज अतका कन मात्रा करेला के फसल जौन हे, करेला के फर जौन हे तेमा पाए जाते, जौन हर हमर खून, लीवर और इम्यून सिस्टम ला बढ़िया ले बढ़ाते, वजन घलाव ला नियंत्रित करे मा मदद करते। आवाओ जाना थन के एकर बर कौन प्रकार के विधि ला चेत करीन। संगवारी हो, करेला के फसल लगा थन तो माटी के चेत करे बर लगते बढ़िया पानी निकासी वाला रेतीली दोमट माटी रहे, जेमा जैविक तत्व के मात्रा हर ज्यादा रहना चाहिए। माटी के जौन पीएच मान है तेन हर 6.5 से 7.5 हवे तो करेला के खेती करे बर सुघर होती। करेला के अब्बड़ कन प्रजाति आते संगवारी हो, जेला लगा के हमन बढ़िया लाभ ला ले सकथन। एमा पंजाब करेला 15, पंजाब करेली 1, पंजाब 14, अर्का हरित, पूसा विशेष, ए नाव के किसम मन बढ़िया रही थी। भूइया के तैयारी करे बर बढ़िया ले 2-3 पैत जोताई ला कर लेवाय, जेकर ले माटी हर बढ़िया भुरभुरा रही थी। बोवाई करे के जौन बेरा है तेन हर अभी के बेरा हर सुघर होते। 1.5 मीटर के चौड़ा बेड के दोनों कति बीजा ला लगाथन तो बढ़िया रही, और पौधा ले पौधा के दूरिया ला 45 सेंटीमीटर के रख के गड्ढा मा 2.5 से 3 सेंटीमीटर के गहिला मा बीजा ला बोवाथन तो बने रही थी।

0: एकर बोवाई करे के जउन ढंग हे तेकर बर गड्ढा खोद के बोवाई ला कर सकत हन। बीजा के बात करीन तो 2 किलोग्राम बीजा प्रति एकड़ के दर ले उपयोग मा लाए जाथे। बोवाई करे के पहली बीजा ला 25 ले 50 जिब्रेलिक एसिड ले उपचारित करके लगाथन तो बनी रही थे। संगवारी हो खातू माटी के घलाव चेत रखे बर पड़थे, जेमा सरह गलहा गोबर के खातू ला 10 ले 15 टन, नाइट्रोजन 13 किलो, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटेशियम 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर ले डालना चाहिए। फास्फोरस और पोटेशियम के जम्मो मात्रा ला और नाइट्रोजन के 1/3 मात्रा ला बीजा के बुवाई के पहली देवाथन तो बनी रही थी। बाकी बांचे वाला नाइट्रोजन ला बुवाई के 1 महीना के बाद देहे जाते। संगवारी हो सिंचाई के बात करें तो एकर मौसम अनुसार 8 ले 9 सिंचाई के आवश्यकता हर होते। बंद कचरा के रोकथाम करे बर हाथ ले निंदाई गुड़ाई के काम बुताला कर लेवाय। 2 ले 3 पैत निंदाई गुड़ाई के आवश्यकता हर पौधा के शुरुआती बेरा मा बढ़वार के बेरा ज्यादा लगते। खातू के मात्रा डाले के बेरा माटी मा निंदाई गुड़ाई के काम बुताला करत हन तो सुघर रही। बारिश के मौसम मा हमन माटी ला चढ़ात हन तो एकर फसल हर बनी रही थी। संगवारी हो ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके करेला के फसल लगात हन तो उपज हर और आमदनी हर ज्यादा मिलही। एकरे संग जय जोहार, राम राम।
1: कार्यक्रम खेती की बात अभी श्रोता सुन रहे थे। कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय था करेला की उन्नत खेती। वाचन स्वर था नंद कुमार यादव का। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम रामचरितमानस गान। गायन स्वर सुरेश वाडेकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

राम लक्ष्मण को छोड़ जब सीता को भी किसी भांति गंगा तट से लौटा लाने की मंत्री सुमंत्र की सभी युक्तियां निष्फल रहीं, तो उन्होंने रथ को अयोध्या की ओर हांका। राम से बिछुड़ते हुए रथ में जुटे अश्वों की हिनहिनाहट रूपी विकलता देख पास खड़ा निषाद समूह सिर धुन-धुन कर पछताने लगा। गंगा पार करने के लिए नाव की आवश्यकता थी। राम ने नाव मांगी किंतु केवट नाव नहीं लाता, कहता है, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के बारे में सभी कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। यदि उसकी नाव भी मुनि पत्नी की भांति उड़ गई तो उसके परिवार की तो रोजी मारी जाएगी। लक्ष्मण यदि उसे तीर भी मार दें तो भी वो बिना राम के चरण पखारे उन्हें नाव पर नहीं चढ़ाएगा। कैसा विलक्षण दृश्य है! एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं। जिन्होंने वामनावतार लेकर जगत को तीन पग से भी छोटा कर दिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र गंगा पार कराने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं, और फिर गंगा पार ले जाकर वही केवट उतराई नहीं लेता। कहता है, नाथ आज मैं कह न पावा।

0: कार्यक्रम रामचरित मानस गान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। गायन स्वर था सुरेश वाडेकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है सत्यमेव जयते, आलेख डॉक्टर रामानुज शर्मा का।
1: संसार के विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में अनेक मतभेद रहने पर भी सत्य के विषय में सबका एक मत है। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में सत्यमेव जयते नानृतम, सद्गुरु तेरी ओट, सद्गुरु साहब, सत्यनाम सार, सत्य साईं, सत्य ही ईश्वर है, सच्चे खुदा और सांचा तेरा नाम इत्यादि उक्ति के रूप में सत्य की महत्ता का उल्लेख है। यहां तक कि अनेक विद्वानों ने भी सत्य को भिन्न भिन्न रूपों में प्रतिपादित किया है। महावीर स्वामी ने सत्य को चंद्रमंडल से भी अधिक सौम्य और सूर्यमंडल से भी अधिक तेजस्वी कहा है। वेद व्यास के अनुसार सत्य से बढ़कर धर्म नहीं है और सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास ने माना है कि सत्य ही समस्त पुण्यों की जड़ है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के विचार में सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है और सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। महात्मा गांधी ने कहा था कि परमेश्वर सत्य है, ये कहने की बजाय सत्य ही परमेश्वर है ये कहना अधिक उपयुक्त है। स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है पर सत्य को किसी भी चीज के लिए छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी बलि नहीं दी जा सकती। पंडित सुंदरलाल शर्मा का आह्वान था कि सत्य के लिए मत डरो, चाहे जियो या मरो। इसी तारतम्य में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की उक्ति उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा था कि सत्य को कह देना ही मेरे मजाक करने का तरीका है। संसार में यह सबसे विचित्र मजाक है। इसी संदर्भ में संत कबीर का वो दोहा जिसे हम यदा कदा पढ़ते रहते हैं, हृदय ग्राही है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वास्तव में सदा

0: अतः सच बोलने वालों के लिए झूठ बोलने की बाध्यता धर्म संकट का रूप ले लेती है। हाँ, जहां सत्य बोलने या चुप रहने से किसी निरपराध जीव के प्राण जाते हों और अपने प्राण देने पर भी उसके बचने की संभावना न हो, वहां तुलनात्मक दृष्टि से एक बड़े पुण्य कार्य के लिए झूठ बोलने का पाप भी अपने सिर उठाया जा सकता है। यहां भी मिथ्या भाषण पाप अवश्य है, परंतु दूसरे की प्राण रक्षा के लिए इस पाप का स्वीकार करना भी आवश्यक है, या यूं कहें कि एक प्रकार का त्याग है। इसी परिप्रेक्ष्य में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्राणियों का हित करना और यथार्थ बोलना ही सत्य है। इसलिए दूसरों के हित का पूरा ख्याल रखकर यथासाध्य यथार्थ करना ही सत्य समझा गया है। अब सवाल ये उठता है कि जहां दो विचार आपस में अड़ जाते हैं, वहां क्या करना चाहिए? मान लीजिए एक गाय दौड़ी जा रही है, उसके पीछे एक कसाई मारने को दौड़ता है। गाय जाकर जंगल में छिप गई, किसी ने उसे देखा। कसाई पीछे से आकर उससे पूछता है कि बताओ गाय इधर से कहां गई। अब यदि वो गाय का पता बतलाता है तो कसाई गाय को मार डालता है, जिससे हिंसा होती है। यदि कहता है कि मैं नहीं जानता तो असत्य होता है। ऐसे धर्म संकट में उसे क्या करना चाहिए? ऐसे विषम परिस्थिति में अपनी बुद्धि काम न दे तो साधु पुरुषों की राय अधिक महत्व रखती है। देवी भागवत में उद्धृत एक श्लोक के अंश का सहारा लिया जा सकता है। या पश्यति न सा ब्रूयते, या ब्रूयते सा न पश्यति। अर्थात जो देखती है वो बोल नहीं सकती, जो बोल सकती है वो देख नहीं सकती। इसलिए बिगड़ते काम को अन्य विधियों से टाल देना ही श्रेयस्कर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सांप मरे लाठी न टूटे, यानी काम भी हो जाए और नुकसान भी न हो। अंततः सत्य की ही जीत होती है। इसीलिए सत्य को शिव और शिव को सुंदर कहा गया है। अर्थात सत्य रूपी धर्म के सहारे कल्याणकारी तत्व को प्राप्त करके सुंदरता तक पहुंचा जा सकता है। सत्यम परम धीमहि।
1: कार्यक्रम चिंतन अभी श्रोता सुन रहे थे। आज का विषय था सत्यमेव जयते। आलेख था डॉक्टर रामानुज शर्मा का। 6:50 हुए हैं प्रातः की, और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं कार्यक्रम विवरण। अब आपको जानकारी दे दे, हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले शेष

आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे आज रात 8 बजे इस सप्ताह संसद में। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह सुबह 8:30 पर और कार्यक्रम बातों बातों में सुबह 9 बजे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ही शाम 7:30 पर अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम किसानवाड़ी। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का समय होगा हमेशा की तरह सुबह 7:05 का और इस कार्यक्रम के बाद आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे का।

सुबह 10 बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम अमराई। कार्यक्रम में सुनिएगा बैतल राम साहू, आशा साहू और साथी, और भीम यादव और साथियों के गाए कुछ चुनिंदा छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
0: आपकी रक्षा में पूरी।
2: कार्यक्रम नए तराने सुनेगा सुबह 10:30 पर और शाम 5:05 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। शाम 5 बजे प्रसारित करेंगे सीएफ विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुनने का समय होगा शाम 5:35, शाम 6:20 और शाम 7 बजे का। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले होंगे सुबह 9:15 पर, दिन के 11 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम रात 9:15 से रात 11 बजे तक। रात 8:15 पर होगा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रजनीकंदा। समाचारों का अनुप्रसारण प्रतिदिन की तरह उनके निर्धारित समय पर किया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं, थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे।
3: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। संसदा सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयकं 26 पारितम्। लोकसभया एतद् ह्यः अनुमोदितम्। राज्यसभया च सोमवासरे एव पारितम्। विधेयकस्यास्य उद्देश्यमस्ति धनदाने विलम्बनस्य निवारणम्, विवाद समाधानस्य च सरलीकरणम्। अस्य विधेयकस्य अनुसारं प्रत्येकः केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रोपक्रमः व्यापार प्राप्य विपणन व्यवस्थायाः अन्तर्गतं सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः वस्तूनां सेवानां वा क्रयण सम्बद्धानां सर्वेषां देयानां निस्तारणं करिष्यति। विधेयकानुसारं विवादस्थितौ मध्यस्थता विफला भवति चेत् तस्यै सन्दर्भः मध्यस्थतायाः समाप्तेः दिनांकात् 30 दिनाभ्यन्तरे एव करणीयः। नीट सम्बद्धे छात्रान्दोलने कथितारक्षकैः कृतकार्याणि सहितेषु विविधविषयेषु विपक्षस्य कोलाहलकारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणं पुनरपि बाधितम्। विपक्षसदस्यानां निरन्तरविरोधकारणात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं भोजनावकाशात् पूर्वमेव स्थगितम्। विपक्षस्य कोलाहलकारणात् उभयोः सदनयोः प्रश्नकालः अपि न प्रवर्तितः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य 57वें दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयिष्यति। समारोहेऽस्मिन् असौ विद्यावारिधि शोध छात्रेभ्यः सह 3,000+ छात्रान् सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् प्रसंगे सः मेधावीभ्यः विविध स्वर्ण पदकानि प्रदास्यति। सहैव सोनीपत परिसरे परम प्रज्ञा इति कृत्रिम बुद्धि आधारित सुपर कंप्यूटर इति संगणक विशेषस्य आभासीय माध्यमेन उद्घाटनं विधास्यति। झारखंड राज्यस्य जेपीएससी JSSC अथ अन्यासामपि प्रतियोगी परीक्षाणां विवादः अद्य विधानसभायां चर्चितः। झारखंड विधानसभायाः प्रावृष सत्रस्य द्वितीये दिने विपक्षेण एषः विषयः समुत्थापितः। सहैव परीक्षाणां निरस्तीकरणस्य CBI निरीक्षणस्य च याचना विहिता। प्रशासन

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधि मंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सरकार की ओर से चार मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र

0: मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शनों में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति श्री विजयपुरम स्थित सेलुलर जेल राष्ट्र स्मारक का दौरा करेंगे। वे शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उपराष्ट्रपति कल श्री विजयपुरम के फ्लैग प्वाइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह महाराष्ट्र के राज्य शहरी सहकारी बैंक महासंघों और जिला संघों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और राजस्थान में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। इधर दिल्ली में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जा रहा था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथी, स्वीकार कीजिए आपकी अपनी रेडियो साथी खुशबू का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, सुबह की ताजी हवा, चिड़ियों की मधुर चहचाहट और बादलों के बीच से झांकती सूरज की सुनहरी किरणों की लुका छिपी एक नए दिन की शुरुआत का संदेश दे रही है। सावन का ये महीना अपने पूरे सौंदर्य के साथ हमारे बीच में है। कहीं हल्की हल्की बारिश हो रही है तो कहीं तेज झमाझम काले मेघ बरस रहे हैं। खेतों में हरियाली की चादर बिछी हुई है और किसान भी अपनी फसलों की देखभाल में जुटे हुए हैं। प्रकृति हर किसी को ये संदेश दे रही है कि धैर्य और मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है, लेकिन इस मौसम में थोड़ी सी सावधानी भी ज़रूरी है। श्रोताओं, इन दिनों सर्दी खांसी खासकर वायरल बुखार जैसी परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, तो साफ पानी पीजिए, ताज़ा गर्म भोजन कीजिए, बाहर का खाना खाने से बचें, घर का बना पौष्टिक भोजन करें, फल सब्जियों का सेवन करें,

0: कहीं तेज गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना हो तो खुले मैदानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के नीचे खड़े होने से हमें बचना चाहिए। छोटी सी सावधानी किसी बड़ी दुर्घटना से हमें बचा सकती है। श्रोताओं, बारिश में सड़कें भी फिसलन भरी हो जाती हैं, तो वाहन की रफ्तार को थोड़ी धीमी रखें तो ही अच्छा, और तय समय से थोड़ा जल्दी घर से निकल जाए ताकि हम अपने ऑफिस, स्कूल समय पर, नियत समय पर पहुंच सके बिना किसी हड़बड़ी के और वाहन को तेज चलाए बिना। और इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए मौसम का मजा लें, और आइए आपको सुनवाते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट जो हमें मिलता है उमा शंकर पांडे से।
1: मित्रों, मैं हूं उमाशंकर पांडे। अब आप सुनेंगे ट्रैफिक अपडेट सा बिलासपुर, अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था संबंधी जानकारी। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज महिलाओं के अखंड सुहाग संबंधी वट सावित्री का पर्व है। शुभकामनाएं। आज बरगद के वृक्ष की पूजा का विधान है। महिलाएं आज सुबह से लेकर दोपहर तक जगह जगह वट वृक्ष पूजा परिक्रमा बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ करते देखी जा सकती हैं। कहीं कहीं सड़कों के किनारे स्थित वट वृक्ष में बड़ी संख्या में पूजा अर्चना हेतु महिलाएं आती हैं। कुछ महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी आते हैं। चूंकि महिलाएं पूजा में व्यस्त होती हैं और सड़कों में छोटे से लेकर भारी से भारी वाहनों से सर्वथा अनजान ये बच्चे सड़कों में खेलने लगते हैं, उन सभी महिलाओं से अनुरोध है जिनके साथ ये छोटे बच्चे आए हैं उनके प्रति पर्याप्त ध्यान रखें या बच्चों की देखभाल के लिए किसी को साथ में लाएं। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव गांव तक सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। मित्रों, प्रकृति की विशिष्ट कृतियों में से नारी एक है। आज के परिवेश में स्त्री पुरुष से कम नहीं है। जहां जहां पुरुष है वहां वहां नारी भी है। पुरुषों की तरह सड़कों में दो पहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन ये बाखूबी दौड़ा रही हैं। इतना ही नहीं, पुरुषों के वाहन से आगे भी निकल रही हैं। निश्चित रूप से ये मानव समाज की अभिन्न अंग महिलाओं की इस उपलब्धि को देखकर हम सभी को गर्व होता है। किंतु कहीं कहीं इन महिलाओं को और भी सजग या चैतन्य होने की आवश्यकता है। कई बार दो पहिया वाहन लेकर चल रही महिलाओं की चुन्नी या साड़ी का पल्लू हवा में लहराता रहता है। यह साड़ी का पल्लू या चुन्नी के हर पल स्वयं के वाहन के पहिए में या अगल बगल से गुजर रहे किसी अन्य वाहन से अथवा बिजली के पोल आदि से उलझने की आशंका बनी होती है। एक बार नहीं, अनेकों बार इस प्रकार की गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अतः इन वस्त्रों को विशेष संभाल कर रखें, क्योंकि हवा में उड़ता हुआ लाल दुपट्टा सिर्फ फिल्मों में शोभा देता है, यथार्थ जीवन में ये घातक है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
0: ट्रैफिक अपडेट अभी आप सुन रहे थे उमा शंकर पांडे से, और जाना आपके शहर बिलासपुर में आज क्या रहेगा ट्रैफिक का हाल। श्रोताओं, यातायात नियमों का पालन करके हम अपना ही नहीं दूसरों का जीवन भी बचा सकते हैं। और अब कार्यक्रम आज सुबह में आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं, आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942-43, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक चरण था, और ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 यानी आज के दिन शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली, और साथियों इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को तत्काल भारत छोड़ने के लिए मजबूर करना। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार ने बिना भारतीय नेताओं की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था, और इससे भारतीय जनमानस में असंतोष और आक्रोश

बढ़ गया। नेता चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारत को स्वतंत्रता दे ताकि भारतीय अपने भविष्य का निर्णय स्वयं कर सके, और इसी पृष्ठभूमि में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। 8 अगस्त 1942 को बंबई, जो अब मुंबई है, इसके ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था, और इस प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन को तत्काल भारत छोड़ने की मांग की गई। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए अपना प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण और कई अन्य प्रमुख नेता इस आंदोलन में सक्रिय थे। आंदोलन के पहले ही दिन ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और ब्रिटिश सरकार द्वारा नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया। छात्रों, किसानों, मजदूरों और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। जगह जगह हड़ताल, प्रदर्शन और हिंसक गतिविधियों के माध्यम से लोग ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों और टेलीग्राफ लाइनों को निशाना बनाया गया। कई जगहों पर लोगों ने समानांतर सरकारें भी स्थापित कर दी। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कई कड़ी दमनकारी नीति अपनाई। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस और सेना का व्यापक उपयोग किया गया और आंदोलन को दबाने के लिए बल का प्रयोग किया गया। कई स्थानों पर आंदोलनकारियों पर गोलीबारी की गई और उन्हें कठोर दंड भी दिए गए, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबा दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा मिली। आंदोलन ने भारतीय जनता की स्वतंत्रता की आकांक्षा को और मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की स्वतंत्रता की मांग को बल मिला। अंग्रेजी सरकार को यह एहसास हुआ कि अब भारत पर शासन करना आसान नहीं और स्वतंत्रता अनिवार्य है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, और इस आंदोलन ने भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। 1947 में भारत की इस स्वतंत्रता के लिए मार्ग प्रशस्त करने में इस आंदोलन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखी। और साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने ब्रिटिश शासन के अंत की नींव रखी। महात्मा गांधी और अन्य कई नेताओं की नेतृत्व क्षमता और भारतीय जनता की अटूट संकल्प शक्ति ने इस आंदोलन को सफल बनाया, और ये आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की बहादुरी बलिदान का प्रतीक है, जिसे सदैव याद रखा जाएगा। श्रोताओं, कार्यक्रम में चर्चाओं का दौर तो चलता ही रहेगा, आइए आनंद लेते हैं इस प्यारे से गीत का।

श्रोताओं, आज हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक भीष्म साहनी की जयंती भी है। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 को आज ही के दिन हुआ और अपने लेखन में आम आदमी के जीवन, उसकी पीड़ा, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं को बहुत ही सहज और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया लेखक भीष्म साहनी ने। उनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है। भीष्म साहनी का मानना था कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि समाज को समझने और बेहतर बनाने का भी एक सशक्त साधन है। उनकी रचनाएं आज भी हमें मानवता, भाईचारे और आपसी विश्वास का संदेश देती है।

श्रोताओं, इतिहास हमें साहस देता है और साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है और प्रकृति हमें धैर्य सिखाती है। इन तीनों से मिली सीख जीवन को सही दिशा देती है।

बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: श्रोताओं, सावन का महीना हमें बारिश की खूबसूरत सौगात देता है और खेतों में हरियाली आती है, तालाब भरते हैं और सूखी धरती पानी से तृप्त होती है। लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि बारिश का पानी केवल बहकर निकल न जाए बल्कि उसे सहेजना और ज़मीन के भीतर उतारना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। आज कई जगहों पर बारिश तो अच्छी होती है लेकिन कुछ ही महीनों बाद पानी की कमी महसूस होने लगती है और इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बारिश का पानी हम पर्याप्त मात्रा में रोक ही नहीं पाते। हम अपने घरों में छोटी छोटी कोशिशों से पानी बचा सकते हैं। छत पर गिरने वाला पानी, बारिश का जो पानी है, उसको टंकी में जमा किया जा सकता है। घर के आसपास छोटे छोटे सूखता गड्ढे बनाए जा सकते हैं ताकि पानी ज़मीन के अंदर जाए। गाँव में तालाब, कुएँ, खेत, तालाब और छोटे जलाशय बारिश के पानी को रोकने में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। साथियों, पानी बचाना केवल गर्मी के दिनों का काम नहीं है, बारिश के दिनों में भी पानी को सहेजना आने वाले दिनों के लिए पानी की सुरक्षा है। और अक्सर हम कहते हैं जल है तो जीवन है, ये बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, लेकिन इस बात को केवल हम कहने तक ही सीमित रखते हैं। घर में नल खुला छोड़ देते हैं या ज़रूरत से ज़्यादा हम पानी इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करें कि जितना ज़रूरत हो उतना ही पानी इस्तेमाल करें। बच्चों को भी अभी से पानी की कीमत समझाएं और उन्हें बताएं कि नल को अच्छे से बंद करें, यदि कहीं नल टपक रहा है तो उसे सुधरवाएं। बच्चों को पानी की उपयोगिता, उनका महत्व समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाला समय उन्हीं का है। साथियों, ज़रा सोचिए, बारिश की एक एक बूंद जब खेतों, तालाबों और ज़मीन के भीतर सहेजी जाती है तो वो पानी आने वाले समय में किसान की फसल, पशुओं और हमारे घरों के लिए सहारा बनता है। इसलिए इस सावन में एक छोटा सा संकल्प ले कि बारिश की बूंदों को बहने नहीं देंगे, जहां संभव होगा उसे सहेजेंगे, पानी की हर बूंद की कीमत समझेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम जल को बचाएंगे, क्योंकि आज बचाई गई पानी की एक बूंद कल किसी की प्यास बुझा सकती है। देखिए श्रोताओं, बात करते करते समय इशारा कर रहा है और कार्यक्रम आज सुबह से जाने का समय हो रहा है। आज आपका दिन अच्छा बीते, सुखमय हो, स्वस्थ हो, आज का दिन सफल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम आज सुबह से मैं अनुमति लेती हूँ और छोड़े जाती हूँ इस प्यारे से गीत के साथ।

कार्यक्रम आज सुबह अभी हम प्रसारित कर रहे थे और अब समय हो चुका है कार्यक्रम सदाबहार नगमे का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत प्यासा सावन इस फिल्म से। आवाजें हैं सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की, संतोष आनंद की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

प्यासा सावन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थी सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर की। और अब आपको कार्यक्रम में अगला गीत सुनाते हैं, अंधा कानून। इस फिल्म से ये गीत है। आवाज़ें आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की युगल आवाजों में फिल्म अंधा कानून का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। कार्यक्रम में अगला गीत होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर,
0: हाँ जिया रारे झूमे से जैसे बन माना छे मोर।
2: और अब लीजिए सुनिए फिल्म मिलन का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और मुकेश की आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म चांदनी का ये गीत, आवाजें विनोद राठौर और आशा भोसले की, आनंद बख्शी की रचना, शिव हरि का संगीत।

चांदनी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें दी थी आशा भोसले और विनोद राठौड़ ने। आनंद बख्शी के बोल थे शिव हरि का संगीत। कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है और इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 10 अगस्त सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी और आप हमें फ़ोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता। आपसे चर्चा का विषय होगा फेफड़े एवं

श्वसन रोग और उपाय। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752, ये हमारा एसटीडी कोड 266592 हमारा फोन नंबर। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम चित्रपट संगीत अभी श्रोता सुन रहे थे। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में है।

0: FM एंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में समाचार हिंदी और अंग्रेजी में अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्यघर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया, उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई लेन देन निःशुल्क रहेगा। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया, विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले औपचारिक बातचीत की। रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सेनेट में पारित। और पूर्वी राजस्थान तथा ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे 3000 से अधिक विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं के साथ 587 पीएचडी शोधार्थी शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह के दौरान संस्थान के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान जैसे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल, डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल, शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे, जो आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई संचालित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है। यह आधुनिक सुविधा एआई, डेटा साइंस, एडवांस कंप्यूटिंग और अंतर्विषयक शोध के क्षेत्रों में संस्थान की क्षमता को मजबूत करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि आईटी दिल्ली ने हमेशा अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि वह इस अग्रणी संस्थान के छात्रों और शिक्षकों के बीच जाने के लिए उत्सुक हैं। श्री वांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
4: कल नई दिल्ली में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आईआईटी दिल्ली के निदेशक रंजन बैनर्जी ने बताया कि प्रधानमंत्री संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। श्री रंजन बैनर्जी ने नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा के बारे में भी जानकारी दी।
6: इस कॉन्वोकेशन में 3000 से अधिक ग्रेजुएट्स

0: डिग्रीज ले लेंगे। कॉन्वोकेशन में हमारी एक नई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर 250 पेटाफ्लॉप्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स इन एन एकेडमिक एनवायरनमेंट लॉन्च बाय आवर प्राइम मिनिस्टर।
1: भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि UPI के माध्यम से किया जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क बना रहेगा। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच होने वाले व्यावसायिक शुल्क का भुगतान उपभोक्ताओं को नहीं करना होगा। एक रिपोर्ट। UPI के जरिए लेन देन पर चार्ज लगने की खबरों ने आम उपभोक्ताओं और छोटे दुकानदारों के बीच चिंता पैदा कर दी थी। इस भ्रम को पूरी तरह दूर करते हुए पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने साफ किया है कि ग्राहकों के लिए UPI सेवाएं पूरी तरह मुफ्त बनी रहेंगी। डिजिटल इंडिया की रफ्तार को बनाए रखने और वित्तीय समावेशन को सुरक्षित रखने के लिहाज से ये स्पष्टीकरण एक बड़ा राहत देने वाला कदम है। PCI ने कहा है कि UPI देश की महत्वपूर्ण डिजिटल व्यवस्था बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। बढ़ते लेन देन देखते हुए सुरक्षा, तकनीक और ढांचे को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में भी UPI उपभोक्ताओं और कारोबारियों के लिए सुचारू रूप से काम करता रहे। समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमरीका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: We have seen the comments.
3: हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
2: रेगुलेट द फ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स।
1: भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
3: पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
1: पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सरकार की ओर से 4 मंत्रियों और विकास आयुक्त ने वार्ता में भाग लिया। मंत्रियों ने छात्रों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वार्ता में उठाए गए सभी मुद्दों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता को सकारात्मक बताया, लेकिन स्पष्ट किया कि लिखित निर्णय और मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना और भूख हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि 10 अगस्त तक संतोषजनक निर्णय नहीं लिया गया तो पूर्व निर्धारित विधानसभा घेराव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है और संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहती है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक को समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति अनुमति

0: देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
1: संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में आज हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण ओडिशा में तेज बारिश की आशंका है। इसके चलते राज्य में व्यापक वर्षा होगी।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज चेतावनी और 24 जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की है, जिसमें कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। ऑरेंज चेतावनी वाले जिले सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, केंदुझर और मयूरभंज है। भारी बारिश के अनुमान के देखते हुए एहतियात के तौर पर मयूरभंज में आज सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इस बीच बालेश्वर के बस्ता में जड़का नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी जिलों में आज भी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
3: केरलम में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। राज्य के सभी जिलों में बीते सप्ताह से ही बारिश संबंधी अलर्ट जारी किए गए हैं। कासरगोड, कुन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, कोट्टायम, अलापुजा और पथनामथिट्टा जिले आज ऑरेंज अलर्ट पर, जबकि बाकी जिले येलो अलर्ट पर हैं। केरलम और लक्षद्वीप में आज तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने 25 करोड़ ओपीडी पंजीकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इस उपलब्धि से पता चलता है कि मिशन के तहत नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: अक्टूबर 2022 में शुरू होने के बाद से स्कैन एंड रजिस्टर सेवा ने मरीजों के लिए आसान QR कोड स्कैन के जरिए अस्पताल में डिजिटल रूप से पंजीकरण कराने की सुविधा देकर OPD रजिस्ट्रेशन के अनुभव का कायाकल्प कर दिया है। यह सेवा अभी देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 756 जिलों में 30,800 स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार स्कैन एंड रजिस्टर ट्रांजेक्शन के साथ देश में सबसे आगे है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में एम्स नई दिल्ली में सबसे ज्यादा मरीजों ने इस सेवा से पंजीकरण कराए हैं। इस उपलब्धि के बारे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा कि स्कैन एंड रजिस्टर के जरिए 25 करोड़ लोगों के OPD में पंजीकरण की उपलब्धि भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र में नागरिकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। आनंद के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। आज अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी हेडलाइन बनाया है। नीट पेपर लीक को लेकर CBI द्वारा दाखिल आरोप पत्र के हवाले से दैनिक जागरण ने लिखा है, NTA के ही 3 विषय विशेषज्ञों ने किया नीट का पेपर लीक। अमर उजाला ने लिखा है, CBI का दावा, पेपर बनाते समय ही सवाल याद करते, टेलीग्राम व्हाट्सएप से बिचौलियों तक पहुंचाते, NTA के 3 विशेषज्ञ मास्टरमाइंड, कई महीने पहले रची साजिश। लोकसत्य लिखता है, CBI ने दाखिल की चार्जशीट, NTA के एक्सपर्ट निकले विभीषण। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, जिस तेजी से सीबीआई ने इस जांच को अंजाम दिया है उसी तेजी से आगे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। देश में जो भी पेपर लीक के मामले हाल के महीनों में सामने आए हैं उनकी भी सीबीआई जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दिल्ली एनसीआर में कल हुई

0: गंगोर बारिश को जनसत्ता ने आफत की बरसात कहा है। अखबार लिखता है राजधानी में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज, सड़कों पर भारी जलभराव। राजस्थान पत्रिका ने बदल रहा मानसून का पैटर्न शीर्षक से लिखा है, देश भर में अभी तक 11% कम बरसे बादल, 14 राज्यों में कम बारिश, 10 दिन में नहीं मिली राहत तो सूखे जैसे हालात। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियमन संशोधन विधेयक पर पंजाब केसरी के शब्द हैं, संसद में अब आर पार की तैयारी, एफसीआरए पर शाह संभालेंगे मोर्चा, कांग्रेस ने जारी की व्हिप। मोदी और सुखबीर की मुलाकात से पंजाब में चुनावी हलचल तेज, जनसत्ता के पहले पन्ने पर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन की अटकलें तेज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इस बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम, राजस्थान पत्रिका में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक पर एक अमरीकी सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to present IIT Delhi's highest honours to meritorious students during its convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies Apex Digital Payments Body PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation is country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. He will address over 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars, who will be conferred their degrees during the ceremony. We have more from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will present the institute's most prestigious honours, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medal to the meritorious students during the ceremony. Further, Mr. Modi will also inaugurate Param Pragya, an AI-powered high-performance supercomputing facility established at the Sonipat campus of IIT Delhi. The state-of-the-art facility is expected to significantly enhance the institute's capabilities in AI, data science, advanced computing and interdisciplinary research. In a social media post, the Prime Minister has said that IIT Delhi has always made a rich contribution in the fields of research and innovation. Mr. Modi said that he looks forward to being among the students and teachers of this pioneering institute. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu has thanked Prime Minister Modi after the two leaders reviewed progress in various aspects of partnership. Mr. Netanyahu wrote in a social media post responding to Mr. Modi's post regarding the conversation between the two leaders. During the phone call on Thursday evening, both leaders reviewed progress on various aspects of the India-Israel Special Strategic Partnership and also discussed the current situation in West Asia. Payments Council of India, PCI, has announced that UPI will continue to be free for consumers. We have a report.
4: In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. The PCI added that banks, fintech companies, NPCI and the RBI have been investing in technology, cybersecurity, fraud prevention and innovation to maintain UPI's reliability. The PCI clarified that any applicable merchant service charges, which are commercial arrangements solely between merchants,

0: during convocation ceremony today. UPI transactions to remain free for consumers and small merchants, clarifies APEX Digital Payments Body, PCI. India rejects objections raised by a US lawmaker on proposed FCRA bill, says legislation in country's internal matter. Jharkhand government holds first formal talks with protesting students over alleged irregularities in recruitment examinations. US Senate passes Russia sanctions bill seeking 100% tariff over five countries. And heavy to very heavy rainfall likely over East Rajasthan and Odisha today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: समाचारों का अनुप्रसारण अभी आकाशवाणी दिल्ली से किया जा रहा था। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से हम रिले करेंगे।
2: डॉक्टर वरुण अग्रवाल मूत्र रोग विशेषज्ञ से ली गई भेंट वार्ता, भेंट करता है दीपा मेश्राम।

0: डॉक्टर की सलाह सुन रहे तमाम श्रोताओं को दीपा का नमस्कार। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम कई बार बात करने से भी झिझकते हैं, लेकिन शरीर जब किसी तकलीफ का संकेत देता है तो उसे समझना और समय रहते उस पर ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी है। यूरिन से जुड़ी समस्याएं भी ऐसी ही है जिन्हें कई बार लोग संकोच या लापरवाही के कारण नजरअंदाज कर देते हैं। यूरिन में जलन, दर्द, बार बार यूरिन आना या यूरिन करने में परेशानी, इन लक्षणों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और इनका सही उपचार क्या है, इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बातचीत करेंगे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी से। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बातचीत करेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी से और समझेंगे यूरिन संबंधी बीमारियों, उनके लक्षण, कारण, उपचार और बचाव के बारे में। डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, धन्यवाद बहुत मुझे भी यहाँ बुलाने के लिए।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि यूरिनरी सिस्टम क्या है, हमारे शरीर में इसकी क्या भूमिका है और ये किस तरह काम करता है।
1: तो जब हम यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे शरीर में दो किडनीज होती हैं जो हमारे ब्लड से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको फिल्ट्रेशन का काम करती है और वो फिल्ट्रेशन करके हमारे दो पाइप्स होते हैं जिनको हम यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर में करके यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को भेज के उसको यूरिन के रास्ते से उसको साफ करके बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको क्लीन करने का काम करता है।
0: जी जी, अब यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि यूरिन और मूत्र तंत्र से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं आम तौर पर हमें देखने को मिलती है।
1: तो यूरिन की जो बहुत बड़ी समस्या जो आप बहुत कॉमनली भी सुनते हैं, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना, वो कोई भी पेशाब के रास्ते में कहीं नीचे यूरेथ्रा से लेके किडनी तक का इन्फेक्शन को सब हम यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये काफ़ी कॉमन है लोगों में काफ़ी, और ये इसकी संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी क्रॉनिक बीमारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से आपको यूरिन में जलन, यूरिन में परेशानी, दर्द, यूरिन में ब्लड आना, फीवर आना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, अक्सर लोग यूरिन करते समय जलन, दर्द या बार बार यूरिन आने जैसी परेशानी को कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाने की उम्मीद से छोड़ देते हैं, तो ये जो लक्षण है किन समस्याओं की ओर संकेत कर सकते हैं आगे जाकर और इनके सामान्य कारण क्या हो सकते हैं।
1: तो जैसे कि मैंने बताया कि मोस्ट कॉमन कॉज यूरिन में जलन, दर्द का यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसको हम यूटीआई भी बोलते हैं, वो मोस्ट कॉमन कॉज है। पर इसके अलावा आपकी अलग बीमारियां भी हो सकती है, जैसे कि किडनी में स्टोन हो सकता है, किडनी में ट्यूमर हो सकता है, आपके यूरिन ट्रैक्ट में ट्यूमर हो सकता है, यूरिन ट्रैक्ट में आपके स्टोन हो सकता है, तो ये सब भी यूरिन में जलन दर्द कर सकता है, जिसका अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है, नॉर्मल दवाइयों से ही ट्रीटमेंट हो जाता है। पर ये एडवांस स्टेजेस में, कॉम्प्लिकेशन के स्टेजेस में, इसमें हमको अलग अलग तरह की सर्जरीज या दवाइयां से इसका उपचार करना पड़ता है।

0: जी, मतलब ये आगे जाके बहुत बड़ी समस्या बन सकता है,
1: ये
0: तो हमें शुरुआत में ही इस पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जितना आप जल्दी इस चीज़ को के लिए अलर्ट रहेंगे और इसके लिए आप डॉक्टर से अपनी सलाह लेंगे तो उतना ही आसानी से उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा और हो सकता है आपको सर्जरी या कॉम्प्लिकेशंस का सामना ना करना पड़े।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात डॉक्टर साहब। अब हमें ये बताइए कि महिलाओं और पुरुषों की जैसे कि शारीरिक संरचना अलग होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी अंतर देखने को मिलता है, तो अगर यूरिनरी समस्याओं की बात करें तो पुरुषों और महिलाओं की समस्याओं में किस तरह के प्रमुख अंतर देखने को मिलते हैं?
1: तो जो फीमेल यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम होता है उसमें जो यूरेथ्रा होता है उसका लेंथ छोटी होती है और वो आपके मोशन वाले द्वार के करीब होता है काफ़ी ज़्यादा, जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है।
0: जी
1: मेल के उसमें मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है
0: जी
1: जिससे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेल्स में चांसेस थोड़े कम रहते
0: जी
1: हैं। फीमेल में बहुत कॉमन है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना जिसके कारण वो बार बार परेशानी होती है क्योंकि जरा भी उनका सिस्टम में परेशानी होती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के ड्यूरिंग लंबे तरह समय पैड रखने के कारण
0: जी
1: या पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने के कारण, क्योंकि उनका यूरिनरी ट्रैक्ट जो है तो बहुत जल्दी कंटेमिनेट हो जाता है इन्फेक्शन से और उनको यूरिनरी ट्रैक्ट होना बहुत जल्दी हो जाता है। तो जैसा कि फीमेल्स और मेल यूरिनरी ट्रैक्ट में अंतर होता है, फीमेल का यूरेथ्रा छोटी लेंथ का होता है, हम देखते हैं कि फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के रिस्क ज़्यादा होते हैं। वहीं
0: जी
1: जहाँ की बात करूँ मैं मेल्स में, मेल्स का यूरेथ्रा की लेंथ ज़्यादा होती है और वो मल द्वार से भी दूर होता है, तो इसलिए उनमें हम यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स अर्ली स्टेजेस में नहीं देखते हैं पर एल्डरली स्टेजेस में उनमें भी ये चीज़ कॉमन हो जाती है।
0: मतलब महिलाओं को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इन्फेक्शन होने
1: हाँ,
0: के।
1: महिलाओं को बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसलिए उनको अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा
0: जी जी
1: ज़रूरत है
0: बिल्कुल
1: और सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है।
0: जी। तो डॉक्टर वरुण जी, इसी के साथ अब हम चाहेंगे कि हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का एक गीत सुनवाएं, तो सर कौन सा गीत आज आप सुनवाएंगे?
1: मैं सुनना चाहूँगा, पल दो पल का शायर हूँ।
0: तो जरूर आपकी पसंद का ये गीत श्रोताओं तक हम पहुंचाते हैं फिल्म कभी कभी से।

0: श्रोताओं, इस मधुर गीत के बाद डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं यूरिन संबंधी बीमारियां, उनके लक्षण, कारण और उपचार विषय पर। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी। तो डॉक्टर वरुण जी, मौसम में बदलाव का असर हमारे स्वास्थ्य पर कई तरह से पड़ता है, तो ऐसे में क्या बदलते मौसम के दौरान यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी समस्याएं या संक्रमण होने की संभावना भी बढ़ जाती है, और किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए?
1: जी बिल्कुल, जैसे भी जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हमारी यूरिनरी सिम्टम्स और यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शंस बढ़ने लग जाते हैं। जैसे कि अभी जैसे चल रहा है बारिश का मौसम, जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शंस का रेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमको इस समय बहुत सावधानी रखनी रहती है हाइजीन के बारे में, हाथ की साफ़ सफाई के बारे में, यूरिनरी ट्रैक को साफ़ रखने के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मौसम के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा अपने व्यवहार में और अपने डाइट में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपको पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। जो गर्मी का मौसम होता है और जो बारिश का मौसम होता है, इसमें हमको वाटर इंटेक थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लॉस थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको किडनी स्टोन होने के चांसेस भी इन्हीं मौसम्स में बढ़ते हैं, पेन होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि हम इस समय पानी का बढ़ दें और साथ ही साथ हाइजीन के बारे में भी थोड़ा ज़्यादा जागरूक रहें।
0: जी, तो महिला और पुरुषों दोनों को हाइजीन के बारे में ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी, जैसा कि आपने बताया, यूरिनरी सिस्टम में संक्रमण कई कारणों से हो सकता है और हर संक्रमण के लक्षण भी एक जैसे नहीं होते, तो बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन में आमतौर पर कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं और इनकी पहचान किस तरह की जा सकती है?
1: तो यूजली वायरल जो इन्फेक्शंस होते हैं वो थोड़े माइल्ड इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसमें आपके सिम्टम्स जो बॉडी में आते हैं वो बहुत सीवियर तरह के नहीं आते हैं। आपको हल्का बुखार हो सकता है हल्का, और वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमको कोई दवाइयाँ, स्पेशल दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो। जहाँ की बात करूँ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का, वो कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस होते हैं, वो बॉडी में काफ़ी सीरियस रिएक्शंस प्रोड्यूस कर सकते, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस करते, जिनके लिए हमको काफ़ी एंटीबायोटिक सिंपल भी लग सकती है और उस काफ़ी महंगी और कॉम्प्लिकेटेड एंटीबायोटिक्स भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है मरीज के अकॉर्डिंग।
0: जी जी,
1: वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि वायरस यूजली थोड़े उतने बॉडी को अटैक ज़्यादा नहीं करते इम्यून सिस्टम को, पर कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर वायरस सेम होता है, कई वायरस बहुत कॉम्प्लिकेशन भी करते हैं, पर यूजली जो जनरल सीजनल वायरस होते हैं, जैसे कि अभी बारिश और ठंड में जो सीजनल वायरसेस होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस नहीं देते। जहाँ की बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, ज़्यादा सीवियर आपको कर सकते हैं, जिसमें हमको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और बात करूँ पैरासिटिक इन्फेक्शंस की, पैरासिटिक इन्फेक्शंस यूजली वॉर्म्स जो होते हैं हमको खाने की वजह से होते हैं, वो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी कई बार होते हैं, पर इंडियंस में उतना वो कॉमनली पैरासाइट्स का यूरिनरी ट्रैक्ट में ज़्यादा देखा नहीं गया है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत आसान तरीके से आपने इस संक्रमण के बारे में समझाया हमें। और जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बात की कि महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई की समस्या अक्सर सुनने को मिलती है, तो डॉक्टर साहब, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या होते हैं, इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है और इससे बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें?
1: तो फीमेल्स का, जैसे मैंने पहले भी बताया कि फीमेल्स का जो यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो छोटी होती है, तो उनमें बहुत जल्दी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होता है। तो यूजली जो उनको प्रेजेंट करते हैं, जो सिम्टम्स उनको होते हैं, यूजली पेशाब में जलन, पेशाब करने के समय दर्द होना, पेशाब में कई बार खून आ जाना और कई बार हल्का फुल्का फीवर हो, और वही जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लग

0: जाते हैं तो उसमें दिक्कतें ज़्यादा मिलती हैं, जैसे कि फीवर आना, उल्टी होना, पीठ में दर्द होना, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स हैं। और बेहोशी में जाना और आपका बीपी भी फॉल होने लग जाना, ये
1: जी
0: सब दर्शाता है कि आप कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं आपको। तो यूजली हमको ये सारे सिम्टम्स के समय जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना और उसका इलाज करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली स्टेज में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अर्ली स्टेजेस में ये ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है,
1: जी जी
0: पर जैसे हमारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लग जाते हैं तो हमको दवाइयाँ भी एक तो ज़्यादा लगती है, इलाज भी महंगा हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा रहते हैं।
1: बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। तो डॉक्टर वरुण जी, अब ये बताइए कि प्रोस्टेट संबंधी परेशानी के शुरुआती लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं और किन संकेतों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता?
0: प्रोस्टेट जो ग्रंथि है हमारे शरीर में, वो हर पुरुष की 50 के बाद, एज ग्रुप के बाद, वो ग्लैंड को बढ़ना है।
1: जी
0: वो ग्लैंड अगर बढ़ेगा तो वो रास्ते को, आपके जो यूरेथ्रा के रास्ते में है, वो पेशावट के रुकावट में डालता है,
1: जी
0: जिसके कारण आपको यूरिनेट सिम्टम्स जो हम बोलते हैं, यूरिनेट सिम्टम्स में जो आते हैं आपको, पेशाब रुक रुक के होना, पेशाब में बार बार जाना, रात में बार बार उठना पेशाब के लिए, आपका पेशाब करने के बाद भी ऐसा नहीं लगना कि हमारा पूरा पेशाब हो गया, फिर जाना पेशाब के लिए, तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो हमको दर्शाते हैं कि हमारी प्रोस्टेट के ग्लैंड बढ़ रहा है, ग्रंथि बढ़ रही है, और उसका हमको जल्द से जल्द टेस्ट करवा के देखना, दिखवाना ज़रूरी है, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्योंकि ये ही चीज़ अगर आपकी आगे जाके, अगर आपने ये सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर दिया, तो वो ग्लैंड तो है, वो हर पुरुष का बढ़ते ही रहेगा, उम्र के साथ बढ़ते ही जाएगा, और वो हो सकता है आपका पूरा रास्ते को रोक दे, पेशाब आपका निकले ही नहीं, तो आप इमरजेंसी में लैंड कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सब सिम्टम्स को आप पहले ही नोटिस करके डॉक्टर से सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा।
1: जी श्रोताओं, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी, एक बार फिर से बारी है आपकी पसंद के एक और गीत की। तो अब आप हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं?
0: तो अगर हम सुन सकते हैं रूबरू।
1: जी बिल्कुल, तो चलिए मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी से। तो डॉक्टर वरुण जी, आपने बहुत आसान शब्दों में बताया था प्रोस्टेट के लक्षणों को, और जैसे कि हम जानते हैं कि आज चिकित्सा विज्ञान ने काफी प्रगति की है और प्रोस्टेट की समस्याओं के उपचार के लिए कई आधुनिक विकल्प उपलब्ध है, तो इसके इलाज के लिए वर्तमान समय में कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियाँ उपलब्ध है और उपचार का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है?
1: तो प्रोस्टेट जो ग्रंथि है आपका यूजुअली स्टार्टिंग स्टेज में या अर्ली स्टेजेस में हम दवाइयों से ही कंट्रोल कर लेते हैं। दवाइयों से हम उसको प्रोस्टेट के ग्लैंड को रिलैक्स और साइज को भी कम करने की दवाइयां देते हैं। अगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है और साइज बढ़ते ही जा रहा है और वो रास्ते को रोक रहा है, तो हमको सर्जरी जैसी कई सारी सर्जरियां हैं जिसके लिए हमको फिर चयन करना होता है। सर्जरी में भी इसकी कई सारी आजकल विकल्प हैं, बहुत अच्छी सर्जरी होगी, बहुत सिंपल सर्जरी हो जाती है, तो सर्जरी भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। और सर्जरी हम चुनते उन्हीं में हैं जिनमें दवाई से पहले रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और याद कि उनका रास्ता बहुत ज़्यादा रुक गया है जिससे उनका पेशाब निकल ही नहीं पा रहा है। तो ये सब कुछ कारण रहते हैं जिस समय हम सर्जरी का चयन करते हैं, अदरवाइज दवाई से बहुत इसका अच्छा इलाज हो जाता है अर्ली स्टेजेस में।
0: जी, तो जैसे इसकी सर्जरी होती है तो सर्जरी में क्या एडमिट होना पड़ता है पेशेंट को?
1: जी बिल्कुल, सर्जरी में आपको एडमिट होना पड़ता है, पर इसके लिए लंबा एडमिशन नहीं होता है, 2 या 3 दिन का एडमिशन होता है। आजकल तो 1 दिन में भी डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। यूजुअली ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही करते हैं हम ये सर्जरी को, पर सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा दर्द या पेनफुल सर्जरी नहीं है ये आपको उसके बाद आपकी दवाइयाँ चलती हैं जिससे आपको आराम मिल जाता है,
0: मतलब बहुत जल्दी सामान्य हो जाती है स्थिति,
1: बहुत जल्दी सामान्य हो
0: और सर्जरी से लाभ भी मिल सकता है।
1: सर्जरी से बहुत लाभ मिल जाता है क्योंकि प्रोस्टेट ऐसा ग्लैंड है और यूरिन प्रॉब्लम इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए आप चाहते हैं जल्द से जल्द इलाज हो, जल्द से जल्द छुटकारा मिले उस चीज़ का, क्योंकि वो बहुत डिसकम्फर्टिंग प्रॉब्लम है। पेशाब निकलना बहुत ज़रूरी है शरीर से, नहीं तो वो बहुत परेशानी करता है, तो इसलिए जल्द से जल्द इलाज करने का बहुत फ़ायदा है।
0: डॉक्टर वरुण जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे खान पान का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है, तो यूरिनरी सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए खान पान में किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए और किन चीज़ों के अधिक सेवन से बचना चाहिए?
1: तो हम जो बोलते हैं, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट को आपको स्वस्थ रखना है, तो सबसे ज़रूरी जो बात मैं बताना चाहूँगा कि सबको पानी का सेवन या लिक्विड का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जो हम नॉर्मल लिक्विड का सेवन बोलते हैं वो है 2.5 से 3 लीटर का सेवन करने के लिए बोलते हैं, जिससे कि आपका 2 से 3, 2 से 2.5 लीटर यूरिन हो, 2 से

0: 1.5 लीटर यूरिन आपके पेशाब के रास्ते को बहुत अच्छे से सफाई कर सकता है, जिससे आपको स्टोन बनने का चांसेस, इन्फेक्शन बनने का चांसेस वो अपने आप ही कर लेता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लिक्विड की मात्रा अप्रोप्रिएट लें, नमक का सेवन कम से कम करें। नमक का सेवन
1: जी
0: कम करने से हमारे जो यूरिनरी ट्रैक्ट है और किडनीज पे जोर कम पड़ता है, जिससे हमको गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। फल सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। फल सब्जियां नॉर्मली जो हमारे यूरिन का जो पीएच है उसको मेंटेन में हेल्प करते हैं।
1: जी
0: तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर फल सेवन करते हैं और सब्जियां सेवन करते हैं तो हमारी किडनी को स्वस्थ रखते हैं। और बात करूं जो आपको ज़्यादा नहीं खाना है, तो यूजली हम एनिमल प्रोटीन्स को बोलते हैं अवॉइड करने के लिए या कम खाने के लिए। और नशीले पदार्थ जितना आप कम यूज़ करें या ना यूज़ करें तो आइडियल चीज़ रहेगी।
1: जी एनिमल प्रोटीन्स में कौन से खाद्य पदार्थ?
0: एनिमल प्रोटीन्स में यूजली जो हम अवॉइड करने के लिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, रेड मीट को अवॉइड करने के लिए बोलते
1: जी
0: हैं। वाइट मीट को आप मॉडरेशन में ले सकते हैं, मतलब जो मॉडरेशन की बात बोले तो हफ्ते में 1 या 2 बार अगर आप वाइट मीट लेते हैं, जैसे कि आप चिकन, फिश, एग्स लेते हैं, तो वो आप ले सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ ऐसी आसान लेकिन जरूरी सावधानियां बताएं जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर वे अपने यूरिनरी सिस्टम को स्वस्थ रख सकते हैं, साथ ही किन शुरुआती लक्षणों को देखकर उन्हें बिना देर किए चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।
0: तो अगर हम बात करें ध्यान रखने की चीज़ें जो बोलूँगा वो है, आप जैसे मैंने बताया कि लिक्विड या पानी की मात्रा इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने यूरिनरी ट्रैक को साफ़ रखने का, पेशाब के रास्ते को साफ़ रखने का कोशिश करें। पब्लिक टॉयलेट्स में भी सफाई रखें, और पब्लिक टॉयलेट्स में भी कोशिश करें कि आप अपना सफाई करने का सामान, सैनिटाइज़र साथ में कैरी करें, जिससे कि आप को परेशानी का सामना करें। हैंड वॉशिंग रेगुलर करें, बार बार हैंड वॉशिंग करिए। और खाने पीने में जो मैंने पहले बताया उसको आप रूटीन को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। और अगर बात करें सिम्टम्स की, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, तो अगर आपको पेशाब के रास्ते में कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जलन आ रहा है, खून आ रहा है, या पस जैसा वाइट यूरिन आ रहा है और यूरिन की मात्रा में कमी लग रही है, बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है, पेशाब पूरा तरह से खाली नहीं कर पा रहे हैं, रात में आपको एक बार से अधिक उठना पड़ रहा है, तो आप समझिए कि यूरिन ट्रैक में हमको कुछ परेशानी हो रही है और हम जल्द से जल्द चिकित्सक से उसकी सलाह लें।
1: डॉक्टर वरुण जी, ये बताइए कि किडनी और मूत्र मार्ग में पथरी की समस्या काफी तकलीफदेह हो सकती है, तो शरीर में पथरी बनने के प्रमुख कारण क्या होते हैं और इसके कौन-कौन से लक्षण व्यक्ति को सचेत कर सकते हैं?
0: तो किडनी के स्टोन की बात करें या यूरिन ट्रैक में स्टोन्स की बात करें, तो जो मुख्य कारण है यूजली हमारे खान पान में गड़बड़ी ही के कारण मोस्ट ऑफ दी स्टोन्स होते हैं। खान पान में गड़बड़ी जो होती है, जो हाई हम जो आजकल फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं,
1: जी
0: जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हमारे स्टोन को बढ़ने के लिए, किडनी में स्टोन्स बोलें या यूरिन ट्रैक में स्टोन्स बढ़ने के मुख्य कारण हैं। और पानी में कमी, नशीला पदार्थ में भी यूज़ करना,
1: जी
0: उसके कारण भी किडनी स्टोन्स बढ़ने के रिस्क आपको बढ़ जाते हैं। बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स मोस्टली अगर आपको पेशाब करने में दर्द हो रहा है, पेशाब करने में जलन हो रही है, पेशाब
1: जी
0: में खून आ रहा है, या आपके पीठ में दर्द उठ रहा है बार बार, तो ये सब कुछ सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि हो सकता है किडनी का में स्टोन्स हो या यूरिनरी ट्रैक में स्टोन्स हो,
1: जी
0: जिसका आप बहुत सिंपल जांच करके आप पता लगवा सकते हैं कि उसके बारे में।
1: जी डॉक्टर वरुण जी, आज आपने आकाशवाणी के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला और यूरिन संबंधी बीमारियां, उनके लक्षण, कारण और उपचार विषय पर हमारे श्रोताओं को बहुत ही सहज और सरल तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी दी। निसंदेह हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ जानने और समझने को मिला होगा और इस चर्चा से उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। आज आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ अब दीपा को कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में अभी आप सुन रहे थे मूत्र तंत्र से संबंधित रोग कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर वरुण अग्रवाल मूत्र रोग विशेषज्ञ से ली गई भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थी दीपा मेश्राम। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा बातों बातों में। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान पर केंद्रित कार्यक्रम। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। एक राष्ट्रव्यापी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने 28,000 से अधिक स्थानों से जुड़े करीब 1 करोड़ से अधिक युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के मूल उद्देश्य को रेखांकित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और आत्म विनाशकारी आदतों से पूरी तरह से मुक्त अत्यधिक आत्मविश्वासी युवा पीढ़ी की जरूरत है। श्रोताओं, आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री अजय श्रीवास्तव। अजय जी रायपुर स्थित संकल्प सांस्कृतिक समिति नशा मुक्ति केंद्र में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। अजय जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
2: धन्यवाद सर।
1: अजय जी, आपको बहुत लंबा अनुभव है, करीब 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने का, और छत्तीसगढ़ का एक जो बड़ा नशा मुक्ति केंद्र है रायपुर में, उसमें आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने 4,000 से अधिक मामलों को आपने डील किया है, कि ये जो नशा है, नशे की लत, ना सिर्फ नशा कहें बल्कि हम नशे की लत कहें, इसका क्या कारण आप पाते हैं, क्योंकि इतने सारे मामलों को डील करने के बाद किस निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं?
2: सर, इसके 2-3 मुख्य कारण बनते हैं। सबसे पहला होता था क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा रहती है कि आखिर है क्या। इतने समय से हम सुनते रहे हैं
1: जी,
2: एक जिज्ञासा उनमें बच्चों में आती है
1: जी।
2: वो देखते हैं कि पिताजी सिगरेट पी रहे हैं, तो ये जो सारी चीजें देख रहे हैं, फिर वो ग्लैमर बहुत बड़ा होता है इसमें। यूथ में क्या रहता, पीयर प्रेशर बहुत होता है। ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं है
1: जी,
2: सारी जानकारी है सोशल मीडिया के जरिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आजकल सबके पास होता है। लेकिन हमारी यूथ की साइकोलॉजी क्या है इंडिया की, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वो भीड़ की ओर जाना चाहता है।
1: अच्छा,
2: तो बहुत बड़ा हिस्सा देखता है कि वो नशा कर रहा है, तो उसके चक्कर में वो नशा करता है। और इसमें क्या होता है, उनको लगता है कि मैं नशा कर रहा हूँ, कुछ समय बाद छोड़ दूंगा। सबकी शुरुआत वैसी होती, लेकिन वो ऐसे दलदल में फंसता है कि वो निकल ही नहीं पाता।
1: अच्छा अजय जी, बताएं कि कौन सी आयु सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है नशे की तरफ, जब व्यक्ति उन्मुख होता है?
2: हमारे पास जो एवरेजेस निकलते हैं, ये आपका है 25 से 30 के बीच का है
1: जी,
2: जो सबसे ज्यादा एडिक्शन में बीच में आ चुका है। लेकिन आप यदि शुरुआती का यदि बात करेंगे, क्योंकि शुरुआत कैसे हो रही थी, कौन सा एज है
1: जी,
2: तो ये 15 से 20-22 के बीच का जो सफर है
1: जी,
2: ये बहुत कठिन होता है इनके लिए।
1: अच्छा,
2: हाँ, 10th-11th का जो समय है, से लेके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक का जो बीच का जो समय, वो झुकाव उस समय जा रहा है।
1: अच्छा, ये तो आपने बताया कि पीयर प्रेशर होता है, कभी देखा देखी वो लोग होते हैं। अब ये बताइए कि मान लीजिए किसी ने यूं ही एक अनुभव लेने के लिए शुरू किया, तो वो लत में कब तब्दील हो जाता है? मतलब एक जिज्ञासा से शुरू करना और उसका एक आदत में तब्दील होना, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये क्या होती है?
2: होता क्या है कि सर, जैसे फर्स्ट बार उसने लिया, फर्स्ट बार लेने के बाद क्या होता है कि ज्यादातर क्या रहता है, फ्रेंडशिप वगैरह में लोग लेते हैं, ग्रुप में लेते हैं। ज्यादातर जो नशे हैं वो ग्रुप में है, मेडिकल नशे को छोड़कर
1: जी,
2: वो स्लीपिंग पिल्स वगैरह का होता है। फर्स्ट होता है ना, तो फर्स्ट हर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहता, लेकिन उनको लगता है कि मैं ऐसा पहला टेस्ट था इसलिए मेरे लिए ठीक नहीं है
1: जी,
2: तो सेकंड टेस्ट में पहुंचता है
1: जी।

0: सेकेंड टेस्ट में पहुंचता है तो उसको थोड़ा सा ठीक लगता है, फिर थर्ड टेस्ट में पहुंचता है, तब तक क्या रहता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़नी शुरू होती है
1: जी।
0: और बॉडी की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़नी शुरू होती है तो वो धीरे धीरे डिपेंडेंसी में चला जाता है, निर्भरता में ऐसा चला जाता है कि एक ऐसे समय आता है, बहुत बड़ा वर्ग है जो पूरी तरीके से नशे पर निर्भर है, आपको बता रहा हूं, इसमें ज्यादातर लोगों को ये पता है कि बहुत खतरनाक स्टेज में मैं आ गया हूं मैं
1: जी,
0: लेकिन वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और नशे से निकलना किसी के सहयोग के बिना बहुत कठिन होता है,
1: क्योंकि आप डील करते हैं। कितनी तरह के नशे के लोग आदि होते हैं, शराब है, गांजा है, और कितनी तरह के नशे होते हैं?
0: देखिए सर, ये ना पूरे यदि आप इंडिया का सिनेरियो देखेंगे तो ये अलग अलग होता है। ईस्ट का जो क्षेत्र होता है आप देखेंगे तो वो जो है वो इंजेक्टेबल वाला ज्यादा रहते हैं।
1: अच्छा,
0: ठीक है। छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे शराब पे डिपेंड है
1: जी,
0: फिर गांजा पे है
1: जी,
0: भांग पे है
1: जी।
0: अभी कुछ ऐसे भी नशे आ रहे हैं जो वो मेडिकल से रिलेटेड है।
1: हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि हाल
0: यूथ
1: के
0: है,
1: यदि 5-10 वर्षों की यदि हम बात करें
0: हाँ,
1: तो किस तरह के नशे का
0: ये
1: ज्यादा चल,
0: मेडिकल नशे पे ज्यादा जा रहे हैं सर।
1: मेडिकल
0: सूखे
1: जब नशा कहते हैं तो
0: सूखे
1: इसका मतलब
0: सूखे
1: क्या होता है?
0: मेडिकल नशे मैंने कुछ ऐसे मेडिसिंस होते हैं हमारे में जो नींद लाती है, दर्द निवारक टेबलेट्स हैं, तो उस पर वो डिपेंड हो चुके हैं उनको।
1: अच्छा
0: अच्छा, इसके डिपेंडेंसी के कारण क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई अल्कोहल लिया, एक तो महंगा है, दूसरी बात है कि आप पता कर लेंगे कि भाई उसकी स्मेल्स हैं,
1: जी
0: तो इनको लगता है इजी अवेलेबल है मेडिसिन,
1: जी
0: यदि पकड़ा भी है घर में तो उसमें बोले कि हो सकता है बीमारी बीमारी होगी करके,
1: जी
0: और आप यदि एक्सपर्ट नहीं है तो आप बिना लक्षण के उनको नहीं पकड़ सकते। कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं सर जो बच्चे जा रहे हैं, जिसमें सेंट और तेज गंध वाली जो चीजें,
1: अच्छा
0: ऐसे चीजों को बच्चे नशे में कन्वर्ट कर रहे हैं।
1: अच्छा जय जी, बताएं कि ये तो हमने बात की जो व्यक्ति नशे की तरफ बढ़ रहा
0: जी
1: है, अब जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं,
0: जी
1: या उसके जो अच्छे मित्र हैं,
0: जी
1: परिचित हैं, वो कैसे पता करें कि ये उनके घर का एक बच्चा नशे की तरफ बढ़ रहा हो, नशे का लत उस पर सवार हो रही है?
0: जी
1: क्या लक्षण से पता चलेगा ये चीज़?
0: सबसे पहला होता है कि वो ग्रुप से हटने की कोशिश करता है,
1: ग्रुप से मतलब
0: ग्रुप
1: परिवार?
0: से, हाँ परिवार से, और ऐसे लोगों के बीच नहीं बैठेगा जो नशा नहीं करते,
1: अच्छा,
0: वो घर में बहुत शांत रहेगा, अपने आप में बिजी रहने की कोशिश करेगा, उसके खाने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, या तो बहुत अधिक खा रहा होगा, कुछ नशे में बहुत अधिक भूख लग जाती है,
1: जी
0: कुछ में नहीं खाता।
1: अच्छा
0: कुछ ऐसे नशे हैं जैसे अल्कोहल है
1: जी,
0: जिसमें यदि किसी बंदे ने खाना खा लिया तो अल्कोहल नहीं ले सकता वो,
1: अच्छा
0: तो वो उस चीज को टालेगा,
1: अच्छा
0: नाश्ता को टालेगा, भोजन को टालेगा, और दूसरी चीज है कि पैसे की डिमांड एन केन प्रकार करेगा, आंख लाल हो सकती है, नींद नहीं आ सकती, चिड़चिड़ापन है, वो अपने जो वर्क प्लेस में है या स्टूडेंट है तो वहां पे वो गायब होने की कोशिश करेगा। ये 4-5 जो लक्षण है यदि किसी पेरेंट्स को दोस्त को नजर आ रहा है तो
1: जी,
0: तुरंत उस पर नजर रखनी चाहिए
1: अच्छा
0: कि क्या चीज है, उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए।
1: जी। अब हम आते हैं इस साक्षात्कार के अगले चरण में, वो है नशा मुक्ति। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये पता चल गया कि वो नशे का
0: जी जी
1: आदी हो चुका
0: जी
1: है, या उसके घर वालों को ये पता चल गया कि भाई ये फलाना व्यक्ति की निर्भरता बहुत ज्यादा हो गई, अब वो आपके केंद्र में वो लाते हैं, तो क्या होता, मतलब सबसे पहला जो है वो स्टेज क्या होती है, कैसे आप काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद की प्रक्रियाएं या उसके बाद के चरण क्या होते हैं?
0: देखिए, जो नशा मुक्ति सेंटर में जो किसी बंदे को जब लाया जाता है तो जनरली 10% लोगों को बस पता होता है कि मुझे नशा मुक्ति सेंटर ले जाया जा रहा है, जो
1: अच्छा
0: खुद तैयार होते हैं, बाकी लोगों को प्रेशर में बना के लाया जाता है।
1: अच्छा,
0: तो वो जब आते हैं तो वो बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते, एक तो उनसे नशा छूट जाता है, उनको मालूम है कि अब 30 डेज में बाहर नहीं जा पाऊंगा, मोबाइल जो है वो वहां रख नहीं सकते वो
1: जी,
0: अब वो डिसिप्लिन में रहेगा, तो ऐसे बंदों को क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ हमारा रहता है कि उनको नॉर्मल करना, 3 से 4 दिन नॉर्मल करना है, सामान्य स्थिति में लाना रहता है, तब तक मेडिकल प्रोसेस शुरू हो जाती है कि नींद नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा मेडिकल के द्वारा दिया जाए, 3 से 4 दिन फिर योगा सेशन वगैरह में बुलाना शुरू होगा, फिर उनसे बात करना शुरू होती है
1: जी।
0: सबसे पहला स्टेप होता है कि उनको तैयार करना, उनको पूरा प्रोसेस बता दिया जाता है
1: जी,
0: आप यहाँ पे क्यों आया है
1: जी,
0: आपके बेनिफिट के लिए क्या है और वो क्या क्या आपको यहाँ पे रह के करना है
1: जी।
0: सेकंड स्टेप में केस हिस्ट्री ली जाती है, कैसे शुरुआत हुआ, घर में कौन है, सारी केस हिस्ट्री ली जाती है, घर में कोई और तो नहीं करता, आपकी शुरुआत कैसे, बढ़ने का क्या कारण था, ये सारी केस हिस्ट्री लेके फिर काउंसलर जो रहता है वो तैयार करता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इसमें प्लस है, बहुत अच्छी चीजें रहती हैं उनमें भी, तो जो अच्छी चीजें हैं उसको पकड़ के हम आगे बढ़ते हैं
1: जी,
0: उस चीज को आगे बढ़ा के उनको तैयार करते हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे छोड़ना है, और ये भी तैयार करते हैं कि उसके बाद फिर यहाँ तो आपको नशा नहीं मिलेगा लेकिन आप जब बाहर जाएंगे आपके दोस्त वैसे ही हैं
1: जी
0: नशा करने वाले
1: जी,
0: उनके बीच आपको कैसे सर्वाइव करनी है पूरी लाइफ
1: जी,
0: ये हम उनको सिखाते हैं और उनको ये बताया जाता है कि आपको कभी नशे की तलब लगे तो कौन कौन से स्टेप्स आपको उठाने हैं,
1: वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं।
0: पहला होता है कि 1 day at a time हम लोग सिखाते हैं कि मुझे आप प्रण लीजिए कि मैं आज नशा नहीं करूंगा मैं।
1: अच्छा,
0: फिर सेकंड दिन हुआ आपको ये

0: बोलना है कि आज मैं नशा नहीं करूंगा, कल का कल देखा जाएगा। तो
1: जी
0: बॉडी ये होती है धीरे धीरे धीरे धीरे बिना नशे के रहने की आदत हो जाती है।
1: जी
0: दूसरी चीजें होती है कि पेट भरा रखना है आपको,
1: जी
0: डेली रूटीन जो है बहुत साफ सुथरी होनी चाहिए डेली रूटीन की।
1: जी
0: और दूसरी चीज ये हम लोग बता दी जाते हैं कि एक बीमारी है, ये बीमारी को आपने ही अपने पास बुलाया था और
1: जी
0: आप में उतना पावर है कि आप इसको छोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है सर कि जब हमारे बंदे आते हैं हमारे पास, हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हमारे भाई जैसे ही होते हैं, वो जब आते हैं
1: जी
0: तो उनका वेट वगैरह लिया जाता है, उनकी फोटो खींची जाती है, आप कैसे दिख रहे हैं, कैसा वेट है। और जिस दिन जाते हैं उस दिन उनका वेट दिखाया जाता है और आप कैसे दिख रहे हैं, तो उनको दिखाया जाता है कि बिना नशे के देखिए आप कितने अच्छे हो गए हैं।
1: जी
0: तो वो अंतर वो देखता है।
1: जी अच्छा अजय जी, ये बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति आपके केंद्र में आया
0: जी
1: और वो बहुत ज्यादा नशे का आदी है
0: जी
1: और फिर आप उसका नशा छुड़वाना जो भी आपकी प्रक्रिया है वैज्ञानिक
0: जी
1: प्रक्रिया
0: जी
1: उससे आप शुरू करते हैं, तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं क्योंकि वो तो उसके शरीर पूरा निर्भर हो गया
0: निर्भर
1: है
0: है
1: उस पर,
0: जी जी
1: अब जो छोड़ना शुरू करता है तो विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे वो व्यक्ति उससे डील करता है ये भी बताएं।
0: विड्रॉल सिम्टम्स सर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अल्कोहल का जो विड्रॉल सिम्टम्स होता है उसमें तकलीफें कम है लेकिन जान जाने का खतरा ज्यादा रहता है।
1: अच्छा
0: इसलिए जान जाने का खतरा रहता है कि अल्कोहल जो है वो आपकी सीधा बॉडी पर अटैक करता है,
1: अच्छा
0: जो ड्रग्स है वो आपकी बॉडी की अपेक्षा आपके माइंड पे कंट्रोल करता है,
1: जी
0: तो उसमें डेथ की संभावना नहीं है लेकिन आपको पेन बहुत होगा, बहुत दर्द होगा, तो ऐसे उनको बांधा जाता है। तो स्क्रीनिंग में हम ये देख लेते हैं कि क्या इस केस को हम हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी रिहैब को गवर्नमेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस कहती है कि वो मेडिकल की ज्यादा अथॉरिटी नहीं रहती है, तो हमें लगता है इसको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो हम उसको पहले हॉस्पिटलाइज करवाते हैं, तो फैमिली को बोलते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, वहां पे विड्रॉल्स मैनेज करके लाना है आपको, इसको क्रिटिकल विड्रॉल्स बोलते हैं, वो हेलुसिनेशन की स्थिति में चला जाएगा।
1: अच्छा
0: 72 घंटे तक उसको होश नहीं रहता। कभी कभी होता है कि फैमिली हमें बिना बताए बहुत नॉर्मल है बंदा है करके धोखे से डाल देती है, तो वो हमको हैंडल करना पड़ता है। तो वो 72 घंटे पूरा हमारा स्टाफ और जो सीनियर जो वहां पे क्लाइंट्स एडमिट है वो बहुत हेल्प करते हैं,
1: क्योंकि आपने बोला तो कई लोग इससे चिंतित हो सकते हैं, घबरा भी सकते हैं, भाई किसी का परिचित शराब के नशे का आदि है, कि आपने बोला जब छोड़ते हैं तो इसमें जान का भी जोखिम होता है, क्योंकि छोड़ना तो है ही भाई
0: जी,
1: किसी को, तो जान का जोखिम ना हो फिर कैसे छूटे।
0: हाँ, इनका मैं बता रहा हूँ असली में क्या रहता है। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि मान निकले डिपेंड यानी 24 घंटे लेने वाला है, तो ऐसे बंदे को छुड़ाना है अपने को, जिसमें किसी रिहैब की किसी हॉस्पिटल की मदद लीजिए आप
1: जी।
0: ऐसा नहीं कि घर के किसी कमरे में बंद कर दिए आप
1: जी,
0: कसम खिला दिए
1: जी,
0: आप किसी हॉस्पिटल किराए ले लीजिए और ऐसे में या तो साइकेट्री की किसी काउंसलर की किसी रिहैब की मदद ले लीजिए।
1: अच्छा अजय जी, अब ये बताइए कि जैसे आपने अभी तक 20 साल से अधिक का आपको अनुभव है, 4000 से अधिक केस आप डील कर चुके हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत नशे के आदी होंगे लेकिन फिर उन्होंने पूरी तरह से नशा छोड़ दिया।
0: जी जी काफी ऐसे,
1: ठीक है, उन लोगों ने क्या कमाल किया और कैसे कमाल किया ये बताइए।
0: कुछ जो केसेस हैं जैसा आपने जो बोला है उन्होंने वन डे एट ए टाइम मैंने बताया उसको उन्होंने फॉलो किया, और सबसे पहली बात
1: मतलब आज मुझे नहीं लेना है,
0: आज मुझे नहीं लेना है। और दूसरी बात होती है सर कि नशा जो है आपके जब नशा करता है डिपेंड हो जाता है तो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा एक पार्ट हो जाता है, वो भले वो गंदी चीज है, जब उस एकदम से बंदा नशा छोड़ता है तो उस गैप को भरना बहुत जरूरी होता है
1: जी।
0: आप उस गैप को किसी पॉजिटिव चीज से भर दीजिए। ज्यादातर जो नशा नहीं छोड़ पा रहे ना उसके पीछे वही रीजन होता है, नशा तो उन्होंने छोड़ के बाहर आ गए
1: जी,
0: अब वो खाली बैठे तो फिर उसमें चले जाते।
1: अच्छा
0: ये बंदे क्या करे जिन्होंने नशा छोड़ा है, उन्होंने अपने आप को किसी अच्छी चीज में इन्वॉल्व कर लिया।
1: अच्छा
0: कुछ बंदे कांटेक्ट में रहते हैं हमारे बीच बीच में, चले आते हैं, मिलने चले आएंगे, किसी त्यौहार में चलेंगे, फोन कर लेंगे, शादी का कार्ड देने आ जाते हैं, बर्थडे मनाने चले आते हैं, तो उनको वो टच में रहते हैं। ऐसे काफी लोग हैं 20-20 साल से जिन्होंने नशा नहीं किया है।
1: अच्छा अब ये बताइए कि जो भी चाहे स्कूल हैं कॉलेज हैं उसमें जागरूकता के लिए क्या किया जा सकता है या क्या किया जाता है।
0: स्कूल कॉलेज में देखिए वही एक समय होता है जहाँ से बच्चे जिज्ञासा उनमें ज्यादा आती है, प्रैक्टिकल्स करने की एज होती है, तो बच्चे आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह में भी, तो उनको लगता है कि मैं करके देखूं
1: जी।
0: तो सबसे पहला होता है कि सबसे अच्छा माध्यम है कि स्कूल में अवेयरनेस करें, लेकिन जो अवेयरनेस कर रहा है
1: जी
0: वो पहले अवेयर हो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं,
1: संवेदनशील
0: होते हैं। मेरा सलाह है कि जो आप स्कूल में जा रहे हैं पहले उन बच्चों से किस और तरीके से बात करके पता कर लें कि किस नशे की इनको जानकारी है, उतने ही कि उसके दुष्परिणाम और उसके बचाव के बारे में बताएं, अलग से नशा बताने की जरूरत नहीं है। आप कभी ऐसी गलती ना करें,
1: जानकारी और बढ़ा देंगे और जिज्ञासा भी बढ़ जाएगी,
0: बढ़ा दे, कोई ऐसा ना कि आपने और बता दे कि मार्केट में ये नया नशा आया बेटा बच के रहना, तो वो प्रैक्टिकल करने की एज होती है, वो कोशिश करेगा एक बार करके देखूं मैं
1: जी,
0: और वो करके क्या देखा पता चला फंस गया।
1: अंत में अजय जी, जो हमारे बच्चे हैं जो युवा हैं, खासतौर से वो जो आपने एज ग्रुप बताया, जो आयु वर्ग जो सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है इस मामले

0: ले में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
1: मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि जैसे एक परिवार आप पे डिपेंड है, कुछ सोच के माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं, तब भी माँ बाप अपना सारा कुछ करके आपके लिए पढ़ाते हैं, आप ऐसे कंडीशन में मान लो नशा करते तो परिवार कहीं का नहीं रहता, वैसे देश आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा उनसे निवेदन है कि बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत सारी चीजें हैं यूथ के लिए, बहुत अच्छी चीज कर सकते,
0: पूरा खुला आकाश,
1: पूरा खुला आकाश है, आप उड़िए और आप अपने आप को एक फोकस करिए, आपका कोई गोल सेटिंग बनाइए, और धोखे से भी आप आ गए हैं तत्काल आप किसी काउंसलर से अपने माँ बाप से मिलके उनसे संपर्क कर लीजिए, आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी,
1: धन्यवाद सर,
0: मुझे बिल्कुल उम्मीद है बहुत सार्थक चर्चा हुई और जो भी लोग सुन रहे होंगे उन्हें काफ़ी जानकारी पता चली होगी, और जो हमारे युवा साथी उनको आपने संदेश दिया ही है कि बिल्कुल भी इस जाल में ना फंसें, यदि कहीं धोखे से फंस भी गए हैं तो उससे निकलने के लिए किसी विशेषज्ञ की आप सलाह लें। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।
2: कार्यक्रम बातों बातों में अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं संदेश शांडिल्य के संगीत निर्देशन में मनोज मुंतशिर की रचना, आवाजें विजय प्रकाश और गायत्री गांजावाला की। फिल्म का नाम है लव यू मिस्टर कलाकार।

तो हम उम्मीद करते हैं आज के ये सभी गाने आपको बेहद पसंद आए होंगे। पूरे कार्यक्रम में विविध भारती के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब समय हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ, विविध भारती से जुड़े रहिएगा। तो अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी को दें आप इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गीतकार के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज गुलचन बावरा पर केंद्रित है, एक ऐसी जुनूनी शख्सियत पर जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म संसार में जबरदस्त नाम कमाया।

0: देखिए जी, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। साखी वाले दिन मैं जन्मा था। कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए, तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए, हमारी एक बहन है कौशल्या देवी, जो जयपुर में रहती थी।
1: पढ़ाई लिखाई के बाद गुलचन बावरा को शौक लग गया लिखने का और वो चले आए मुंबई।
0: जब मैं आया था बम्बई में 1955 में, तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी। और आज इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना।
1: लेकिन मुंबई वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे गायक बनने के लिए। आपको बता दें कि गुलशन बावरा को रेलवे में नौकरी मिल गई थी और कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई और उसके बाद वो चले आए मुंबई। सन 1955 में वो मुंबई आए, रेलवे में क्लर्की करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए और गायकी के लिए जद्दोजहद करते।
0: बम्बई ऐसी नगरी है कि यहाँ पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बम्बई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ।
1: यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई मालगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था, वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये कविता उन्होंने अपनी डायरी में लिखकर रख ली और मनोज कुमार को उन्होंने दिखाई, जो उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये कविता याद रह गई। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई, तो इस कविता को एक नामी गीत में बदल

0: गुलशन बावरा का नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है।
1: बात यूं है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था, तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। गीत लिखा चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जा, तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला एक तीसरा गाना लिखना था भजन, तो उसने उसको बोला कि ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसने ये दोनों गाने लिखे। तो बोले ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है, तो ये क्या लिखेगा, ये तो पिक पॉकेट सा पॉकेट मार सा लग बावरा। तो उस फिल्म में शैलेंद्र और हर्षद के भी गीत थे, तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं कि ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे हैं। तो बोले अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया।
0: तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीरजी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था सन 1961 में गुलशन बावरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी ताकत से फिल्मों में गाने लिखने लगे। गुलशन बावरा ने सबसे ज्यादा काम आरडी बर्मन के साथ किया। पंचम के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ही मशहूर रही है। गुलशन बावरा ने एक एल्बम भी जारी किया जिसमें वो पंचम से जुड़ी दोस्ती की और गाने बनने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम का उनके पास फोन आया। उन्होंने फोन पर गुलशन बावरा को एक धुन दी जो थी चाबू चाबू चिया चिया चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा ये क्या है, इस पर मैं क्या गाना लिखूं? तो पंचम ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं। दरवाजा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू, गीत क्या है धुन क्या है तू समझ गया गुल्लू, अब जल्दी से लिख दे गाना गुल्लू।

इस तरह से बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे माहौल में गुलशन बावरा और पंचम ने कुछ अनमोल गाने दिए। गुलशन बावरा को दो बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस गाने के लिए।

0: सन 1968 में फिल्म उपकार के इस गाने के लिए।
1: ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
0: जरा हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना सुन लीजिए और ये सोचिए कि गुलशन बावरा ने किस तरह के मजेदार और सुरीले गाने दिए फिल्म संसार।

बाबरा बहुत लंबे समय तक लिखते रहे, यहाँ तक कि अजय देवगन के अभिनय वाली हकीकत फिल्म का ये मशहूर गाना सुनिए जो उनके बाद के दौर का गाना है।

0: धिया पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम।
1: ले पपिया जब धिया पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम।
2: लेकिन उनके सबसे मजेदार गाने तो वही हैं जो 70 और 80 के दशक में उन्होंने दिए, जैसे झूठा कहीं का फिल्म का ये गाना।

वैसे आपको बता दें कि गुलशन बावरा पर्दे पर भी नजर आए फिल्म जंजीर के इस गाने में जो शख्स हारमोनियम बजाता हुआ थिरक रहा है वो गुलशन बावरा ही है। देवा

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। FM बैंड 103.2 MHz पर 9:55 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में स्वच्छता दीदियों द्वारा की जा रही हड़ताल को लेकर राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने 1,235 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में स्वच्छता दीदियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में बीते 1 अगस्त से जारी हड़ताल को लेकर राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण ने सभी नगर निगम आयुक्त और नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार हड़ताल में शामिल स्वयं सहायता समूह के अनुबंध को समाप्त करने और संबंधित सदस्यों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा सकती है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि हड़ताल के कारण किसी निकाय में सफाई व्यवस्था बाधित होती है तो संबंधित निकाय प्रमुख के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में हर हाल में सफाई व्यवस्था बनाए रखें। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने 1,235 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें सहायक अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता और संयंत्र परिचारक के से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर्स और स्टाफ, विधि विभाग, वित्त अधिकारी, सुरक्षा विभाग तक के पद शामिल है। आवेदन और परीक्षा तिथि का विस्तृत विवरण अलग से जारी किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वर्ष 2023 में पाटन विधानसभा चुनाव में हुई उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की अपील को अस्वीकार कर दिया है। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने हाईकोर्ट में दायर एक चुनाव याचिका में आरोप लगाया है कि बीते विधानसभा चुनाव में मतदान से एक दिन पहले भूपेश बघेल ने रोड शो किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की अपील को खारिज करते हुए कहा है कि तथ्यों की जांच के साक्ष्य के आधार पर हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए स्कूलों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, लिपिक और भित्तियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की है। विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया तय करते हुए निर्देश जारी किए हैं। आवश्यकता होने पर रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्कूल की व्यवस्था प्रभावित न हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल रायपुर में बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उसमें सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य में 18 अगस्त को टेबल टॉप एक्सरसाइज और 20 अगस्त को मॉक एक्सरसाइज होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के समन्वय, राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और गरियाबंद शामिल हैं। इन जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 9 अगस्त से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा 14 अगस्त तक करा सकते हैं। किसान अपने निकटतम बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। योजना का लाभ ऋणी और अऋणी दोनों किसान ले सकते हैं। गोबरा नवापारा में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को जेल ले जाते समय आरोपी के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर हमला करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में स्वच्छता दीदियों द्वारा की जा रही हड़ताल को लेकर राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने 1,235 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

प्रादेशिक समाचार अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए श्रोताओं छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई। कार्यक्रम अमराई में हम आपको आज सुनवाने वाले हैं बैतलराम साहू, आशा साहू और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी लोकगीत, और साथी भीम यादव और साथियों के गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का आनंद श्रोता आज लेंगे। तो कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए बैतलराम साहू, आशा साहू और साथियों की आवाज़ों में।

बैतलराम साहू, आशा साहू और साथियों को अभी आपने सुना, और अब आपको सुनवाते हैं भीम यादव और नीलिमा जैन की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
1: कार्यक्रम अमराई में अब लीजिए सुनिए बैतलराम साहू, आशा साहू और साथियों का ये लोकगीत।

पति सेवा है वो बहनी, और नारी बरी पति सेवा है ना। मन के मनवर ऐ मन के

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: कार्यक्रम अमराई में अब लीजिए सुनिए भीम यादव और साथियों की आवाजों में ये लोकगीत।

बैतलराम साहू, आशा साहू और साथियों का गाया ये छत्तीसगढ़ी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। आज कार्यक्रम अमराई में हम आपको सुनवा रहे थे भीम यादव और साथियों की आवाज़ों में गाए छत्तीसगढ़ी लोकगीत, साथ ही बैतलराम साहू, आशा साहू और साथियों के गाए कुछ चुनिंदा छत्तीसगढ़ी लोकगीत। और अब इसी के साथ छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई यहीं समाप्त हुआ। सुबह के 10:30 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम का पहला तराना फिल्म लुटेरा से लिया है शिल्पा राव, और अमिताभ भट्टाचार्य, अमित त्रिवेदी की आवाज़ें हैं इस गीत में। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है और संगीत अमित त्रिवेदी का।

लुटेरा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें दी थी शिल्पा राव, अमिताभ भट्टाचार्य और अमित त्रिवेदी ने। गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत अमित त्रिवेदी का था। और अब लीजिए सुनिए अगला गीत, मौसम फिल्म से ये गीत है, शाहिद की आवाज़, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: शाहिद माल्या की आवाज़ में फिल्म मौसम का ये गीत हम आप तक पहुंचा रहे थे। इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संगीत प्रीतम का। और अब कार्यक्रम नए तराने में समय हुआ है आज के ट्रैफिक अपडेट का, तो लीजिए सुनिए ट्रैफिक अपडेट उमा शंकर पांडे से।
1: नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमाशंकर पांडे।

और अब लीजिए सुनिए फिल्म एक दीवाना था। इस फिल्म का गीत राशिद अली घोषाल और टीमी की आवाज़ों में, जावेद अख्तर की रचना है, संगीत से संवारा ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, कृपया कार्यक्रम संबंधी ये सूचना सुनिए। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है और इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 10 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। और आप हमें फ़ोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता और आप सभी से चर्चा का विषय होगा फेफड़े एवं श्वसन रोग और उपाय। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752-266592। आपके फ़ोन का हमें इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई और अब अगला गीत है सत्य प्रेम की कथा। इस फिल्म से आवाजें हैं पायल देव विशाल मिश्रा की। एम ए एम तुराज ने इसे लिखा है, संगीत पायल देव का।

द फैमिली स्टार इस फिल्म का ये गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। आवाज़ दी थी हरजोत कौर ने, रश्मि विराग के बोल थे, संगीत से संवारा था गोपी सुंदर ने। और अब इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। FM एंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11 बजने को है। अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। मैटिनी शो कार्यक्रम में पिछले हफ्ते हमारे साथ थे जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी। क्या शानदार दास्तान उनकी जिंदगी की और कितने अनमोल किस्से। सुशील जी से बातचीत को इस हफ्ते आगे बढ़ाते हैं। यह है दूसरा भाग। बातचीत कर रहा हूं मैं आपका दोस्त यूनुस खान। जब आप कमेंट्री करते रहे और बहुत तनाव भरे मैचेस थे, तो आपने कुछ जुमले गढ़े थे जो लेजेंडरी बन गए हैं, जो मिथक बन चुके हैं, ये किस तरह से आए थे उसकी बात करें।
1: देखिए, एक तो मुझे 1979 का एक सिलसिला याद है कि भारत को जीत के लिए 438 रन आखिरी दिन बनाने थे और भारत 360 रन तक पहुंच गया था एक विकेट पर, और वक्त काफी था, रन बन सकते थे। सुनील गावस्कर ने 221 रन बनाए थे, बड़ी जबरदस्त पारी खेली थी
0: जी।
1: और उस समय मैं कमेंट्री कर रहा था, ओवल टेस्ट मैच की बात है, सभी को याद होगा। और उस समय हमने देखा कि कुछ बूढ़े किस्म के लोग वापस जा रहे थे मैदान से, तो मैंने फिर अंग्रेजी कमेंटेटर को कहा कि मैं आता हूं दो मिनट जरा पूछ के कि ये लोग छोड़ क्यों रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज। तो उन्होंने कहा, भाई हमें दिल की बीमारी है और हमारे डॉक्टर्स ने कहा है कि जब भी इस तरह का कोई रोमांच आए तो मैच छोड़ दीजिए, यह आपके दिल के लिए भारी पड़ सकता है।
0: अरे बाप रे।
1: तो मैंने ये सोचा कि ये जो बात यहां मौजूद है, भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं, रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है, क्योंकि जिन्हें दिल की बीमारी है शायद उनके डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे होंगे कि ये आंखों देखा हाल सुनना बंद कर दें, क्योंकि इस मैच का रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है।
0: तो क्या सुंदर बात।
1: तो उस समय जब ये कहा तो ये मुझे पता नहीं था कि ये कैसा रहा होगा, मैंने तो कह दिया। जब वापस आया उसी समय मेरी 3 घंटे बाद ही फ्लाइट थी बंबई की, बंबई आया तो लोगों ने गले लगा लिया मुझे, कि बोले क्या कमेंट्री की आपने, तो धड़कने बढ़ा दी, और लोगों ने इतनी प्रशंसा की और आज भी लोग याद रखते हैं। देखो 1979 की बात है, तेज रफ्तार जमाना है
0: जी,
1: लोग कल की बात भूल जाते हैं, आज 46 साल पुरानी 47 साल पुरानी बातें हैं। और आजकल तो आज हर मैच में कमेंटेटर लोग जिन्हें दिल की बीमारी है बोलने लगे हैं
0: जी जी,
1: क्योंकि वो ना तो वो कंपन पैदा कर सकते हैं ना ही वैसा वातावरण पैदा कर सकते हैं, एक यंत्रवत एक कह देते हैं
0: जी।
1: लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहे हैं, मुझे उसका बुरा नहीं लगता, क्योंकि अगर आपने कोई लकीर छोड़ी है, लोग उसके पीछे जा रहे हैं, अच्छी बात है, उस लकीर के ही लिए वो प्रशंसा कर रहे हैं
0: जी। सुशील जी, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: अपने समय के साथी कमेंटेटर्स को याद कीजिए और उनसे जुड़े कुछ किस्से सुनाइए सर। हाँ नहीं देखिए, पहली बार जब क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे ना, तो कई ऐसे कमेंटेटर होते थे जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं था।
1: हाँ।
0: अब आकाशवाणी पे ये समझ में नहीं आ रहा था शुरू में कि आवाज देखें, भाषा देखें, क्रिकेट का ज्ञान देखें। तो शुरू में कई लोग जिनको केवल भाषा और आवाज थी लेकिन क्रिकेट का ज्ञान नहीं था, तो ऐसे लोगों को भी चुना। तो एक मैच का मुझे याद है, वो 1969
1: जी
0: मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं भी नया नया था और मेरे साथ वाले जो सज्जन थे वो भी नए थे। तो वो एक नक्शा लेकर आए थे
1: हाँ
0: कि देख रहे थे कि तीन स्लिप, एक गली एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर ऐसा। तो अब उनको ये पता नहीं था कि अगला ओवर जो होगा वो दूसरी तरफ से होगा,
1: बिल्कुल।
0: तो वो नक्शा तो उन्होंने बदला नहीं। तो लाला अमरनाथ हमारे एक्सपर्ट थे,
1: जी जी
0: तो जब ओवर कंप्लीट हो गया और दूसरी तरफ से बॉलिंग होने लगी तो उन्होंने कहा, लाला जी ये क्या हो रहा है, ये तो थर्ड मैन से बॉलिंग क्यों कर रहा है। तो लाला अमरनाथ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, ये इसको नक्शा वापस सीधा कर दिया उन्होंने, उल्टा कर दिया, अब बोलिए। तो ये कई इस तरह की घटनाएं भी होती थी।
1: जी जी
0: लेकिन कोई बात नहीं, वो सीख के दिन थे, शुरुआती दिन थे। तो कई कमेंटेटर सीख रहे थे और आकाशवाणी ने भी समझा कि क्रिकेट का ज्ञान होना चाहिए, आवाज तो होनी ही चाहिए, भाषा होनी चाहिए, क्रिकेट का ज्ञान भी होना चाहिए। किसी भी एक चीज में कमी हो तो बात अधूरी रह जाती है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। उस जमाने में जब आपने क्रिकेट कमेंट्री शुरू की, तो मैंने एक चीज हमेशा जानी है कि पैसे कम मिलते थे और अपनी जेब के खर्च डाल के आप यात्राओं पर जाते रहे, लेकिन वो जुनून कायम रखा।
0: बिल्कुल, पहली कमेंट्री मैंने 15 रुपए दिन में की थी रणजी ट्रॉफी की।
1: ओहो।
0: और जब 1979 में मैं इंग्लैंड गया तो 100 रुपए प्रतिदिन,
1: हाँ।
0: और पाकिस्तान गया तो शायद 100 रुपए प्रतिदिन। पाकिस्तान 1978 और 82 दोनों बार पाकिस्तान गया मैं, और वो यात्रा भी अभूतपूर्व रही। मतलब पाकिस्तान का तो एक मैं कई बार किस्सा बताता भी हूँ।
1: जी जी
0: 1982 की बात है, और हमारे जो मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़ थे, जो

0: उनका काफ़ी वहाँ पर रुतबा था, सब लोग जानते थे उनको वहाँ और पाकिस्तान में। और अब हमारी टीम ने एक पार्टी दी थी पाकिस्तान में, और फतेह सिंह गायकवाड़ खड़े हुए बाहर सबको रिसीव कर रहे थे, मैं भी था और सुनील गावस्कर साहब भी थे, और अचानक आवाज़ उठी कि वो आ गई, वो आ गई। सबने कहा भाई कौन आ गई, मेरी भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, छोटा यंग था बिल्कुल आपकी तरह। मैंने कहा भाई कौन आ गई, कौन स्टार आ गई। तब देखा एक मिडिल एजेड वुमन वहां पर आई, और गायकवाड़ साहब ने परिचय कराया कि ये सुनील गावस्कर हैं, भारत के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं और दुनिया इनकी मुरीद है, भारत के कप्तान हैं, आप तो इनको जानते ही होंगी। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो जहीर अब्बास और इमरान खान को जानती हूँ। तो गावस्कर साहब को पूछा कि भाई कोई बात नहीं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे ना, ये मल्लिका तरन्नुम नूर जहां हैं। तो गावस्कर साहब तो कद में भले ही छोटे हैं लेकिन स्वाभिमान के मामले में बड़े हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूँ।
1: अरे बाप रे।
0: तो ये मैं कभी भूलता नहीं कि
1: मौके पे चौका,
0: विरोधी मौके पे चौका, आप सही कह रहे हैं। तो आप विदेशी भूमि पर जब मार्शल लॉ लगा हुआ हो और वहां पर स्वाभिमान की बात, तो गावस्कर साहब के चरित्र में आज भी यही बात देखने को मिलती है कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने में हिचकते नहीं है।
1: क्या बात है, यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं। ऐसा ही

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि जब कमेंट्री करते हुए बहुत तनाव भरे पल आते रहे और जब यूं लगा कि मैच जो है वो एक कच्चे धागे से लटका हुआ है, किसी भी तरफ जा सकता है, ऐसे समय में आपने कहा कि, और ये हमने देखा भी है, आप और पूरी टीम तटस्थ कमेंट्री करती रही, लेकिन अंदर से दिल को क्या महसूस होता रहता था और उसको कैसे बैलेंस करते थे आप?
1: नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि दिल तो चाहता है कि भारत जीते
0: जी,
1: और चूंकि आप निष्पक्ष रहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी कहती है कि नहीं, और फिर पब्लिक जैसी आवाज आती है ना,
0: हाँ,
1: आप तो रेडियो के खुद ही आवाज है एक मशहूर, तो ये जानते हैं कि पब्लिक की आवाज के ऊपर से आपकी आवाज जानी चाहिए, आपकी आवाज खोनी नहीं चाहिए
0: जी,
1: तो पब्लिक की आवाज के हिसाब से ही आपकी आवाज उतार चढ़ाव होते हैं और पता लग जाता है अनुभव से कि पब्लिक आवाज कैसी आ रही है, सुनाई भी देता है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि ये संतुलन, कि आप सब चीजों के पार जाकर अपने आप को संतुलित करें और एक संतुलित प्रदर्शन करें, जैसे खिलाड़ी करता है ना मुसीबत में, वैसे ही आपकी कमेंट्री

0: का भी ये एक तेजाबी परीक्षण है ये,
1: क्या
0: कि
1: बात है।
0: आप कैसी कमेंट्री कर रहे हैं। आप बहुत चिल्ला तो नहीं रहे, क्योंकि चिल्लाना भी नहीं चाहिए, आपकी आवाज फट तो नहीं रही, कई आवाज फट जाती है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट जो रोमांच है वो इतना बढ़ जाता है कि आप सनसनीखेज आवाज पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। आपको संतुलित ढंग से और उसी हिसाब से जितना रोमांच है बस उतना ही परोसे, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। एक अच्छे कमेंटेटर की पहचान ऐसे ही क्षणों में होती है।
1: बिल्कुल सही है सुशील जी। यहां पर मुझे लगता है कि ये गाना सुन लेते हैं।

0: देखिए, हमारे सुनने वालों में बहुत अलग अलग तरह के उम्र के लोग हैं। कुछ लोग वो हैं जो मेरी उम्र के हैं, जिन्होंने पूरा रेडियो कमेंट्री का दौर देखा है, और फिर टेलीविजन आते और फिर रेडियो कमेंट्री को थोड़ा कम होते देखा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेडियो कमेंट्री का सबसे सुनहरा दौर देखा है और ट्रांजिस्टर कान पे लगा के सुनते रहे, जिसमें लोग पूछते थे भाई साहब स्कोर क्या है ना। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी जनरेशन के बाद के हैं, जिन्होंने ये नहीं सुना है। उनके लिए मैं चाहता हूं कि एक झलक हम सुन पाएं तो अच्छा होगा।
1: नमस्कार, मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच में मुंबई के ब्रिबोन स्टेडियम पर मैच खेला जा रहा है और भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। और भारत के दोनों ओपनिंग बैट्समैन सुनील गावस्कर और चेतन चौहान पिच पर पहुंच चुके हैं। पूरा स्टेडियम खचा खच भरा हुआ है, 50,000 दर्शकों की मौजूदगी है। और मैं जहां भी जा रहा हूं ना, आज होटल की रिसेप्शनिस्ट से लगाकर जो रिक्शा चालक है, वो भी एक ही बात कर रहा है कि आज भारत और पाकिस्तान का यह मैच होगा, किस प्रकार, कौन जीतेगा, एक ही चर्चा का विषय है। क्योंकि क्रिकेट का खेल, भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है ना, ये मुकाबला सभी दिलचस्पी के मामले में सभी मुकाबलों का बाप कहा जाता है। तो पहली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं इमरान खान पवेलियन की तरफ से, और गावस्कर को वो गेंद करेंगे। जो फील्डिंग की जमावट है वो इस प्रकार है, तीन स्लिप है, एक गली है, एक एक्स्ट्रा कवर है, एक मिड ऑफ है या ऑफ साइड की फील्ड, और ऑन साइड में एक मिड ऑन, मिड विकेट और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। छह फील्डर्स ऑफ साइड में, तीन फील्डर्स ऑन साइड में। इमरान तैयार, पवेलियन की तरफ से गेंद कर रहे हैं गावस्कर को, ओवर पिच्ड ऑफ स्टंप पर, और गावस्कर आ गया है, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से चादर के लिए।
0: गजब गजब गजब, इतना शानदार है कि मेरा मन एकदम झूम उठा। जो सुनने वाले हैं वो भी ताली बजा रहे होंगे, और मैं ये पूरा जो आपने ये जो समा बांधा, मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने इतना शानदार दौर याद दिला दिया।
1: बहुत धन्यवाद। और रेडियो के श्रोताओं से बात करके तो मैं हमेशा भावुक रहता हूं, क्योंकि यहीं
0: जी
1: से मेरी शुरुआत हुई है, मेरी पहचान भी यहीं से स्थापित हुई, और आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया।
0: जी, अभी तो और बातें करेंगे। यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, रॉकी फिल्म का गाना सुनते हैं, आ देखे जरा किसमें कितना है दम।

0: सुशील जी, कमेंट्री का पूरा एक दौर देखा आपने और बहुत अलग-अलग तरह के कमेंटेटर्स को सुना, हिंदी के और अंग्रेजी के। आपके बहुत फेवरेट कमेंटेटर्स कौन से रहे हैं?
1: नहीं, देखिए, मैं जॉन अर्नोट को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो एक कवि भी थे, तो
0: जी
1: उनका क्रिकेटिंग नॉलेज उतना नहीं था, लेकिन उनकी भाषा अद्भुत रहती थी। तो एक ही बात मैंने उनसे सीखी कि कम शब्दों में ज्यादा व्यक्त करो, जो कहते हैं ना शब्दों की किफायत, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स कहते हैं। तो जब आप इस तरह की किफायत वापरते हैं तो असर ज्यादा पड़ता है, सही शब्द सही जगह, तो असरदार शब्द। तो ये बहुत महत्व की बात मैंने उनसे सीखी और मैं कमेंट्री बॉक्स में लेकर आया था। 1979 में जब इंग्लैंड गया तो
0: जी
1: उनको अपने कमेंट्री बॉक्स में लेकर आए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूलता। उन्होंने कहा, हर शब्द का एक चित्र होता है।
0: वाह,
1: जैसे आपने कहा कि ही ड्राइव थ्रू द कवर टू 4 रन, तो इसका मतलब कि उसने हल्के से खेला है। और जब आप कहते हैं कि ड्राइव थ्रू द कवर 4 रन, तो इसका मतलब जोर से खेला है। तो शब्द का एक चित्र होता है,
0: क्या प्यारी
1: तो
0: बात।
1: ये शब्द का चित्र के रूप में जब आप खींचेंगे तब आपकी कमेंट्री ऐसा लगेगा सजीव चित्रण होगा। तो ये बात मैंने उनसे सीखी
0: जी
1: और अपनी कमेंट्री में मैं लगातार सीखता, आज भी सीखता हूँ, कई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ये उसमें आप बेहतर होते हैं। और इंसान होने का सबूत क्या है अच्छे इंसान होने का? यही है कि आप निरंतर सीखते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें, जिज्ञासु रहें, तभी तो आप भविष्य की तरफ देख रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: ये अन्यथा उम्र आपको मार देगी। तो लेकिन उसको जीतना है तो यही करना है कि आप आगे बढ़ते रहें, बेहतर होते रहें, और जो आपको सुन रहे हैं उनको लगे कि भाई वो भी बेहतर अनुभव कर रहे हैं जब सुन रहे हैं आपको।
0: क्या प्यारी बात है। क्रिकेट कमेंट्री के अलावा जीवन में आप और क्या करते रहे हैं? आपका प्रोफेशन क्या रहा है?
1: नहीं, वैसे तो मैं इंजीनियर हूं और मैं एक बात जानता हूं, भारत जैसे देश में अगर आप व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो तो लोग आपकी कला को भी ठीक से नहीं आंकते हैं। सच्चाई है, देखिए लाख लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन जीवन की सच्चाई ये है कि आपको व्यावसायिक रूप से भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। और ये हर कलाकार को समझना चाहिए कि वो एक कलाकार ही नहीं है, एक परिवार का हिस्सा भी है, परिवार का एक व्यक्ति भी है, वो किसी का पति भी है, किसी का पिता भी है, किसी प्रेमिका का प्रेमी भी है। ये तमाम चीजें उसको ध्यान में रखनी चाहिए और वो जिम्मेदारियां भी उसकी है। अगर पिता ने

0: के प्रति कोई सपना देखा है व्यावसायिक रूप से सफल होने का, तो वो भी एक आपकी जिम्मेदारी है कि वो सफल सिद्ध हो,
1: जी
0: और साथ में आपकी कला को तो आगे बढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे क्षेत्रों को आप छोड़ दें तो फिर जीवन असफल हो जाता है, लोग आपकी गणना या आपका अंकन ठीक से नहीं करते। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बहुतेरी भूमिका, तो मैं अब जैसे शोरूम है हमारा इंदौर में, 150 आदमी काम करते हैं,
1: जी जी
0: जहाँ एक 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहते थे, और आज 4 शोरूम्स हैं हमारे, कुल
1: जी
0: मिलाकर 150 आदमी काम करते हैं यहाँ से वहाँ तक, और बेदाग, यानी कि बिल्कुल बेदाग जिंदगी, अभी तक किसी का चुकाना बाकी नहीं। तो ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो ये आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण को और जीवन की सफलताओं को नए पैमाने प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। यहाँ एक और दिलचस्प सवाल मेरे जहन में था कि आपने तमाम देशों की यात्राएं की क्रिकेट कमेंट्री करते हुए, सबसे यादगार और दिलचस्प यात्रा कौन सी थी?
0: नहीं, दो बातें मैं जरूर यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो ऑस्ट्रेलिया
1: जी
0: मैं गया था, सबसे अच्छी जगह मुझे वही लगी ऑस्ट्रेलिया। 3 महीने का दौरा था 1977-78 में, और मैं भूलते नहीं कि वहाँ पर जो कीथ मिलर हैं वो ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के लिए कमेंट्री कर रहे थे अंग्रेजी में,
1: जी
0: उनके फोटो में एल्बम में बचपन में लगाया करता था। कीथ मिलर यानी क्रिकेट के ऐसे व्यक्ति जो अगर 10 ऑलराउंडर्स ऑल टाइम बेस्ट अगर गिने तो कीथ मिलर का नाम उसमें लेंगे। तो एक दिन मैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा था, कई यंगस्टर्स भी जो थे ना, जवान लड़के लड़कियाँ आते थे, कि एक लड़का पता नहीं किस भाषा में बहुत जोर से मुंह चला रहा, बहुत तेजी से मुंह चला रहा, ये बातें बड़ी फैल रही थी, और 20-20 लोग हमारे कमेंट्री, 20-30 लोग इकट्ठे हो जाते थे ऑस्ट्रेलिया के, कि अजीब, क्योंकि दुनिया में अंग्रेजी के अलावा कोई कमेंट्री होती नहीं थी उस समय।
1: जी जी
0: तो एक दिन मैं कमेंट्री का सेशन करके जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देखा कीथ मिलर पीछे खड़े हैं, और मेरे तो होश उड़ गए, तो मतलब पसीना पसीना हो गया। मैं छोटा था, तो उम्र
1: जी,
0: में
1: जी।
0: 29 साल का था, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मुझे एक तरफ ले गए और मुझे कहा कि बॉय, आई हैव नॉट अंडरस्टूड ए सिंगल वर्ड ऑफ वॉट एवर यू सेड, बट वॉट एवर वेंट इन टू माई ईयर्स वॉज वेरी स्वीट।
1: वाह वाह,
0: तो ये जो मैं समझता हूँ जिंदगी में एक बहुत बड़ा ये कमेंट था, कि भाई वो जो आदमी आपकी भाषा नहीं समझ रहा, वो आपको कह रहा है कि आप उनके कान में मिश्री जैसी आवाज आ रही। और एक और कमेंट जो मुश्ताक अली साहब ने, महान खिलाड़ी,
1: इंदौर के,
0: इंदौर के मुश्ताक अली साहब और मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, 1936 में ऐसे व्यक्ति जो पहली बार इंग्लैंड में जिन्होंने शतक लगाया,
1: जी
0: पहले भारतीय, तो उन्होंने एक बार कही कि लता मंगेशकर ने गायकी में ईश्वर ने भेजा उनको, मुझे बैट लेकर भेजा बल्लेबाजी करने के लिए, और सुशील दोषी तुमको भेजा हिंदी की कॉमेंट्री करने के लिए।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये बहुत बड़ा कॉमेंट। और तीसरा सबसे बड़ा कॉमेंट जो मुझे कहा आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर, जिन्होंने मुझे पहले भगाया था ना,
1: जी जी,
0: उन्होंने कहा था कि यार तुम्हारी आवाज एक ईमानदार आवाज है,
1: अद्भुत।
0: तो मैं ये समझा कि तरह तरह की आवाजें, मीठी आवाज, मोटी आवाज, बच्चन बैरिटोन, पतली आवाज है ना, सुरीली आवाज, लेकिन ये ईमानदार आवाज, आज भी सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इससे बड़ा कमेंट तो मैंने अपनी जिंदगी में सुना नहीं।
1: वाह,
0: तो ये जो बातें मैं कभी भूलता नहीं, तो ये तमाम चीजें। और एक किस्सा मैं जरूर सुनाना चाहता हूँ।
1: जी जी,
0: कि वो जो भाषा की बात कर रहा था, लालित्य की बात कर रहा था हिंदी भाषा की,
1: जी जी जी,
0: फिरोज शाह कोटला ग्राउंड पर सुनील गावस्कर 86 रन पर नॉट आउट थे, और शाम का वक्त था, तो मैंने, मेरे हाथ में माइक्रोफोन था, मैंने कहा शाम ढल रही है और मैदान पर खिलाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है।
1: आहा हा,
0: तो
1: सुंदर,
0: इतना अच्छा लगा, अखबारों में भी छपा के इतना बढ़िया वर्णन, एक तरफ डूबता हुआ सूरज, दूसरी तरफ भारत का सूरज जो अभी भी विद्यमान है चमक के साथ। तो ये कब हो सकता है, जब आप साहित्य पढ़ते हो।
1: जी जी जी,
0: अगर आप साहित्य नहीं पढ़ते हो, रोमन लिपि में आप समझते हो हिंदी, तो ये बातें आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते।
1: और उस लेवल पर मैच को महसूस करना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण
0: सबसे बात बड़ी बात जो आपने कही ना अभी, कि जो आप महसूस करोगे तो महसूस कराओगे, ये जिंदगी में अगर आपने रखा है तो आप सफल कमेंटेटर या जो भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो वो उसमें कामयाब होंगे।
1: बिल्कुल। सुशील जी, कितना सुंदर वर्णन शाम का आपने किया, और मुझे इस पर एक गाना याद आया जो मैं जानता हूं कि आपका पसंदीदा है, सुहानी शाम ढल चुकी न जाने तुम

0: सुशील जी, सबसे पसंदीदा क्रिकेटर्स कौन से रहे आपके? नहीं, मैं सुनील गावस्कर को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वो स्वाभिमानी भी है, तकनीक उनकी अद्भुत, ऐसी तकनीक मैंने किसी की नहीं देखी। बिना हेलमेट के आप वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं, और ऐसे पिचेस पर ढकी हुई नहीं है
1: बिल्कुल,
0: और बाउंसर की कोई सीमा नहीं है, आपके शरीर पर आक्रमण कर रहा है आदमी, और एक नहीं चार चार एक साथ। वो ऐसे वक्त पर उन्होंने क्रिकेट खेला जब दुनिया में सबसे खूंखार बॉलर्स दुनिया में थे। आप वेस्ट इंडीज में देखे कि एंडी रॉबर्ट्स, माइकल होल्डिंग, मेलकम मार्शल, यू नो, कॉलिन क्राफ्ट, या पाकिस्तान में देखो तो इमरान खान और वसीम अकरम, इंग्लैंड में देखे तो जॉन स्नो, है ना, तो ये तमाम, या ऑस्ट्रेलिया में देखो तो टॉम्पसन और लिली, इतने खूंखार बॉलर एक समय दुनिया में कभी भी नहीं रहे।
1: जी जी जी
0: उन सब बॉलर्स को अनढके विकेटों पर, पिचों पर उन्होंने बिना हेलमेट के जिस तरह से खेला, दुनिया को कोई दूसरा को नहीं खेल पाता। तो मैं समझता हूं कि उनसे बड़ा कोई तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेट को स्वाभिमान जिसने दिलाया, ये तो तेज गेंदबाजी के खिलाफ भारतीय बैटर जरा घबराते थे,
1: जी जी
0: वो स्वाभिमान उन्होंने दिलाया भारत को।
1: जी जी और विश्व क्रिकेट में कौन पसंदीदा रहे हैं?
0: नहीं, विश्व क्रिकेट में जो, एक तो ये है कि डॉन ब्रैडमैन के बड़ा तो कोई रहा ही नहीं, ऐसा जैसा इयन चैपल ने भी कहा कि उनके साथ किसी की भी तुलना करना यानी कि क्रिकेट का ही अपमान है, ऐसा उनका कहना है। हालांकि उनको मैंने खेलते भी नहीं देखा, उनसे मुलाकात जरूर हुई
1: जी,
0: लेकिन उन्हें खेलते भी नहीं देखा।

0: लेकिन उनके रिकॉर्ड से बता रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अगर बैटर्स कहें तो सचिन तेंदुलकर
1: जी
0: बहुत बड़े बल्लेबाज, वो भी अपने आप में। और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन की गली में खेल को ले जाकर खेलना,
1: वाह वाह
0: अगर
1: वाह,
0: किसी व्यक्ति में था तो वो सचिन तेंदुलकर,
1: बिल्कुल
0: कि वो खेल की धारा को मोड़ देते थे।
1: जी। 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता, उस वक्त आप कहाँ थे और
0: नहीं, उस
1: क्या?
0: समय तो कमेंट्री हुई नहीं हिंदी में भी, क्योंकि उस समय क्या था कि किसी ने भी गंभीरता से लिया ही नहीं था कि जो वनडे क्रिकेट है ना, ये कोई महत्वपूर्ण क्रिकेट है। क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी खुद ही ने टिकटें कोई अमेरिका की ले ली थी सेमीफाइनल की, वक्त ही उनको लगा कि जीत ही नहीं पाएंगे।
1: जी
0: तो ये तो हम लोग तो कमेंटेटर थे, तो हिंदी की कमेंट्री नहीं हुई उस समय। क्या कहते थे भारत में कि भाई ये टेस्ट क्रिकेट है वो शास्त्रीय क्रिकेट है, और वनडे क्रिकेट जो है पायजामा क्रिकेट है।
1: जी
0: बाद में T20 क्रिकेट को चड्डी क्रिकेट कहना शुरू कर दिया, और
1: जी
0: टीन क्रिकेट जो आया उसके बाद तो हमने सोचना ही बंद कर दिया।
1: बिल्कुल। कुल मिलाकर जो टेस्ट क्रिकेट है वो सही मायनों में क्रिकेट है
0: रेड बॉल क्रिकेट जो होता है ना,
1: जी।
0: सही, क्योंकि गेंद स्विंग और सीम होती है, और परिस्थितियां ऐसी रहती है जो बॉलर और बैटर को बराबरी का मौका देती है। इसी कारण वो जो बड़े खिलाड़ी रहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट को असली क्रिकेट मानते हैं।
1: जी बिल्कुल। सुशील जी, बहुत सारी किताबें आपकी हैं और उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो है आंखों देखा हाल, जो आपकी एक तरह से बायोग्राफी है। उसके अलावा भी क्रिकेट पर बहुत सारी किताबें आपने लिखी हैं, अखबारों में आपके कॉलम्स लगातार हम पढ़ते हैं। ये जो लिखने वाला मामला है, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए
0: नहीं, ये मैं 1966 से ही लेखन भी करता हूं।
1: जी।
0: मेरा पहला लेख 1966 में छपा था। कमेंट्री तो मैं 1968 में मैंने पहली की, लेकिन 1966 में मेरा पहला लेख छप चुका था। तो लेखन के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति मेरी आस्था और लगाव लगातार बना रहा, और इसी कारण मेरी भाषा हमेशा ठीक ही रही हिंदी के हिसाब से। तो ये मैंने बहुत सारी 15 किताबें, जैसे आपने जिक्र किया अभी, कुछ 15 किताबें, और सबसे मेरी इच्छा थी कि एक किताब ऐसी भी लिखूं जो क्रिकेट कमेंट्री पर हो।
1: जी
0: तो
1: जी
0: क्रिकेट कमेंट्री एक कला एक विज्ञान नाम से पुस्तक एक मैंने लिखी, शायद दुनिया की पहली पुस्तक है जो कमेंट्री पर, कमेंट्री कला के हिसाब से
1: जी
0: लिखी हुई। तो वो किताब का अंग्रेजी अनुवाद भी हो गया है, और वो किताब की 65,000 प्रतियां बिक चुकी हैं।
1: वाह
0: तो जो बहुत बड़ा, क्योंकि आज के जमाने में लोग पढ़ते कम है,
1: जी
0: फिर भी 65,000 कॉपियां उसकी बिक चुकी हैं। तो एक ये जो मुझे लगता था कि जो काम मुझे करना चाहिए वो काम मुझे कर देना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम किताबें भी हैं और कॉलम्स भी लगातार अभी भी आप लिख रहे हैं।
0: हाँ, करीब 5,000 से ज्यादा लेख और कॉलम्स, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि ये मुझे पूर्ण बनाती है।
1: जी
0: ये कॉलम लिखना, उसमें पैसा तो कोई इतना रहता है नहीं, पैसा तो रहता है मुफ्त में तो मैं लिखता नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये भी है कि एक जो कला ईश्वर ने आपको दी है उसको बराबर पूरा करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि लोगों तक आपके विचार बांटना चाहिए। उससे पता चलता है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हो। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को तुर्रम खान समझें
1: जी
0: और लोग आपको नहीं समझें तो क्या अर्थ है। तो
1: जी
0: ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की प्रतिक्रिया भी आप समझें।
1: जी जी आपका अपना एक डिसिप्लिन और आपकी अपनी एक फिटनेस भी एक एनवायबल है, उसके बारे में
0: नहीं,
1: बताइए।
0: जीवन में देखिए उत्साह,
1: जी
0: और दूसरी बात, आप जब तक क्रिएटिव हैं, यानी कि आप रचनात्मकता जब तक आप में हैं तब तक आप जवान हैं। और रचनात्मकता जिस दिन गई और जिस दिन आपको लगा कि आप समाज के लिए उपयोगी नहीं हैं, तब आप वेजिटेबल हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि रचनात्मकता आज भी मुझ में सीखने की वही इच्छा शक्ति, अच्छी चीजों के प्रति प्रशंसा का वही भाव, और सबसे बड़ी बात कि चुनौती को हर बार स्वीकार करने की इच्छा, ये आज भी बनी रहती है। और जब तक ये बनी है तब तक मैं अपने आप को काफी स्फूर्तिमान और काफी जोश मुझ में रहता है, कुछ भी नई चीजें करता ही रहता हूं। अभी
1: जी
0: भी मेरे मस्तिष्क में 2-3 किताबें लिखने का है। तो जो भी साथ में है, एक बहुत लंबी योजना नहीं बनाता हूं, जो
1: जी
0: योजना बनाई उसे पूर्ण करो और कार्य रूप में बदलो।
1: यहां गाना सुनते हैं, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।

ये भोले से चेहरे हैं मासूम।

0: आपने आज इस बातचीत में एक बहुत सुंदर वाक्य कहा था कि जंगली सपने भी सच होते हैं, वाइल्ड ड्रीम्स। इस बातचीत को दुनिया के कोने कोने में हिंदी भाषी लोग सुन रहे हैं, देश के कोने में किसी छोटे कस्बे में आंखों में सपने लिए कोई नौजवान सुन रहा हो, उससे भारत के महान क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी क्या कहना चाहेंगे?
1: नहीं, बस ये कहता हूं कि अपने आप को एक तो कम मत आंको। देखिए, मेरी तरफ आप ध्यान दें, मेरी कहानी की तरफ ध्यान दो तो बचपन में मुर्गा बनने की कहानी, मास्टर से डंडे खाने की कहानी और सप्लीमेंट्री लाकर पास होने की कहानी। एक मामूली आदमी भी अगर इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कमेंटेटर बन सकता है और पद्मश्री की उपाधि तक भी पहुंच सकता है, तो आप लोग तो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े हो भाई लोगों, आप लोग तो आगे बढ़ ही सकते हो और दिखा दो कि आप में दम है। क्योंकि हर व्यक्ति में संभावना अनंत रहती है, संभावनाओं को पहचानने की जरूरत है।
0: जी, जिस पल पद्मश्री की घोषणा हुई आप कहाँ थे और इस खबर के बाद किस तरह की कैफियत आपकी और आपके परिवार की थी?
1: नहीं, देखिए 2016 में मुझे पद्मश्री प्राप्त हुआ और मैं तो दिल्ली में कमेंट्री कर रहा था।
0: अच्छा,
1: मुझे पता नहीं था कि पद्मश्री मिल सकता है, तो मेरे बेटे का फोन आया कि कुछ लोग आए और पूछताछ कर रहे हैं और पता नहीं कि क्यों पूछताछ कर रहे हैं, वो उनको लगा कि कोई छापा तो नहीं पड़ रहा तो वो घबराया तो मुझे फोन किया, तो मैंने कहा मुझे बात कराइए। तो मैंने पूछा कि क्यों, क्या पूछताछ करना चाहते हैं। दिल्ली में था, मैं कमेंट्री कर रहा था
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे ही कुछ पूछना है, तो भारत सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं उन्होंने
0: जी।
1: और जब भोपाल आया, वहां से ट्रेन से आया
0: जी,
1: भोपाल उतरा मैं, तो भोपाल से फिर मुझे एक दिन पहले जब उतरा तो किसी का फोन आया दिल्ली से कि आपको पद्मश्री देने की घोषणा हुई और आपको स्वीकार है क्या? तो मैंने कहा भाई इतनी बड़ी अगर उपाधि और देश अगर

0: इतना प्यार कर रहा है, तो मैंने कहा बिल्कुल स्वीकार है। तो ये हुआ, फिर इंदौर आ गया, फिर घर पे मैंने फोन से बताया माता पिता। मेरी माँ के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा, बड़ी
1: जी
0: महत्वाकांक्षा थी,
1: जी जी जी
0: महत्वाकांक्षी व्यक्ति, उनका मुझ पर बहुत प्रभाव।
1: जी
0: पिताजी बहुत सीधे साधे, महत्वाकांक्षी नहीं थे, बच्चे का सपना पूरा करना बस। और माँ बहुत महत्वाकांक्षी, बच्चे को आगे बहुत नाम कमाना है, गरीबी में नहीं रहना है, ये उनको बड़ा था। और उनका सपना भी मुझे पूरा करना था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि मेरी माँ तब जिंदा थी,
1: जी जी
0: उनके जीते जी पद्मश्री मिल गया। तो उन्होंने एक बात कही कि जिस माँ के बेटे को पद्मश्री मिल गया हो, उसको अब जीवन में और क्या चाहिए।
1: वाह
0: देखिए माँ होती है तो ऐसी बातें करते हैं, तो कई बार आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन ठीक है, जीवन है, बहते रहने का काम है।
1: जी, आपको मिला पद्मश्री, हिंदी क्रिकेट कमेंट्री का सम्मान माना जाना चाहिए।
0: नहीं बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूं कि सम्मान जो था वो हिंदी को मिला है, और मुझे खुशी है कि हिंदी भाषा को जो पहले द्वयम दर्जे की बात मानते थे ना कमेंट्री के क्षेत्र में,
1: जी
0: उसमें इतनी पहचान मिलना, तो हिंदी कमेंट्री के प्रति लोगों की आस्था और लोगों की श्रद्धा और लोगों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ी है, तो अच्छा लगा कि हिंदी के लिए कोई कार्य मैं कर पाया।
1: जी सुशील दोषी जी, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपसे ये लंबी बातचीत कर पाया। हमसे ये वादा कीजिए कि विविध भारती पर आप फिर आएंगे और हम फिर लंबी बात करेंगे।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। और आपसे बात करके मुझे तो आपसे शिकायत भी रही कि आपने कमेंट्री क्यों नहीं की, आपकी आवाज़ इतनी बढ़िया है, लेकिन अच्छा ही किया। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे ऐसी कॉम्पिटिशन मुझे ही मिले।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।

जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी से लंबी बातचीत अभी आपने सुनी, आज दूसरा भाग था। बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर जरूर लिखें, मैटिनी शो की पोस्ट पर, या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप अपनी राय दे सकते हैं, या फिर vbnsmumbai@gmail.com पर अपनी राय दीजिएगा।

0: प्रदेश में हर घर तिरंगा और वंदे मातरम अभियान के तहत 17 अगस्त तक राज्य स्तरीय देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7 से 15 अगस्त तक वंदे मातरम गायन, 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाएगा। वहीं बीजापुर जिले में 7 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर विश्वदीप और पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता ने कीर्ति चक्र से सम्मानित अमर शहीद सोढ़ी नारायण के निवास में उनके परिजनों को तिरंगा भेंटकर इस अभियान का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए स्कूलों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, लिपिक और भृत्यों की नियुक्ति की व्यवस्था की है। विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया तय करते हुए निर्देश जारी किया है। आवश्यकता होने पर रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्कूल की व्यवस्था प्रभावित न हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कल रायपुर में बाढ़ आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राज्य में 18 अगस्त को टेबल टॉप एक्सरसाइज और 20 अगस्त को मॉक एक्सरसाइज होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के समन्वय, राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरबा और गरियाबंद शामिल है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा प्रदेश के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 9 अगस्त से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा 14 अगस्त तक करा सकते हैं। किसान अपने निकटतम बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं। योजना का लाभ ऋणी और अऋणी दोनों किसान ले सकते हैं। गोबरा नवापारा में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को जेल जाते समय आरोपी के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हमला करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज से राज्य के 3 जिलों में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम शुरू होंगे। प्रदेश में स्वच्छता दीदियों द्वारा की जा रही हड़ताल को लेकर राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम रिले कर रहे थे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पढ़ाई के बाद छात्र जीवन की नई शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती हैं।

0: और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आईआईटी दिल्ली कैंपस में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि आप केवल डिग्री नहीं अपने सपने लेकर यहां से निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 587 पीएचडी शोधार्थियों को सम्मानित किया। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच सरकार और विद्यार्थी प्रतिनिधिमंडल के बीच कल पहली औपचारिक वार्ता हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चली बैठक में विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और भर्ती प्रक्रिया में व्यापक सुधार की मांग दोहराई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। इसी दौरान चलवांज मोड़ के पास चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। चंबा के पुलिस अधीक्षक विजय सकलानी ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने इस घटना में परिजनों को होने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क रहेंगे। व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। परिषद ने बताया कि बैंक, फिनटेक कंपनियां, एनपीसीआई, रिजर्व बैंक यूपीआई को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नई सुविधाओं में लगातार निवेश कर रहे हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। दोनों आरोपी पंजाब और नई दिल्ली में सुनियोजित हमले के लिए आईईडी, विस्फोटक और हेरोइन की कथित तस्करी में संलिप्त हैं। एजेंसी की मोहाली विशेष अदालत में कल शुभम कुमार और फरार जसवीर चौधरी के विरुद्ध अभियोग पत्र दायर किया गया। रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। यूक्रेन की राजधानी कीव के निकट रूस द्वारा रात में किए गए मिसाइल हमलों में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। आज तड़के कीव के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये हमले हुए। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के 3rd दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2रा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हेवेंस ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। इस गाने से शुरुआत करते हैं। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन, शोले।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है

0: आ रही हैं
1: महबूबा महबूबा
0: महबूबा विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे दिन के 12:11:35 और अगर आपके शहर में बारिश है तो ये गाना आपके लिए

0: बारिश तेज है, अरे अरे अरे भीग जाएंगे, अरे मैंने कहा बारिश तेज है, ये भीग जाएंगे।
1: दो झूठ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में था। एमजी हशमत के बोल थे।
2: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे।

यादों की महफिल में अब गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम है वारंट। आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन।

0: बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय बदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
1: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
0: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहतनामा,
0: किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम साहिब बहादुर। राजेंद्र कृष्ण की बोल मदन मोहन की तर्ज।

साहिबान, आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे गोविंदर सिंह की आवाज फिल्म का नाम मौसम

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थीं। फिल्म का नाम जूली, आनंद बख्शी, राजेश रोशन। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आ रही है किशोर कुमार की ही आवाज में। अमित खन्ना के बोल, राजेश रोशन की तर्ज है। फिल्म का नाम है देश परदेश।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: ध्वनि तरंगोती ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज की इबारत विविध भारती के फेसबुक पेज पर पोस्ट हो चुकी है और आप सभी ने पढ़ी ही होगी। जिन श्रोताओं ने फेसबुक पोस्ट नहीं देखी है उनके लिए इबारत यहां पेश है। इतने दिन कहां थे, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, ये कैसी बातें कर रहे हो, घनी थी उलझन बैरी अपना मन, अरे खुलकर कहो ना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला आए, ओफो कहना क्या चाहते हो, मुझको अभी चुप रहने दो, पहेलियां बुझाना छोड़ो ना, हम क्यों शिकवा करें झूठा, अरे किससे शिकवा हुआ है, क्या बात है, इंसान मोहब्बत कर बैठा पर ये तो अच्छी बात है ना, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, फिर वही, अरे खुलकर कहो ना, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दें, देखो ये ठीक बात नहीं है, इस तरह उलझी बातें कौन करता है, बातें हैं बातों का क्या, हाय इतना दुख मेरी तो आंख भर आई, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, अब तुम हद कर रहे हो, अपनी तो यह आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, चुप रहो, अब ऐसी बहकी बहकी बातें की तो बातें बंद हो जाएंगी हमारी, समझे भाई, यही है आज की इबारत। और इस इबारत में बहुत सारे गाने, बहुत सारे शब्द समाये हुए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने बाकायदा गानों को एक अच्छी तरीके से पहचान भी लिया है, लेकिन एक जो नहले पे दहला आया है उसे कार्यक्रम में सबसे पहले शामिल कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तरफ से एक इबारत लिखी है, क्या बात है बड़े छाए हुए आजकल, क्यों आपको पसंद नहीं है, हमें क्यों पसंद नहीं होगा, आखिर आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, वही तो हमारे लिए आप श्रोतागण ही सब कुछ हो, बस इसी बात ने तो हमारा दिल छीना है। विविध भारती से एक संवाद, एक कमाल है भाई, कमाल है, यानी नहले पे दहला मार दिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे श्रोताओं की बातें, एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि यादों की महफिल में बहुत ही बढ़िया गाने आपने सुनवाए, इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा कर देते हैं आपका। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता हैं, जरा देखें कि हमारे और श्रोता क्या कह रहे हैं। कुछ श्रोता हैं जिन्होंने बाकायदा पूरे गानों की लिस्ट प्रदान कर दी है और यहाँ भेजा है। इसके अलावा कई ऐसे श्रोता हैं जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि इतने दिन तो हम कहीं नहीं थे, विविध भारती के संग थे और ऐसे ही विविध भारती हमारे साथ चलती रही, गुनगुनाते रहे, दिल पर राज करते रहे, सुकून देते रहे। एक और श्रोता कहते हैं, शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं, हम विविध भारती सुनते रहे तो दिन खुशनुमा रहे। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अप्रत्याशित थीम है और बहुत ही मजेदार गाने सुनाई देने वाले हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि यादों की महफिल में गाने अच्छे सुनाई दिए थे। एक श्रोता ऐसे हैं जो बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप बालटाल में हैं और वहां से आगे रवाना हो रहे हैं। शुभकामनाएं आपको हम सबकी तरफ से। और वहां भी आप अगर विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो इसे कहते हैं सच्ची मोहब्बत। चलिए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का सिलसिला इस गाने के साथ। और आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या आम बोलचाल की भाषा में आप भी गानों का इस्तेमाल करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरह से करते हैं।

0: दुल्हन बदन चुराए।
1: योगेश का लिखा ये गाना मुकेश की आवाज सलील चौधरी की तर्ज आनंद फिल्म, और एक श्रोता ने ये कहा है कि ये गाना पूरी तरह से राजेश खन्ना के साथ जुड़ा हुआ। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आज जो पहला गाना आपने बजाया सुरीला सफर कार्यक्रम में, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, पतिदेव इस गाने को बहुत अच्छे से गाते थे, पहला गाना यही था जो उन्होंने मुझे गाकर सुनाया था। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि योगेश जी क्या बात है, बेहतरीन आगाज इस कार्यक्रम का हुआ है, और हम तो अपनी बातचीत में अक्सर ही फिल्मी गीतों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि हम भी बातें करते हैं तो गानों का और फिल्मी डायलॉग्स का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा करते हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो पूरे दिन कोई ना कोई गाना गाते रहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में भी गाने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आम बोलचाल की भाषा हमारे अस्तित्व का आईना है, व्याकरण की दृष्टि से भले शुद्ध ना हो। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बोलचाल की भाषा में गाने तो आजकल मुहावरे की भूमिका अदा करते हैं, जैसे अगर कोई देर से आया तो हम कहते हैं बड़ी देर भाई नंदलाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं हम अभी इसी गाने को सोच रहे थे और ये गाना प्रसारित हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम अभी से घोषित कर देते हैं कि आज का जो सबसे प्यारा गीत है वो यही है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज जो है प्रश्न पत्र का स्वरूप कुछ बदला हुआ लग रहा है, लेकिन ये बदलाव बहुत अच्छा है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की बातें शामिल करते हैं। देखिए कई श्रोता ये कहते हैं कि हमारे कमेंट्स शामिल नहीं होते, इतनी लंबी धारा कमेंट की है कि मैं एकदम नीचे स्क्रॉल करते हुए जाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे गानों के बोल हमारे कई श्रोताओं ने लिखे हैं, अब सभी श्रोताओं के लिखे गाने के बोल बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सभी के प्यार का शुक्रिया। इतना सारा टाइप करके आपने भेजा, आपने गानों को बिल्कुल ठीक पहचाना है। और एक श्रोता ये कह रहे हैं कि जैसे ही पेज खोलकर सुबह देखा उस वक्त मैं नाश्ता कर रहा था, इबारत पढ़कर चाय और नाश्ते का स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, और मुझे याद आया कि कैसे किशोर कुमार की याद के दिन आपने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

गया था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती बड़े काम की चीज है, कहीं दूर से गम आ जाए रेडियो से मेरा मन बहल जाए, या रेडियो बजाओ दुनिया वालों या मुझे अभी चुप रहने दो। क्या बात है, इन्होंने अपनी तरीके से इबारत लिख दी है। अब जो गाना रहा है वो आप सभी के दिल के बहुत ज्यादा करीब गाना है, और ये जो फिल्म है ये हम सभी को बहुत ही अपनी सी लगती है। कमल हासन और रति अग्निहोत्री एक दूजे के लिए, ये फिल्म आपने किस साल में कहां किसके साथ देखी थी, ये यादें हमारे साथ जरूर बांटिए। और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना आपको कौन सा लगता है? क्या आपके शहर में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं, या अभी तक आप गर्मी से जूझ रही हैं? शनिवार की दोपहर 1:12, क्या हाल आपके और आपके शहर के मौसम के?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि एक दूजे के लिए जब रिलीज हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, थिएटर में देखी होगी पर याद नहीं है, लेकिन बाद में टेलीविजन पर देखा। जैसे जैसे बड़े हुए इस फिल्म के गानों का जादू सिर चढ़कर बोला एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज़ से परिचित हुए और 16 बरस की बाली उम्र से खुद को कनेक्ट किया। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ये गाना दिल के बहुत करीब है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि मिर्जापुर शहर में जब से सावन का महीना लगा है दिन रात झमाझम बारिश हो रही है, इस समय थोड़े बादल और थोड़ी सी धूप है, खुशनुमा मौसम है हमारे शहर का। और इसके अलावा फिलीपींस के एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 3 दिन से बारिश हो रही है और रेड अलर्ट का सिग्नल आ चुका है। एक और श्रोता ने क्या सुंदर जुमला गाने में सुठाया है, दुनिया में प्यार की एक है बोली, सलाम आनंद बख्शी साहब, क्या बढ़िया लाइन लिखी है। इसके अलावा एक और श्रोता लखनऊ से लिख रही है कि सूर्य देव तीक्ष्ण ताप बरसा रहे हैं, भाई हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके शहर में भीषण वृष्टि हो और तीक्ष्ण ताप की जगह शीतलता आप पर हावी हो जाए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि दिल्ली में तो पानी पानी पानी हो गया है, भाई ये जो पानी पानी पानी है इससे मुझे ऐसा लगा जैसे आप गा रहे हैं गाना आज ब्लू है पानी पानी पानी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही है कि ये गीत मन की गहराई में बसा हुआ है, प्रेम के कितने रंग हैं और सादगी भरे बोल इस गाने का आभूषण हैं। एक श्रोता अपने पूरे परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी से और गाड़ी में सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, सभी लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, उनके परिवार के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें ये जानकर। बहुत सारी श्रोता हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई ये जो लिफ्ट वाला गाना है मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए ये बड़ा ही अच्छा लगा था। 1981 में कॉलेज से भागकर दोस्तों के संग पहला शो मैटिनी शो देखा था। अब ये जो कॉलेज से भागकर फिल्म देखने की बात है ना, बस मुझे लगता है कि इसी बात की डोर पकड़ के आगे चलते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉलेज से भागकर पिक्चर देखी थी, कॉलेज से भागकर कौन सी फिल्म देखी थी और क्या किसी को पता चल गया था? और हाँ, अब रेशमा की आवाज गूंज रही है, फिल्म का नाम हीरो, सुभाष घई की बेमिसाल फिल्म जिसमें आए थे जैकी दादा। ये फिल्म कहाँ, किस शहर में, कब, किसके साथ, चोरी से या शाम से देखी थी बताइएगा।

एक श्रोता है जिन्होंने बहुत ही मजेदार बात लिखी है। वो लिखते हैं कि भाई फिल्म हीरो हम लोगों ने कॉलेज से गोल मारकर देखी थी, अब साथ में कौन था ये बात प्लीज मत पूछिए वरना बहुत मार पड़ जाएगी। ठीक है भाई, ये मत बताइए कि साथ में कौन था, लेकिन कॉलेज से भागकर देखी है ये बड़ी मजेदार बात है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की यादें देखी हैं, साझा की हैं। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि दोस्तों के साथ खुदा गवाह देखने गई थी कॉलेज से भागकर, बहुत मजा आया था और हम पकड़े नहीं गए थे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि मिथुन दा की फिल्में तो नहीं देखी लेकिन कैसेट बहुत बजाया करते थे, ये एक बात इन्होंने लिखी है। उसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लंबी जदाई का की बड़ी तारीफ की है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि क्या गजब कर रहे हैं, सुरीले सफर कार्यक्रम में आपके सारे राज खुलवा देंगे, यहां मेरे बेटी बेटे दामाद बैठे हुए हैं। अच्छा हुआ कि आप नाम नहीं लेते, वरना ये जो कॉलेज बंक करके फिल्में देखने की लिस्ट तो लंबी है। अच्छा हुआ कि इस कार्यक्रम में नाम नहीं आता, वरना सबको पता चल जाता कि हमने क्या किया था अपने जमाने में। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि शहर में थोड़ी सी बारिश भी बहुत अधिक हो जाती है, हम किसानों से पूछो अभी तक धरती में पानी ठीक से अंदर पहुंचा नहीं है और हम मजबूर हैं भूमिगत जल को बाहर निकालने के लिए। आप शहर वाले थोड़ी सी बारिश हुई तो हाथ जोड़ लेते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश गिरी, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो चाहते हैं कि इतनी बारिश हो कि जो खेती है वो अच्छी तरीके से हो सके। एक और श्रोता लिखती हैं कि कभी कभी किसी गीत को हम केवल सुनते नहीं बल्कि वो हमारे भीतर घटित होता है। इस गीत को सुनकर लगता है कि हमारे भीतर एक अंतहीन बयाबान पसरा हुआ है, रेशमा की आवाज़ सबसे उदात्त पलों में ले जाकर छोड़ देती है। एक और श्रोता जो लिख रहे हैं कि मैंने मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में बहुत सारी फिल्में देखी हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने ये राज उजागर कर दिया है कि कॉलेज से भागकर उन्होंने रफू चक्कर देखी थी सहेलियों के साथ कॉलेज बंक करके। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि कॉलेज से भागकर अगर फिल्म देखते तो कहीं फिल्म देखने के काबिल न रहते उस जमाने में, क्योंकि पापा आर्मी में थे और आर्मी थिएटर में 365 फिल्में जरूर देखी सिकंदराबाद में। इसके अलावा एक और श्रोता जलंधर से हैं, वो कहते हैं कि जलंधर के लाल रतन सिनेमा हॉल में हमने फिल्म हीरो देखी थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई बारिश तो हुई है और अभी और भी होगी, कहीं बाढ़ कहीं सूखे के साथ, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका असर कहीं गर्मी और कहीं वर्षा ऋतु का प्यार। एक और श्रोता है जिन्हें जुबली टॉकीज याद आ रही है और वो कह रहे हैं कि एक दूजे के लिए उन्होंने

0: 1982 में जुबली टॉकीज में देखी थी। किस शहर का की बात है ये आप अंदाजा लगा सकते होंगे, मैं तो समझ गया हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने बड़ा प्यारा कमेंट लिया कि हमारे शहर में बादल ऐसे घूम रहे हैं जैसे शादी में मुंह फुलाए फूफा घूमते हैं, नजर तो सबको आते हैं मगर काम के नहीं होते हैं। भाई बहुत ही प्यारा कमेंट है। और अब एक ऐसे गाने की तरफ ले जा रहे हैं जो दिल के गुबार को उजागर करता है, जिसमें उदासी लिपटी हुई है। एक बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गाना है ये।
1: दीवानों से ये मत पूछो।
0: क्या आप बता सकते हैं इस गाने के गीतकार कौन हैं? इस फिल्म में कई गीतकारों ने गाने लिखे थे, पर ये गाना किसका?

बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिए हैं। कमर जलालाबादी ने ये गाना लिखा था, कुछ श्रोताओं ने गुलचन बावरा का नाम भी लिखा है, पर ज्यादातर श्रोताओं ने कमर जलालाबादी का नाम लिखा है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि जब आपने ये ऐलान किया था कि गीतमाला कार्यक्रम बंद हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन सुरीला सफर कार्यक्रम जब हमने सुना तो तब से बड़ा आनंद आ रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरी उम्र 38 बरस है पर मैंने सिर्फ दो ही फिल्में सिनेमाघर में देखी हैं, एक बजरंगी भाईजान और दूसरी सुई धागा। ओ हो, सिर्फ दो ही फिल्में। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलशन बावरा का नाम लिखा है जो कि गलत जवाब है। और इसके अलावा एक श्रोता लिख रहे हैं कि अब ये दौर कभी नहीं आएगा, पुराना माहौल कुछ और था जो कभी नहीं दोहराया जाएगा। जिन्होंने ये समय दिखा है उनसे भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। कमर जलालाबादी की बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। एक श्रोता है जिन्होंने कहा 11वीं कक्षा में कॉलेज से बंक मारकर सहेलियों के साथ कर्ज आंखियों के झरोखों से हम किसी से कम नहीं और ऐसी कितनी ही फिल्में टोपी वाला थिएटर में देखी हैं, गोरेगांव के टोपी वाला थिएटर में। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने लिखा कि दीवानों से मत पूछो गाने में एक टीस है, मुकेश की दर्द भरी आवाज रूह तक उतर जाती है। और फिर और भी कई श्रोता हैं। एक श्रोता ये कह रहे हैं कि विविध भारती पर सावन से जुड़े जितने कार्यक्रम हुए हैं उतनी बारिश हमारे यहाँ हो जाती तो मजा आ जाता। इसके अलावा एक और श्रोता है कहते हैं कि भाई बड़ी ही अजीब बात हुई, कल रात आप मेरे सपने में आए, मैं आपको बीमे की किस्त के रुपए दे रहा हूं। भाई ये तो बहुत ही अजीब सपना है आपका।

और इसके अलावा एक और श्रोता है कि जिस तरह से आप कमेंट पढ़ते हैं, आपका फनी अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कश्मीर में कहते कि मेरे आंखों के आगे कश्मीर, और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आंखों के आगे कश्मीर का नजारा है, और मैं अपने सफर पर आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। ये कितनी प्यारी बात है कि वो अपने सफर में भी विविध भारती को लगातार सुनते चले जा रहे हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, आज कार्यक्रम छूटता हुआ लग रहा था पर हमने छोड़ा नहीं है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लास्ट पीरियड कई बार बंक किया, प्रिंसिपल से डांट खाई और एक बार फिल्म देखी ठिकाना, और पापा से भी डांट खाई। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि भागकर तो नहीं पर दोस्तों के साथ एक बार गई थी, मम्मी को फिल्मों का बहुत शौक है, तो मम्मी और पड़े पड़ोस की चाची और बहनों और उनकी बेटियों, मतलब उन्होंने पूरी टोली का लिखा है कि इन सबके साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टी के बाद मैं और मेरे दोस्त अपनी साइकिलें कॉलेज में ही छोड़कर पास के सिनेमा हॉल में नूरी फिल्म देखने चले गए थे, बाद में प्रिंसिपल ने हमें बहुत डांटा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ट्रेन से सफर करके कॉलेज जाते थे, एक दिन ट्रेन काफी लेट पहुंची, बारिश भी बहुत थी, तब चिच्चोर फिल्म का बोर्ड एक जगह देखा था, मैं और मेरी सहेली फिल्म देखने चले गए, लेकिन अंदर जाकर देखा कि अपने पराए फिल्म लगी थी, हमने जो है वो पुराना पोस्टर देख लिया था। तो ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की हैं, और अब चूंकि माहौल उस तरह के गानों का है तो एक और गाना आ रहा है, और हेमंत कुमार की ये आवाज पूरी दिल में उतर जाएगी। हेमंत कुमार की आवाज के बारे में अपनी राय, अपनी बात कहिए।

हेमंत कुमार की आवाज में अनुपमा फिल्म का ये गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज बिल्कुल अलग है, वो अच्छे गायक ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे संगीतकार भी थे। एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि कभी ये गाना शायद ही कभी मुझे भावनाओं से आंसुओं तक लाने में नाकाम रहता होगा, जब भी सुनते हैं आंखें भर आती हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि इस गाने में धर्मेंद्र कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि हम स्कूल से भी सिनेमा घर ले जाए गए थे, बच्चों की फिल्म थी तो स्कूल ने हमें फिल्म दिखाने का फैसला किया था। इसके अलावा एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप कमेंट पढ़ने में सेंचुरी मार रहे हो भैया, शुक्रिया। एक और श्रोता है अनुपमा फिल्म का ये जो भावुक कर देने वाला गाना है, ये एक बात, और मेरे पिताजी का पसंदीदा गाना था, ये एक श्रोता की कमेंट है। हेमंत की, हेमंता की आवाज में जैसे विषाद का स्वर घुला है, ये भी एक श्रोता की बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता लिख रहे हैं कि कॉलेज से भागकर फिल्में देखना, ये तो मैं उस जमाने में सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि हायर एजुकेशन की पढ़ाई के लिए मुझे खुद बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाकर खर्चा निकालना होता था, इसलिए मैं अपनी क्लासेस कभी मिस नहीं करता था। बहुत ही सुंदर प्यारी बात आपने कही है भाई। आज यानी इस शनिवार 8 अगस्त के दिन हम बातें कर रहे हैं और पूरा एक हफ्ता 15 अगस्त को बचा है, तो चलिए बचपन की यादों की तरफ जाते हैं। स्कूल के दिनों में 15 अगस्त की तैयारियां आप किस तरह से करते थे, ये जरूर बताइएगा। कुछ लोग होंगे जो नाटक तैयार करते होंगे, कुछ लोग होंगे जो कविताएं और गाने तैयार करते होंगे। एक जमाना था स्कूलों में 15 अगस्त को जिस तरह से मनाया जाता था, स्वतंत्रता दिवस को मनाने का बचपन का जो उत्साह है वो बहुत ही कमाल का रहा करता था। तो हम चाहते हैं कि आप वो यादें हमारे साथ बांटें। ठीक है, एक हफ्ता बचाए 15 अगस्त के लिए और हम ये यादें बांट रहे हैं। तब तक चलते हैं त्रिशूल फिल्म के एक ऐसे गाने की तरफ जो बहस करता है कि मोहब्बत काम की चीज है या नहीं है। आप क्या कहते हैं, आपका मोहब्बत पर भरोसा है या नहीं है, या आप ये कहते हैं कि ये बेकार बेदाम की चीज है, या आप ये कहते हैं

एक श्रोता लिखते हैं कि मोहब्बत ईश्वर का खूबसूरत तोहफा है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, बस नीरसता रहेगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि मोहब्बत एक सुंदर एहसास है जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मोहब्बत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मेरी तो माही प्रिंसिपल थी, इसलिए 15 अगस्त से काफ़ी पहले गतिविधियां शुरू हो जाती थी, नाट्य गीत नृत्य कहानी सभी की प्रैक्टिस हुआ करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी ने मोहब्बत के बारे में इस गाने में अच्छा भी लिखा है और बुरा भी लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपको आना था और हमें बिल्कुल मिस नहीं करना था, बच्चे आ गए और हम थोड़ा बिजी हो गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो अमिताभ बच्चन के पक्ष में हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज नहीं मिलती तब तक वो बड़ी अनमोल होती है, मिल जाने पर वो बेमोल हो जाती है। बचपन के 15 अगस्त की तैयारियां क्या खूब हुआ करती थी, कई दिनों पहले से ही मन में तिरंगा लहराने लगता था, स्कूल की सफाई, रंग बिरंगे कागजों से सजावट, प्रभात फेरी की तैयारी और हाथ में थामे छोटे से झंडे का गर्व, बिल्कुल अलग तरह का उत्साह होता था। एक और श्रोता, बचपन में 15 अगस्त की बड़ी भोर को अगल बगल के घरों से फूल तोड़कर जमा करके स्कूल ले जाते थे ताकि तिरंगे में बांधे जा सके। राष्ट्रगान के पश्चात मैं वीर रस गाने में मूल गायन करता था, हेडमास्टर से शाबाशी मिलती थी। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो सवाल आपने पूछा है, बहुत उत्साह से तैयारी करते थे, आज भी याद है। अपना स्कूल ड्रेस शूज सभी को धोकर तैयार करके हैंगर पर टांग कर रख देते थे, कब सुबह हो और जल्दी से तैयार होकर जाएं। और बूंदी के जो लड्डू मिलते थे, यूं लगता था कि खजाना मिल गया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि 15 अगस्त को देशभक्ति गीत गायन प्रतियोगिता होती थी और हम बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक और श्रोता कह रही हैं कि सुबह से इस गाने को याद कर रही थी पर यह याद नहीं आ रहा था। एक और श्रोता का कहना है कि 15 अगस्त के दिन नृत्य की प्रैक्टिस किया करते थे और मोतीचूर के लड्डू आज भी उन्हें याद आते हैं। इसके अलावा साहिर लुधियानवी के बोलों की तारीफ हमारे कई श्रोताओं ने कही है और इस गाने में एक ऐसी तपिश है जो दिल को पिघला देती है। एक और श्रोता शिकायत करती हैं कि भाई हर रोज हमारे काम करने का जो वक्त है वो मुकर्रर होता है, लेकिन जिस दिन आप आते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में हमारा पूरा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है। भाई माफी चाहते हैं लेकिन सुरीला सफर में आना छोड़ नहीं सकते हम, आप अपना टाइम टेबल पूरी तरह से बिगाड़ कर रखिएगा और हम आते रहेंगे।

0: इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि हेमंत कुमार की आवाज़ गंभीरता और मिठास लिए हुए हैं, और 15 अगस्त की तैयारियों के बारे में तो बस श्रोताओं के कमेंट लगातार चले आ रहे हैं, और बहुत ही उमंग और उत्साह की बात। एक श्रोता है जिन्होंने बिल्कुल अलग तरह का कमेंट लिखा है, वो कहते हैं कि बारिश और ठंडी ठंडी सुबह होती थी तो 15 अगस्त के दिन नहाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी। क्या बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए ये क्या हुआ।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ,
0: क्या आप आम जिंदगी में इस गाने का इस्तेमाल करते हैं? किस तरह से, कब, जरा हमें बताइए।
1: ये

0: एक श्रोता कहते हैं कि मेरी लिस्ट का ये सातवां गाना भी बच गया है, यानी आज की इबारत में से उन्होंने बहुत सारा अंदाजा लगा रखा था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत बार जब सोचते कुछ और होता कुछ और है तो हम कहते हैं ये क्या हुआ। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब कोई चीज गुम जाती है तो मैं अक्सर गाता हूँ ये क्या हुआ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इस धरती के अनमोल रत्न से विभूषित किशोर कुमार, भाई किशोर कुमार की तारीफ करें। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि ये क्या हुआ गाना बज रहा है, बादल छाए बस बारिश होने वाली है। एक और श्रोता एनसीसी में थी और वो कह रही हैं कि जो खाने का पैकेट मिलता था वो बहुत ही शानदार होता था। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि भाई ये तो हमारा तकिया कलाम है, ये क्या हुआ जब तब हमारी जबान से ये निकल जाता है। और इसके अलावा कुछ और श्रोताएं 15 अगस्त की यादें, वो समूह गान सब कुछ याद आ गया है। और एक श्रोता हैं जो लिखती हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर हमारे स्कूल में परेड होती थी और हजरतगंज तक पैदल ही हम सब परेड में भाग लेते थे। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत यादें अपनी बांटी हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि एक दिन पहले ही सुबह 3 बजे नींद खुल जाती थी, ये कल बूंदी वाले लड्डू मिलेंगे। भाई हाईलाइट है ये, बूंदी वाले लड्डू जो हैं ये सबके लिए एकदम कॉमन बात है। कितनी सारी यादें श्रोताओं ने साझा की हैं। और अब देखिए क्या प्यारा गाना साहिर लुधियानवी का।
1: खुद पे
0: क्या आपको लगता है कि आज के जमाने में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, सहृदयता, संवेदना कम होती जा रही है?

एक श्रोता ये लिखती हैं कि कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, ये गाना जमाने की हकीकत को दर्शाता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज अगर संवेदना कम होती चली जा रही है तो उसकी एक वजह मोबाइल फोन है। और इसका एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि भाई सचमुच आज संवेदनाएं बहुत कम होती चली जा रही हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि सहानुभूति होती तो है पर आज के लोग उसे व्यक्त नहीं कर पाते, अपने आप में इतने गुम रहते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि आज का वक्त ऐसा है कि किसी को किसी के पास वक्त नहीं है। एक और श्रोता लिखते हैं कि संवेदनाओं में 100% की कमी आई है। तो बहुत सारे श्रोता ये मानते हैं कि आज संवेदनाओं में लगातार कमी आती चली गई है। एक और श्रोता है जिन्होंने 15 अगस्त की सुहानी याद के बारे में अपनी बात ये लिखी है कि मैं कक्षा छठी में थी और मुझे भाषण देने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना था, लेकिन उस दिन मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं तो रो पड़ी थी। वही देखिए, ये भी एक याद जो है वो उभर कर सामने आ गई। एक बहुत ही जज्बाती गाना अब आपके लिए, आपको बताना है कि हमने ये किस फिल्म से लिया है।

लता मंगेशकर की आवाज, बहु बेगम फिल्म का ये गाना। बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात पहचान ली है। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज किसी की खुशी या परेशानी में रील बनाना लोगों को ज्यादा पसंद आता है। और इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आज लगातार जज्बात की कमी होती चली जा रही है। आखिरी गाना ये रहा मदन मोहन और लता मंगेशकर के कॉम्बिनेशन के बारे में क्या ख्याल है आपका, ये बताइए।

भई आज के कार्यक्रम का वक्त यहीं खत्म हो रहा है। आप सभी ने इस कार्यक्रम में साथ निभाया और सवालों के जवाब दिए, कमेंट्स किए, गाने सुने, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहिए, विविध भारती के संग बने रहिए, क्योंकि विविध भारती देश की सुरीली धड़कन है। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।

0: त्रिवेणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 8 अगस्त की तारीख कैलेंडर की कोई आम तारीख लग सकती है, लेकिन भारत के इतिहास में ये तारीख सुनहरे अक्षरों से लिखी हुई है। भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था, क्रिप्स मिशन नाकाम हो चुका था, कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन जारी था जहां महात्मा गांधी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस तरह से भारत की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान आज भी भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति की याद दिलाता है। जन जन में रोष था, आक्रोश था और ऊर्जा थी, बुलंदी थी कि किसी भी तरह से अब देश को आजाद करना ही है। मुंबई से जो लहर शुरू हुई थी उसने धीरे धीरे पूरे देश को अपने आगोश में ले लिया। अब गांव गांव, शहर शहर बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर।

0: भारत छोड़ो आंदोलन का सिनेमा पर क्या असर पड़ा, इसकी एक मिसाल ये गाना है जो अभी आपने सुना। कवि प्रदीप ने जब ये गाना लिखा तो उन्हें अंग्रेज सरकार ने तलब किया और आरोप लगाया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी गाना है, पर उन्होंने बड़ी चतुराई से तर्क दिया कि ये गाना ब्रिटिश विरोधी नहीं बल्कि ब्रिटिश समर्थक गाना है। लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। टॉकीज़ों में फिल्म को रोक रोक कर नौजवान बार बार इस गाने को दिखाने का अनुरोध करते थे। ये गाना जनमानस पर छा गया था। पूरे देश में अंग्रेजों का बहिष्कार किया जा रहा था, चाहे पुरुष हों या महिलाएं, बच्चे हों या नौजवान या बुजुर्ग। भारत के कोने कोने से लोग सड़क पर निकल आए थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर बस ये तय कर लिया था कि अंग्रेजों को खदेड़ कर ही दम लेंगे। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन आजादी का आखिरी बड़ा आंदोलन बना, जिसने इस देश की बुनियाद रखी, जिसने इस देश को तरक्की के रास्ते पर लाया। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी बहुत ही मुश्किल से, त्याग से, बलिदान से और बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें हासिल हुई है। इस आजादी का मोल हर पीढ़ी को समझना होगा।
1: हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे

0: इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
1: कोई भी देश अपनी सीमाओं से नहीं बनता, अपनी ऐतिहासिक इमारतों से नहीं बनता, अपने इतिहास से भी नहीं बनता। देश बनता है जनमानस से, उसकी जनता से और उसकी जनता की चेतना से। अगर हम सचेत रहें, जागरूक रहें, देश के प्रति जिम्मेदार रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें, खासकर अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करते रहें, तो ये माना जाएगा कि हम अपने आजादी का मोल समझ रहे हैं, हम अपनी आजादी की कीमत चुका रहे हैं, हम देश के प्रति अपनी निष्ठा को ठीक तरीके से निभा रहे हैं। हम बहुत छोटे छोटे काम बहुत निष्ठा के साथ कर सकते हैं, जैसे हम ट्रैफिक नियमों का पालन करें, बिजली और पानी को व्यर्थ ना जाने दें, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। ऐसे बहुत छोटे छोटे काम हैं जो हम करें तो देश के लिए एक बड़ा योगदान हो सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन की याद के इस दिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि देश के प्रति जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है।

8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और आज त्रिवेणी में हमने आपको याद दिलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व क्या है और ये आजादी इतनी अनमोल क्यों है। तो अब इजाजत दीजिए, यूनुस खान को नमस्कार।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों के भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभाती है।
5: आप सब जानते हैं, हर पीढ़ी के सामने उस टाइम पीरियड की अपनी चुनौतियां होती है और हर पीढ़ी का अपना एक राष्ट्रीय दायित्व भी होता है। साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्रों के विकास से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी

0: क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: श्री मोदी ने सोशल मीडिया के युग में उत्पन्न होने वाले विकर्षणों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वेतन, नौकरी या कार्यक्षेत्र के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने से बचना चाहिए।
1: जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं तो एक बड़ा डिस्ट्रक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा।
0: इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने भारत के शिक्षा तंत्र को शिक्षार्थी केंद्रित, अनुसंधान आधारित और भविष्योन्मुखी बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के संस्थानों में नया आत्मविश्वास जगाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में परम प्रज्ञा नामक एक उच्च दक्षता की कम्प्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन भी किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य दिल्ली में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावशाली कानूनी ढांचा तैयार करना है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस विधेयक को मॉनसून सत्र के दौरान विचार और पारित करने के लिए दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा। झारखंड में आज JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के बीच विभिन्न समूहों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता का दूसरा दौर आज आयोजित किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार द्वारा गठित मंत्रियों की विशेष कमेटी और छात्र संगठनों के बीच दूसरे दौर की वार्ता सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई। सरकार की ओर से मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि वे व्यापक परीक्षा सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल ID भी जारी की है, जिस पर छात्र और सभी हितधारक अपने सुझाव भेज सकते हैं। सरकार इन सभी सुझावों के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अंतिम निर्णय लेगी। हालांकि छात्र प्रतिनिधियों ने वार्ता पर संतोष जताया है, लेकिन कहा है कि मांगों पर ठोस और लिखित आदेश आने तक उनका शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच कर रही CID ने भी अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आयोग के 3 वर्तमान सदस्यों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक आज से शुरू हुई। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इस बैठक में सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भोपाल में 5 अगस्त से चल रहे ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के तहत आज ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक हो रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हो रही इस बैठक में दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री भी शामिल हैं। बैठक में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की घोषणा, जिसे भोपाल डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाएगा, साथ ही सांची कल्चर कनेक्ट पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद मंत्री और प्रतिनिधि सांची के विश्व धरोहर स्थल का भ्रमण करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन शहरी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक, पारदर्शी

0: और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करके उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। सहकारी समितियों में अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन एक केंद्रीय शासी या सहायक निकाय होता है जिसका गठन कई स्वतंत्र सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। सहकारी क्षेत्र की शक्तियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निवेश को जोड़कर बड़े कारोबार के लिए बड़ी पूंजी जुटाई जा सकती है।
1: मेरा जो कोऑपरेटिव का समझ है, बड़ा व्यापार करने के लिए छोटे छोटे लोगों की कोऑपरेटिव बनाकर छोटी पूंजी से बहुत बड़ी पूंजी निर्मित कर बड़ा व्यापार किया जा सकता है। अमूल आज 1,25,000 करोड़ का व्यापार करता है। इप्को क्रिप्को एक जमाने में लिज्जत पापड़, ये किसी में भी पूंजी का निवेश 50 रुपया से ज्यादा नहीं है और आज अमूल विश्व का खाद्य पदार्थों का सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड बन व्यापार कर रहा है।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया भेजी गई है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दरभंगा में किसानों से सीधे खरीदी गई इस खेप से उन्हें बाजार मूल्य की तुलना में लगभग 18% से अधिक लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सहयोग से हासिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये लेख भारत के बढ़ते आत्मनिर्भर चिकित्सा प्रौद्योगिकी तंत्र को उजागर करता है जो घरेलू विनिर्माण, आयात पर कम निर्भरता और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी पहलों से आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और 11 घायल हो गए। ये दुर्घटना सुबह करीब 7:15 बजे हुई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस बैरागढ़ से चंबा जा रही थी। चलवांज मोड़ के पास चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नीचे दूसरी सड़क पर गिर गई। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति को देखते हुए आज जम्मू से बालतल की ओर श्री अमरनाथ जी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि बालतल से पवित्र गुफा की ओर यात्रा सामान्य रूप से जारी है। सुबह से 2,500 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को जम्मू की ओर जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग ने केरलम में मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए आज 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और शेष 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल के लिए 4 उत्तरी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आज लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस महीने की 10 तारीख तक तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में मौसम विभाग ने आज दिन भर बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। भानु प्रताप के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेलवे ने ओणम के अवसर पर केरलम के लिए विशेष ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 112 कर दी है। इन विशेष रेलगाड़ियों का मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आवागमन होगा। एक रिपोर्ट। रेलवे ने ओणम के दौरान यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच अब तक 112 विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। इनमें से 38 विशेष ट्रेन दक्षिण रेलवे के अंतर्गत चलाई जाएंगी। दक्षिण रेलवे ने अन्य रेलवे जोन के लिए भी

0: 16 अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा की है। इसके अलावा अन्य रेलवे जोन भी इस दौरान 58 विशेष ट्रेन चलाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। उधमपुर में महिलाओं का एक समूह हर घर तिरंगा अभियान के तहत हाथ से राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगे से जुड़ी सजावटी वस्तुएं तैयार कर रहा है। हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से 17 अगस्त तक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में 3 लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व

0: रात में रूस द्वारा किए गए मिसाइल हमले में एक बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई। क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमूर तकाचेंको ने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों में तीन लोग घायल भी हुए हैं। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत को पहला पदक मिला। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय आशीष ने 74.09 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण अफ्रीका के जॉन हैंड्रिक हैंसमैन ने स्वर्ण पदक जीता। अश्मिता चालिहा दक्षिण कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने आज सेमीफाइनल में हमवतन रक्षिता रामराज को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जम्मू से बालतल की ओर अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। एसएच बिहारी के बोल ओपी।

0: खुद से सुनी है, नहीं उदास नहीं बस ये।
1: गुलजार के बोल हेमंत कुमार की तर्ज उन्हीं की आवाज, सन्नाटा फिल्म का ये गाना था। इससे पहले सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज थी, एसएच बिहारी के बोल ओपी नैयर की तर्ज थी। एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी अनगिनत।

0: आ रही हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर। बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे आप सुन रहे हैं सदाबहार।

मेरे साया फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में था। राजा मेहंदी अली खां की बोल थी, मदन मोहन की तर्ज थी।

0: फिल्म का नाम था दुल्हन एक रात की। ये गाना अभी आपने सुना और ये आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश थी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। परेशान हूं मैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70%

0: महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर
2: सेहतनामा।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी आप सभी को नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मन चाहे गीत कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम का आगाज हो रहा है मिस्टर नटवरलाल फिल्म के गाने से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें और फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी, पलोमा और डॉक्टर ईशानी। और ये चिट्ठी लखी श्रीवास्तव, दिशा, दिव्यांश और रूही की है, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा ये खत है चेतन शामतकर और ज्योति शामतकर और पुरुषोत्तम शामतकर का, उल्हासनगर से। और इसी गाने की फरमाइश करने वाले ये श्रोता हैं गुजरात भावनगर से राहुल ओझा, दीपल और ये नाम कुछ प्राप्तक ओझा जैसा कुछ नाम लिखा हुआ है। और ये कर्नाटक से चिट्ठी है चिन्ना तिरुपति से श्यामला, प्रकाश, अश्विनी, रमेश, आनंद और मनवित की। आप सभी सुनिए ये गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार।

कार्यक्रम का अगला गीत जमाने को दिखाना है फिल्म से है और इस गाने को शैलेंद्र सिंह ने गाया है। आपको बता दें कि मजरू सुल्तानपुरी का लिखा यह गीत आरडी बर्मन ने कंपोज किया और चिट्ठी लिखी घड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाथे श्री कृष्ण

बाठे संदीप, अमूल्य और वैशाली बाठे ने इसी गाने के लिए राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज का खत है, और ये चिट्ठी है रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीताबा सिसोदिया, धर्मराज, करणराज और पूरे सिसोदिया परिवार की केदारनाथ सोसाइटी से। वामन मगरे मराठवाड़ा नांदेड़ से इन्होंने चिट्ठी लिखी है, और वारंगा फाटा जिला हिंगोली से कुंडलीक मोरे, पांडुरंग मोरे, अश्विनी मोरे और वैष्णवी मोरे ने चिट्ठी लिखी है। और दिलचस्प ये है कि केदारनाथ सोसाइटी वाले हमारे श्रोताओं ने अपना नाम नहीं लिखा, वो नाम अपने शहर का नाम लिखना भूल गए। आपके लिए ये गाना

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और अब जो गाना आ रहा है उसके लिए आप सभी के खत मिले हैं। अल्लिया नगर केंड गांव से भाऊ साहेब नवथर अक्षय चंदन जयकुमार चंदन रुचिता चंदन और इनका परिवार। ये चिट्ठी है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक कुमार श्याम कुमार प्रमिला चीनू आसमा दीपक अनुश्री और पूरे श्याम कुंवर परिवार की और बहुत ही रंग बिरंगी चिट्ठी राजेश वाघमारे प्रिया वाघमारे रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे की जूना तारफेल अकोला महाराष्ट्र से फैसल इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल नफीसा और ये पूरा परिवार हयात कॉलोनी अररिया बिहार से इस गाने को सुनना चाहता है। उदयपुर से फरमाइश आई है अशरफ खान जब्बार मोहम्मद तजीब खान मंजू और निम्मी की। आप सभी की फरमाइश पर सौतन फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें गीत सावन कुमार संगीत उषा खन्ना।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और मनचाही गीत कार्यक्रम में देश भर से हमारे श्रोता लिखते हैं चिट्ठियां और इंतजार करते हैं अपनी चिट्ठियां शामिल होने का और अपने गानों का। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता, ग्राम खकल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंश राज गुर्जर और इनका पूरा परिवार, रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और बाबू भाई महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर के श्रोता हैं, और गणेश पेट पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या श्लोक और भैया, और ये श्रोता हैं सिंधी कैंप पक्की खोली अकोला महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा संतानी, नैन्सी संतानी और सुमित संतानी, ये सभी सुनना चाहते हैं जावेद अख्तर का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत है, फिल्म है मशाल।

और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बहू बेगम फिल्म का गीत साहिर लुधियानवी की बोल रोशन की तर्ज और आप सभी की फरमाइश है चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी जाजोरिया गगनदीप जाजोरिया और बीबी आरजू जाजोरिया वरुण जऊलका से महेंद्र सरकटे विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे निखिल साखरकर रोहित सुनीता अरविंद साखरकर और पूरा परिवार मालेगांव जिला वाशी से और कबीर रेडियो श्रोत्रा संग बालोद छत्तीसगढ़ से डॉली बेबी पूजा तमूरिया राधिका प्रभा देवी अजय देव देव शंकर तुषार देव तमूरिया और इनका पूरा परिवार। ये गाना आप सभी की फरमाइश पर, फिल्म का नाम है बहू बेगम, आशा भोसले और मोहम्मद रफी।

0: नाट्य तरंग में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग। मूल गुजराती लेखक मधु राय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी। तो सुनिए नाटक किसी एक फूल का नाम लो का पहला भाग।
1: केशव, ओफो, केशव कहाँ चला गया? केशव, केशव, ओ तीसरी घंटी हो गई, ओ केशव से कहोगे अनाउंस करे। हाँ है ये लेकर कि तुम, केशव ठाकर,
2: प्लीज, अभी आया
1: पाटिल, ओ अभी आया पाटिल जी, जाके अनाउंस क्यों नहीं कर रहे?
2: जहाँ जहाँ, जहाँ,
1: केशव, कहाँ जा रहे हो? आप माइक्रोफोन तो ये रहा,
2: सॉरी, सॉरी माइक्रोफोन, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन नमस्कार देवियों और सज्जन। हाँ तो नाट्य मंच अपने नए नाटक के प्रथम प्रदर्शन के अवसर पर आप सबका सहर्ष स्वागत करता है और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है हास्य प्रधान नाटक किसी एक फूल का नाम लो। सज्जनों सज्जनों शांत, इसके लेखक हैं केशव ठाकर और निर्देशक जगन्नाथ पाठक। सज्जनों सज्जनों सुनिए सुनिए, कलाकारों का भूमिकाओं सहित परिचय इस प्रकार है। कांता कामनी देसाई, प्रमोद प्रमोद जगन्नाथ पाठक, भाभी स्वाति सोनी। सज्जनों शान और सुनिए, नंदलाल प्रीतम सोनी, निरंजन सुंदर देसाई और देश पांडे केशव ठाकर। हाँ सज्जनों तो अब प्रस्तुत है नाट्य मंच का ये नाटक किसी एक फूल का नाम लो।

0: कांता, मान लो कि
1: प्रमोद, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी,
0: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है। ओह, कितनी देर हो गई।
1: दफ्तर जा रहे हो प्रमोद? जाओ।

0: फोन करके बता दे, निरंजन को मैं बता दूंगी। अच्छा, रात को जरूर आइएगा। बाय।
1: कहो मेरी जान।
0: ओह, तुम आ गए निरंजन। आज रात को फैसला हो जाएगा। मैंने नंदलाल भाई और भाभी को बुलाया है।
1: सच मेरी कांता?
0: आओ, सब आ जाओ। आज मेरी अर्थी उठ रही है, रोने वालों की जरूरत होगी। नंदलाल भाई आओ, ज्योत्सना भाभी आओ, निरंजन तुम भी आओ।
2: आखिर हुआ क्या कांता?
3: अरे नंदलाल, मैं बताती हूँ। असल में कांता और निरंजन।
4: नहीं नहीं नहीं, ये बात झूठ है। हम प्रेमी नहीं है।
2: प्रमोद, तुम ये क्या टाइप कर रहे हो?
5: आज जहाँ दंगा होने वाला है नंदलाल भाई, उसी को खत्म करने के लिए मैंने अपना ये घोषणा पत्र तैयार किया है। तो सुनो, आई प्रमोद पटेल, हस्बैंड ऑफ माय मोस्ट बिलवड वाइफ कांता पटेल, मैडम नेम कांता गोस्वामी, डू हियर बाय डिक्लेयर।
3: प्रमोद भाई सुनिए ना, मैं तुरंत अनुवाद कर सकती हूँ। लाइए अपना कागज, मुझे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ।
5: ठीक है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
3: अच्छा, तो प्रमोद भाई कहते हैं, मैं प्रमोद पटेल, कांता पटेल का स्वामी, घोषणा करता हूँ कि मेरी किसी समय प्यारी पत्नी कांता मेरे विश्वास पात्र दोस्त निरंजन को चाहती है। इसलिए आज फला साल के फला महीने की फला तारीख को अपनी मर्जी से, अपनी अक्ल से मैंने अपनी जान देने की घोषणा की है।
5: मुझसे सुनो मेरी घोषणा। मैं प्रमोद पटेल अपनी सारी ताकत जुटाकर कांता के छिपाए हुए पिस्तौल से आत्महत्या करता हूँ। अलविदा। अलविदा।
0: मुझे विश्वास हो गया है कि।
5: कैसा विश्वास?
0: कि तुम मुझे प्यार करते हो।
5: फिर भी मैं अपनी घोषणा पर अटल हूँ।
0: प्रमोद, रुक जाओ।
5: नो।
0: इस पिस्तौल से मैं ही मरूंगी। लाओ पिस्तौल मुझे दो।
5: कांता, ये पिस्तौल मुझे दो।
4: तुम्हारा संसार उजड़ने के पहले मैं ही इस पिस्तौल से।
0: खबरदार निरंजन, तुम मेरे जीवन में तो आए, पर अब मेरे और मेरे पति के बीच में मत आना, वरना अभी इस पिस्तौल से।
4: ठीक है, पहले मुझे मार डालो, मेरी दुखी आत्मा को शांति दो। कांता, कांता मुझे गोली मार दो, वरना मैं तुम्हारे हाथ से पिस्तौल लेकर आत्महत्या कर लूंगा।
0: सर, तुम मुझे इतना प्यार करते हो निरंजन।
5: कांता, कांता तुम मुझे ही मार डालो, मुझे ही मार डालो, या पिस्तौल मुझे दो, मैं अपने आप ही मर जाऊंगा। तुम दोनों प्रेमी जियो और खुश रहो।
2: सुनो प्रमोद, तुम्हारी पत्नी यदि दूसरे को चाहती है तो इसमें मरने की कोई जरूरत नहीं। मुझसे शादी करने से पहले मेरी इस पत्नी ज्योत्सना को किसी दूसरे से प्यार था।
3: हैं? नंदलाल, इस रहस्य का तुम्हें पता था?
2: तुम्हारा प्रेमी देश पांडे थोड़े दिन हुए वो मेरे पास आया था पैसों के लिए।
5: कैसे पैसे?
2: ब्लैकमेल के पैसे।
3: लेकिन ब्लैकमेल किस लिए?
2: उसके पास तुम्हारी कुछ तस्वीरें हैं।
3: हैं?
5: कितने रुपए मांगता है वो?
2: सौदा आज पक्का होगा, वो आता ही होगा यहाँ।
5: यहाँ?
2: हाँ, मैंने देश पांडे को यही का पता दिया है। और अब प्रमोद, कांता और निरंजन तीनों से मेरी प्रार्थना है, देश पांडे यही आ रहा है, तुम में से जो भी मरना चाहता है वो उसे मारने के बाद मरे, तो मैं उसका एहसान मानूंगा।
4: प्रमोद, तुम्हारा इरादा मुझे मारने का हो तो रुक जाओ, मैं देश पांडे का खून करूंगा और इस तरह फांसी पर लटक कर तुम्हारी और नंदलाल की दुनिया आबाद कर जाऊंगा।
5: शायद देश पांडे आ गया, मैं दरवाजा खोलता
0: हूं। नहीं, तुम यही रुको प्रमोद, तुम्हारा शायद भागने का इरादा है, दरवाजा मैं ही खोलूंगी।
3: कांता, अपना पिस्तौल मुझे देती जाओ, उस चांडाल का मैं खून करूंगी।
5: ये मेरा घर, मैं ही उसका खून करूंगा। तुम्हें करना हो तो उसे अपने घर ले जाओ। लो, वो आ गया।
6: आप सबको नमस्कार, माफ कीजिए, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन।
2: गुड इवनिंग मिस्टर देश पांडे।

हेलो, कौन? नंदलाल भाई? हाँ, मैं कांता बोल रही हूँ। सुनिए, प्रमोद आज फिर झगड़ा करके दफ्तर चला गया है। हाँ, आज रात अगर आप हमारे यहाँ आ सकें ज्योत्सना भाभी को लेकर तो ठीक रहेगा।

0: ये सब मेरे मित्र हैं। ज्योत्सना, तुम तो इन्हें मिस्टर देशपांडे को जानती हो।
1: हाँ हाँ।
0: और प्रमोद, कांता, निरंजन, ये हैं मिस्टर देशपांडे, जिनका खून कौन करे इस बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे। हैं? सब लोग एक पंक्ति में क्यों बैठ गए?
2: आखिर बात क्या है नंदलाल?
0: तुम्हें नहीं, मैं इस थिएटर हॉल में बैठे हुए दर्शकों को सब बताता हूं। देवियों और सज्जनों, अभी थोड़ी देर पहले प्रमोद, कांता और निरंजन एक दूसरे के लिए आत्महत्या करना चाहते थे, एक दूसरे से अपना खून कराने के लिए जोर दे रहे थे। और अब सवाल है मिस्टर देश पांडे के खून का। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि ये रहस्य नाटक है। इस नाटक के सभी पात्र यहां मौजूद हैं। आप विद्वानों में से कोई भी ये बता दे कि किसका खून होगा और कौन खून करेगा, तो उसकी अक्ल की मैं दाद दूंगा। आपको बस इतना बता दूं कि खून इनमें से ही किसी एक का होने वाला है और इनमें से ही कोई करेगा भी।
1: नंदलाल, मेरे हाथ में ये पिस्तौल देख रहे हो ना? मैं तुम्हारी तिकड़मों से तंग आ चुकी हूँ। अरे, हम सबको कठपुतली की तरह नचाने वाले, मैं तुम्हारा खून करती हूँ।
0: अरे ज्योत्सना, ये क्या कर रही हो?
1: भाभी,
0: ये पिस्तौल असल है,
1: मेरे
0: पास
1: रहने दो। भाभी, ये पिस्तौल मुझे दो।
3: क्या कर रही हो तुम?
4: हट जाओ भाभी। शेखर खोखला, शेखर खोखला।
5: सच कहूंगा, पूरा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।
6: आपका नाम? उम्र? काम?
5: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, उम्र 33 साल, काम नाटकों में अभिनय करना।
6: सरकारी वकील अब दवा से गिरा कर सकते हैं।
7: थैंक यू मिलॉर्ड। मिस्टर पाठक, आप मुलजिमा कामिनी देसाई को जानते हैं?
5: जी हाँ, हमने कई नाटकों में एक साथ अभिनय किया है।
7: कुछ और?
5: मतलब?
7: कामिनी देसाई आपकी प्रेमिका है?
5: जी जी हाँ, कामिनी देसाई मेरी प्रेमिका है।
7: जगन्नाथ महाशंकर पाठक, क्या ये भी सही है कि आप दोनों अगले महीने की 15 तारीख को शादी करने वाले थे?
5: जी जी हाँ।
7: 15 को ही क्यों?
5: वो हम लोग एक नया नाटक तैयार कर रहे थे और उम्मीद थी कि नाटक सफल होगा और उसकी आमदनी में से हम हनीमून के लिए कुछ पैसे बचा सकेंगे।
7: ये नाटक कब हुआ?
5: पिछले महीने की 1 तारीख को।
7: नाटक का नाम क्या था?
5: किसी एक फूल का नाम लो।
7: उस नाटक में आप दोनों के अलावा और किन किन लोगों ने काम किया था?
5: प्रीतम सोनी, स्वाति सोनी, सुंदर देसाई और
8: केशव ठाकर का नाम लेते लेते रुक क्यों गए? उसके नाम को लेकर उस दिन कामनी से तुम्हारी जो बातचीत हुई थी वो क्या भूल गए हो?
1: हम दोनों, प्रीतम, स्वाति और सुंदर, ये तो नाटक के पात्र पक्के हो गए, लेकिन छठे पात्र के

0: कोई नहीं मिल रहा।
1: छठे पात्र के लिए सुनो, छठे पात्र के लिए केशव ठाकर।
0: केशव ठाकर वो लेखक।
1: इसमें इसमें हंसने की क्या बात है, छोटा सा रोल है, बहुत मजा आएगा। हा?
0: सुंदर से पूछ ले।
1: आता ही होगा सुंदर भी। जी, मेरा नाम सुंदर देसाई, उम्र 30 साल, काम नाटकों में अभिनय करना, मुलजमा कामनी देसाई, उसको मैं जन्म से जानता हूँ सर। हम सब नाटकों में काम करते हैं, किसी एक फूल का नाम लो नाटक में हम सब ने काम किया था। कामनी देसाई मेरी सगी बहन है सर, सगी बहन।
2: आप दोनों साथ रहते हैं?
1: जी हाँ, मैं, कामनी और मेरी माँ तीनों साथ रहते हैं।
2: तीनों साथ रहते हैं। कामिनी ने जिसका खून किया उसके बारे में आप क्या जानते हैं?
1: जी नहीं, उसके बारे में मैं पहले कुछ नहीं जानता था। उसके मरने के बाद जाना कि उसका नाम शेखर खोसला था और वो किसी बड़ी फर्म का मालिक था।
2: उस नाटक में हत्या की घटना थी और उसमें पिस्तौल की जरूरत थी, ठीक है?
1: जी हाँ, लेकिन पिस्तौल में गोली नकली भरनी थी।
2: जगन्नाथ पाठक और कामनी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं?
1: जी हाँ, पाठक मेरा पुराना दोस्त है, हमने बहुत से नाटकों में एक साथ काम किया है। कामनी और पाठक ज्यादातर नायक नायिका का काम करते थे और जाहिर है।
3: सच सच कह दूं ना कि तुम्हें अपनी बहन कामनी और पाठक की शादी की बात पसंद नहीं थी?
1: जाहिर है, तुम दोनों में प्यार है और तुम शादी करोगे।
0: सुंदर, पाठक का कहना है कि मेरा इससे शादी करना तुम्हें पसंद ना होगा।
1: बिल्कुल पसंद नहीं होगा।
4: सुन लिया कामनी?
1: अरे वो तुम्हारा प्रीतम लाल नहीं आया?
2: तुम उसे प्रीतम लाल क्यों कहते हो?
4: अरे लगता है प्रीतम सोनी आ रहा है।
0: लेकिन वो तो अकेला ही आ रहा है।
2: प्रीतम, स्वाति सोनी कहाँ है?
5: आती होगी, वो सीधी आने वाली थी।
1: अरे स्वाति जरूर आई ही ना।
2: सुंदर,
1: अरे पाठक यार डांटते क्यों हो? मान लिया तुम इस नाटक के डायरेक्टर हो, लेकिन
2: रिहर्सल में अनुशासन जरूरी है। आई वॉन्ट डिसिप्लिन, आई सी।
1: अरे यार, मैं स्वाति से शादी का प्रस्ताव नहीं करने वाला हूँ।
6: जी, मेरा नाम प्रीतम लाल, कंचनलाल सोनी, उम्र 42 साल, काम अभिनय। जी, कामनी को मैं 7-8 साल से जानता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं मरने वाला कौन था। मेरा ख्याल है कामनी पाठक के प्यार में।
2: आपने ये कैसे मान लिया?
6: कामनी ने मुझसे कहा था कि पाठक उससे शादी नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी।
2: अच्छा, पिस्तौल चलाने की बात नाटक में लिखी हुई है क्या?
6: जी हाँ, नाटक में नंदलाल ये कहता है कि।
2: मिस्टर प्रीतम, अच्छा ये बतलाइए कि पिस्तौल में असली गोली कैसे आई?
6: जी जी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कामनी भोली होने के कारण कई बार उत्तेजित होती, पर किसी को उससे बैर हो या उसे किसी से बैर हो ये नहीं माना जा सकता।
2: आपकी पत्नी स्वाति सोनी और।
6: जी
7: मैं स्वाति सोनी हूँ, पति का नाम प्रीतम सोनी, उम्र 37 साल, व्यवसाय गृहिणी का, और कभी कभी अपने पति प्रीतम के साथ नाटक में काम करने का। कामनी मेरी पक्की सहेली है, लगता है किसी ने उसे फंसाया है। मैं तो मान भी नहीं सकती कि उसने ऐसा किया होगा, इसमें जरूर कोई धोखा है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती।
2: रोने की जरूरत नहीं, सवालों के जवाब सिर्फ हाँ या ना में दीजिए। क्या ये सच है कि कामिनी और पाठक के बीच प्यार था?
7: जी हाँ।
2: कामिनी को किसी और से भी प्यार था?
7: जी हाँ।
2: हाँ
7: जी,
2: या ना?
7: जी, इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूंगी।
2: क्या मतलब?
7: कामिनी एक सफल अभिनेत्री है, उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, वो एक भावुक स्त्री है और स्त्री का हृदय।
2: बस बस, ठीक से सोचकर जवाब दीजिए। आप बता सकती हैं पाठक और कामनी की शादी करने पर क्या किसी को एतराज था? पाठक की कामनी के सिवाय कोई दूसरी प्रेमिका थी या नहीं, और कामनी का पाठक के सिवाय कोई दूसरा प्रेमी था या नहीं?
7: मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ।
2: याद रखिए, आपने हल्क उठाया है।
7: हाँ, जानती हूँ।

0: मैंने हल्फ उठाया है, पर मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकती।
1: एक सवाल, आप मृत शेखर खोसला के बारे में कुछ जानती हैं?
0: जी नहीं, मैं शेखर खोसला या किसी के बारे में कुछ नहीं जानती।
1: आप कुछ छिपा रहे हैं।
0: आप क्या कहना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे, मुझसे क्या कबूल करवाना चाहते हैं आप?
2: कामी जी भाई, सुंदर के साथ तुम्हारा जो संबंध है वो कबूल कर लो ना। अपने पति प्रीतम से छिप छिप कर उससे मिलती हो और कहती हो कि
3: सुंदर तुम बेकार इतनी कड़वाहट लाते हो, हमें कभी मुश्किल से तो ऐसा ही कौन मिलता है।
4: ये तुम सोचती हो प्रीतम को पता नहीं चलेगा?
3: प्रीतम बहुत सीधा है, उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं पूछा।
2: लेकिन कोई और जानता है।
4: कोई और जानता है? कौन?
2: केशव ठाकर
4: वो बुद्धू लेखक।
3: हाँ, वो बुद्धू लेखक,
2: वो मूर्ख बना फिरता है, शायद है भी, लेकिन उसकी नजर बड़ी तेज है।
5: मेरा नाम केशव ठाकर नहीं, मेरा मतलब है केशव लाल पुरुषोत्तम ठाकर, पेशा नाट्य लेखन।
1: तो आपने उस नाटक में देशपांडे का पाठ किया?
5: जी हाँ, मैंने देशपांडे का पाठ किया।
1: आप किस नाटक मंडली के लोगों से जान पहचान कैसे हुई?
5: वो बात यह है कि वो सुंदर देसाई है ना, उसके साथ एक बार अचानक मुलाकात हो गई थी। जी हाँ, वही मुझे अपनी मंडली में ले गया।
1: अच्छा, वो नाटक किसी एक फूल का नाम लो आपने लिखा था?
5: जी हाँ, मैंने लिखा था।
1: उसमें पिस्तौल की जरूरत थी?
5: जी हाँ।
1: आप कामिनी देसाई के बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो इस खून के मसले पर रोशनी डाल सके?
5: वकील साहब, अजी आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा।
1: कामिनी देसाई का पाठक के सिवा कोई दूसरा प्रेमी भी था?
5: जी,
1: मैं पूछ रहा हूँ, कामिनी का कोई दूसरा प्रेमी भी था?
5: जी हाँ, उसका एक दूसरा प्रेमी भी था।
4: तो अब ये भी बता दो कि कैसे तुमने कामनी के ही कारण नाटक लिखा, कैसे कामनी के निकट रहने के लिए तुमने उस नाटक में छोटा सा पार्ट करना स्वीकार किया, और कैसे नाटक के रिहर्सल में तुम हर तरह का अपमान सह लेते थे, और उस दिन रिहर्सल में कामनी को सम्मुख पाकर तुम इतने नर्वस हुए कि सिगरेट का जलता हुआ सिरा मुंह में डाल दिया और मुंह चला लिया।
0: कुछ नहीं।
6: तुम कामनी को दीवानों की तरह ठिकुर रहे?
5: कुछ नहीं, वो जरा
7: आंशस हो गया।
1: अच्छा, ठीक है,
8: ये पाठक भी आज कुछ
1: बस आप रिहर्सल चूर करें। कामनी, तुम ठाकर के पास जाकर क्यों खड़ी हो गई? उसके कंधे पर हाथ रखकर क्या कह रही हो? उससे
0: कह रही हूँ आप पाठक क्यों बेकार ईर्ष्या करते हो?
1: स्टॉप इट,
0: रिहर्सल शुरू करो ना। तुम प्रमोद का डायलॉग बोलो तो मैं कांता का डायलॉग बोलूं।
1: कांता, मान लो
0: मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रमोद, तुम अपनी सीट छोड़ोगे नहीं और मैं सारी जिंदगी।
1: मुझे भी तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, और हमारे बीच पति पत्नी की सारी बातें मुझे लगता है इसी के साथ खत्म होती है।
5: जी हाँ, कामनी का दूसरा प्रेमी था, और वो मैं खुद था, यानी केशवलाल पुरुषोत्तम ठाकर।
1: कामिनी भी आपसे प्रेम करती थी?
5: जी नहीं, वो तो मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन मैं मनी मन उससे प्रेम करता था और अब भी करता हूँ। कामनी जी जमीन पर चले उसे मैं चूमने को तैयार हूँ, और जो वो कहे।
1: मतलब आप मन ही मन कामिनी से प्रेम करते थे?
5: जी हाँ, और उसके सामने मैं नर्वस आ जाता, यानी कि घबरा जाता।
1: अच्छा, मरने वाले के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?
5: जी, उसका नाम शेखर खोसला था।
1: सवाल ये है कि शेखर खोसला के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी है?
5: आज देखिए ना वकील साहब।

0: दुनिया में कौन किसी को जान सका है?
1: हाँ या ना में जवाब दीजिए।
0: किस बात का जवाब?
1: शेखर खोसला को आप उसकी मौत से पहले जानते थे?
0: अजी इंसान को देखिए ना, दो तरह से जाना जाता है, एक उसे प्यार करके और दूसरे उससे नफरत करके। भाई हमारी जानकारी हमारी समझ से बनती है। अजी मैं तो न तो शेखर खोसला से प्यार करता था न नफरत।
1: बेकार की बात मत कीजिए। अगर सीधा जवाब न दिया तो अदालत के अपमान के जुर्म में सजा होगी और झूठा जवाब दिया तो जेल।
0: अब देखिए वकील साहब, आप तो खामखा डरवा रहे हैं। अजी क्या सच क्या झूठ इसका फैसला कर सकूं? जी इतना विद्वान तो मैं नहीं।
1: आप शेखर खोसला को जानते थे?
0: जी,
1: हाँ या ना?
0: जी जी कुछ नहीं याद नहीं।
1: याद कीजिए, आपने उसे 1000 रुपए दिए थे, ये सच है?
0: जी क्या बात करते हैं वकील साहब। जी बहुत लोगों ने मुझे कई बार 1000 रुपए दे दिए होंगे। अब देखिए ना, अब उस सब का हिसाब तो मुझे याद नहीं।
1: ठीक, दूसरा सवाल, नाटक में जिस पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ और जिससे खून हुआ उसमें असली गोली किसने भरी थी, आप बता सकते हैं?
0: जी नहीं।
1: शेखर खोसला के बारे में आप क्या जानते हैं?
0: कुछ नहीं।
1: ठीक से याद कीजिए।
0: जी वो जी मेरी याददाश्त कुछ अच्छी नहीं।
1: ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला से आपने 1000 रुपए लिए और ये नाटक लिखा जिसमें शेखर खोसला का खून हुआ। ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था? मिस्टर केशव ठाकर चुप क्यों है, बताइए शेखर खोसला कौन था?
2: छिपा क्यों रहे हो? बता दो ना। अच्छा तो तुम कामनी और पाठक की वो बात बता दो जो उस दिन तुमने ओट में छिपकर सुनी थी। किस दिन? मैं तो प्रायः रोज ही छिपकर कामनी को देखा करता था। अरे उस दिन रिहर्सल के बाद जब तुम कामनी से मिले थे और फिर ओट में छिप गए थे।
3: कामनी, रिहर्सल के बाद केशव ठाकर तुमसे क्या कह रहा था?
4: कुछ भी तो नहीं। कुछ भी तो नहीं, बेचारा सिर्फ बॉडम है, मेरी तारीफ कर रहा था।
3: सच बताओ कामनी।
4: पाठक कितने शक्की हो तुम। तुम सोचते हो मैं उस फंटूश को प्यार करती हूँ।
3: नहीं, लेकिन ये जरूर सोचता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो।
4: मान लो छिपा रही हूँ, फिर
3: तो फिर हमारे संबंध का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, सीधी सादी बात।
4: धमकी देते हो?
3: सफाई चाहता हूँ।
4: कैसी सफाई? ओह, इतना भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, शक्की अंधे फूंधे पथिक की तरह पूछे जा रहे हो। फिर भी मैं तुम्हारी कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी झूठी कसम खा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।
3: यानी कि तुम कुछ छिपा रही हो?
4: हाँ, मैं कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकती। विश्वास कर सको तो करो कि जो कुछ मैं छिपा रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, धोखा देने के इरादे से नहीं।
3: यह चरित्र की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों नहीं कि तुम जो छिपा रही हो वो चाहे जितना भी डरावना क्यों ना हो मैं उसे छेड़ लूंगा? ऐसा क्यों समझते हो कि मैं तुम्हारा प्रेमी नहीं रहूंगा?
1: मिस्टर केशव ठाकर, क्या सोच रहे हैं बताइए? ठीक से याद कीजिए, शेखर खोसला कौन था?
0: जी जी वो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा वकील साहब। मेरा मतलब है शेखर खोसला के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
5: सरदारी वकील अपनी जिरह बंद करें, अब अदालत खुद पांचों गवाहों से सवाल करेगी। केशव ठाकर
0: जी,
5: शेखर खोसला कौन था?
0: जी जी कहा ना हुजूर, उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
5: स्वाति सोनी, शेखर खोसला कौन था?
4: जी जी कैसे समझाऊं आपको, मैं कैसे समझाऊं एक स्त्री के दिल की बात, मैं कैसे कहूं शेखर खोसला कौन था? मैं शेखर खोसला को जानती हूँ या कि शेखर खोसला को नहीं।

0: सकते ना।
1: प्रीतम सोनी, शेखर खोसला कौन था?
2: जी जी जी नहीं, मैं शेखर खोसला को नहीं जानता। इसके बारे में मुझे मुझे कुछ पता नहीं।
1: सुंदर देसाई, आपकी बहन कामनी जिसका खून किया, उसके बारे में आप कुछ जानते हैं?
2: जी जी, वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बात ये थी सर कि थिएटर हॉल में औरों की तरह वो भी निमंत्रित था, और निमंत्रण पत्र उसी संस्था ने भेजे थे जिसने हमें नाटक खेलने के लिए बुलाया था। मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
1: जगन्नाथ पाठक, शेखर खोसला के बारे में क्या आप जानते हैं?
2: जी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
3: किसी एक फूल का नाम लो, इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल गुजराती लेखक मधुराय, हिंदी रूपांतरण ज्योति व्यास, संपादन चिरंजीत, निर्देशक सुशील बनर्जी, प्रस्तुति आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की थी। इस नाटक का दूसरा भाग आप सुनेंगे कल नाट्य तरंग में।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है।
2: झलक दिखला जा, एक बार जा, जा, जा, जा।
1: उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
3: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, सत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का पहला भाग।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, आज स्वागत कर रहे हैं हम सभी उनका जिनके इशारों पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे थिरके हैं। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सनी देओल, महेश बाबू, आयुष्मान खुराना, अनुपम खेर और लगभग 30 से अधिक दिग्गज अभिनेताओं को अपनी कोरियोग्राफी से नया अंदाज देने वाली। वहीं माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, जूही चावला, अमीषा पटेल, अंतरा माली और अनेक प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के यादगार गीतों को अपनी कल्पना और सृजनशीलता से जीवंत बनाने वाली बड़ी प्यारी सी कोरियोग्राफर। आज की बातचीत केवल फिल्मों तक नहीं, आज हम जानेंगे एक कलाकार के संघर्ष की कहानी, सफलता के पीछे छिपी मेहनत, शूटिंग के अनसुने किस्से और सितारों के साथ काम करने का अनुभव और उस सफर को जिसने इन्हें भारतीय फिल्म जगत के अग्रणी कोरियोग्राफरों में स्थापित किया है। चलिए बिना किसी देर के विविध भारती राष्ट्रीय सेवा में पूरे आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ हिंदी फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध, सम्मानित और बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
5: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
4: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
5: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो ये जो कोरियोग्राफी है या डांस का चस्का जिसे कहते हैं, ये लगा कब, ऐसा कब मन हुआ कि अब मुझे कर लेना चाहिए?
5: सो बेसिकली चस्का तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि जिस उम्र में मैंने काम शुरू किया उसमें हमें चस्के नहीं पता चलते हैं। अच्छा। बहुत छोटी थी मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीख रही थी।
4: ओके।
5: तो हुआ यूं कि

0: घर की जरूरतें होती है ना, तो उस उम्र से ही मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे एहसास, मोहब्बत, प्यार, तरबियत, इसकी बहुत वैल्यू है। तो वो वैल्यू में एहसास हुआ कि घर में जरूरत है। तो एक्टिंग इंस्टीट्यूट होती थी एक, मधुमति एकेडमी,
1: जी
0: मधुमति जी वो है जो हेलन जैसी लगती थी, सोलो डांस करती
1: जी
0: थी,
1: जी जी बिल्कुल
0: उनके हस्बैंड और वो सिखाते थे। वहां पे एक छोटा सा काम कर रही थी मैं उस उम्र में,
1: क्या उम्र होगी वो लगभग?
0: सेवेंथ स्टैंडर्ड में होंगी। तो मेरी
1: 12-13
0: बहन और
1: साल
0: मैं, हम दोनों घर में बहुत डांस करते थे।
1: जी
0: बिल्डिंग में 31st नाइट में जब प्रोग्राम्स होते थे तो हम
1: जी
0: दोनों को बुलाते थे कि
1: अच्छा
0: आप
1: डांस
0: कंपटीशन में आ जाओ।
1: करने जी
0: तो मेरी छोटी बहन बहुत ज्यादा चंचल थी और वो हमेशा से चाइल्ड आर्टिस्ट स्टेज पे काम करती थी।
1: जी
0: मैं पढ़ रही थी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू थी। तो
1: अच्छा
0: जरूरत तब हुई जब लगा कि फीस भरना है, छोटे भाई बहन हैं, हम 5 भाई बहन हैं, तो लगा कि चलो कुछ काम भी किया जाए। ट्यूशन देती थी, फिर लगा कि अच्छा डांस अच्छा करते। तो मधुमति मैम ने देखा और मम्मी से कहा कि आप छोड़ो अपनी बेटियों को, मैं उनको सिखाती हूँ।
1: अच्छा
0: और
1: एक
0: वहां
1: हाथ
0: पे
1: मिल
0: मैं,
1: गया
0: हाँ, एक हाथ मिल गया। और वहां पे मैं उर्दू डिक्शन सिखाने लगी अंकल के साथ बैठ के। उनके जो शौहर थे वो
1: अच्छा
0: पुराने एक्टर थे बहुत बड़े, तो वो उर्दू सिखाते थे सारे बच्चों को।
1: जी
0: तो मैं उनके साथ डिक्शन, क्योंकि हमारे घर में एक चलन है कि
1: हाँ
0: उर्दू सिखाया जाता है, तो वो मैं सिखा रही थी उनके साथ। एक्टिंग भी सिखाने लगी वो हमें। अम्मी को बुला के एक दिन बोला कि तुम्हारी बेटियां बहुत टैलेंटेड है,
1: अच्छा
0: तो मैं इनको एक्टिंग भी सिखा रही हूँ। अम्मी ने कहा कि ठीक है मैम,
1: सिखा
0: अपने
1: लो
0: साथ रख के
1: जी
0: आप देखिए कैसे। तो स्कूल के बाद हम 2-3 घंटे वहां जाते थे, और पता नहीं था कि वो चीज कब जाके जिंदगी में काम आ जाएगी। अम्मी हमेशा सिखाती थी कि बेटा जिंदगी का एक फ्लो होता है, जो ऊपर वाले की मर्जी है वो फ्लो चलता है, फ्लो के साथ चलो।
1: जी
0: और एक, हमारी तरबियत को नहीं भूलना है,
1: क्या बात
0: अपनी
1: है,
0: तरबियत जो मैंने तुम्हें दी है उसको हाथ में रख के आपने काम करना है।
1: मतलब नदी जैसे बह रही है बहते जाओ, लेकिन अपने जो उसूल हैं उनको छोड़ना नहीं
0: बिल्कुल
1: है। जी बहुत
0: बिल्कुल,
1: बढ़िया बात
0: बहुत ज्यादा ऊपर जाके छलकना भी नहीं है कि पानी तुम्हारा सूखी घास में मिलके वहां चला जाए,
1: जी
0: समेटते हुए आगे बढ़ना है। उनकी तरबियत है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। वहां से फिर एक्टिंग इंस्टीट्यूट से स्टेज शोज के ऑफर आने लगे। तो गणेश हेगड़े जी
1: जी
0: जो बहुत
1: बहुत
0: बड़े
1: बढ़िया
0: कोरियोग्राफर है,
1: कोरियोग्राफर
0: उन्होंने
1: हैं।
0: मुझे और मेरी बहन को लॉलीपॉप, गणेश हेगड़े, ये उस वक्त के दिग्गज स्टेज
1: बिल्कुल
0: के कोरियोग्राफर्स हैं।
1: जी
0: तो पता चला कि एक शो किया जाएगा तो हमें इतना अमाउंट मिलेगा। तो
1: हाँ,
0: अम्मी मेरी
1: तो
0: हमेशा साथ होती थी।
1: अमाउंट के लालच में आप काम
0: अमाउंट ये
1: सीख
0: था, हाँ, कि एक इतना अमाउंट आएगा तो दिमाग सोचने लगा कि
1: गए,
0: अगर ये पैसा आता है तो महीना गुजर जाएगा। तो मधुमति
1: कैलकुलेशन
0: मैम ने,
1: से आगे
0: हाँ, मधुमति
1: गए।
0: मैम ने बोला बेटा करो, बुरा नहीं है। अम्मी को बोला कि आप साथ रहो बच्चों के।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वो एक सिलसिला शुरू हुआ वहां से। और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी,
1: तो आप उस
0: मुझे,
1: समय बैकग्राउंड डांसर्स के फॉर्म में
0: नहीं
1: कर रही
0: बिल्कुल
1: थी
0: नहीं
1: या लीड डांसर्स थे?
0: नहीं मैं स्टेज पे डांस कर रही थी उनके ट्रुप के साथ। तो
1: अच्छा
0: उनके अपने अपने ट्रुप होते थे, तो
1: जी
0: पहले गणेश हेगड़े, लॉलीपॉप, इन्हीं का ट्रुप चलता था।
1: जी
0: उनके एक ट्रुप में 8 लड़कियां 12 लड़कियां ऐसे होती है।
1: ठीक
0: उसमें मेरे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे जल्दी चांस मिल गया। पोनी वर्मा उनकी मेन असिस्टेंट होती थी जो अभी कोरियोग्राफर है।
1: जी
0: तो पोनी वर्मा ने, यू नो, शी गॉट इन्वॉल्व एंड शी गॉट मी। तो स्टेज शुरू हुआ, स्टेज से वो रास्ता मिलने लगा। गणेश आचार्य जी ने देखा मुझे डांस करते हुए कि लड़की तो एक्सप्रेशन के साथ, क्योंकि एक्टिंग बैकग्राउंड से आती थी मैं, तो ग्रेस और क्लासिकल डांस सीखो तो आपको एक ग्रेस अलग लेवल का मिलता है।
1: वो चीज हम अभी भी देख रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, जब आप डांसेस डालती हैं तो
0: हाँ,
1: चेहरा अलग
0: तो
1: दिखता है
0: क्योंकि आप
1: चमकता हुआ।
0: क्लासिकल डांस सीख के आते हो, जैसे क्लासिकल सिंगिंग भी उतनी ही, जो क्लासिकल सिंगिंग सीख के आते हैं वो एक अलग लेवल के सिंगर बनते हैं,
1: जी
0: उसी तरह आप जब क्लासिकल डांस सीख कर आते हो तो आपके परफॉर्मेंस की लेवल अलग हो जाती है। और फिर मैं एक्टिंग बैकग्राउंड से आती हूँ
1: जी
0: तो एक्टर मेरे अंदर घुसा हुआ है
1: घुसा
0: बचपन
1: हुआ
0: से।
1: है जी
0: तो वो जो एक एबिलिटी है मेरी एक्टिंग और क्लासिकल डांस की, उसने मुझे बहुत सहारा दिया। तो जब गणेश आचार्य जी, जो बहुत बड़े कोरियोग्राफर है, उन्होंने मुझे देखा परफॉर्म करते हैं, उस वक्त वो एक असिस्टेंट ढूंढ रहे थे, तो
1: जी
0: मैं कभी बैकग्राउंड डांसर फिल्मों में नहीं बनी। मैं स्टेज से डायरेक्ट गणेश आचार्य जी के यहाँ पर आई। उन्होंने
1: अरे
0: अम्मी
1: वाह
0: से बात की, उन्होंने कहा आपकी बेटी डांस बहुत अच्छा करती, मुझे एक ऐसी ही असिस्टेंट की जरूरत है, क्योंकि अब उनका काम बढ़ रहा था
1: तो उन्हें
0: काफी
1: एक
0: उस
1: और
0: वक्त।
1: हाथ चाहिए था जी।
0: तो फिर उस तरह से, माई मदर यूज टू बी देयर विथ मी ऑलवेज, शी नेवर लेफ्ट मी अलोन टू टेक डिसीजन, क्योंकि मैं थी बहुत छोटी। तब तक मैं यहाँ पहुंची 8-9 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी,
1: बहुत छोटे थे
0: स्टिल
1: आप,
0: स्कूल में थी।
1: बहुत
0: तो वो,
1: छोटे थे।
0: मम्मी ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, असिस्टेंट बनी उनकी, उनके साथ 3-4 साल काम किया। बड़ी यहीं पर हुई हूँ, समझते समझते, सीखते सीखते। फिर प्रभु देवा जी के साथ काम करने का
1: क्या
0: मौका
1: बात है,
0: मिला। फिर एक, मैं सरोज जी की बहुत बड़ी फैन थी,
1: बिल्कुल
0: मैं काम, बहुत बड़ी
1: सब
0: फैन,
1: है
0: मतलब मैं,
1: मास्टर जी के फैन सब है
0: सब है। जब
1: जी।
0: मैं असिस्टेंट थी, उनके गाने देख देख कर, उनकी जो लचक, उनका

0: ये उनका वो कहते हैं ना कि एक आप होते हो एक लव्य, काम यहाँ किया लेकिन मैं उनकी एक लव्य बन गई।
1: क्या बात
0: आज भी जब कोरियोग्राफी करने खड़ी होती हूँ इंडियन डांस, और ऐसा लगता है मेरे अंदर सरोजी समा गई, अपने आप ऐसा लगता है वो मेरे अंदर समा गए।
1: जी,
0: तो वो एक उनके साथ मेरा एक इनडायरेक्ट एक लव्य वाला एक रिलेशन शुरू हो गया। उन्हें दूर से देख देख कर निहार निहार के मैंने अपने काम को संवारा।
1: आपने अपने आप को इतना सारा संवार लिया है, तो जिसने इतना संवारा है यानी शबीना जी, तो शबीना जी को गाने तो बहुत पसंद होंगे, है ना?
0: बहुत ज्यादा
1: तो कोई एक गाना जो आपका हो या आपका नहीं भी हो लेकिन आपको बहुत पसंद हो, जो आपके दिल को सुकून देता हो, ऐसा लगे कि बस अब यही सुनना
0: मैं पुराने गानों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत बड़ी
1: है तो
0: फैन
1: हमारे
0: हूँ।
1: विविध भारती के श्रोता आपको बहुत प्यार करेंगे
0: आप जैसे देखो मैंने कल इंस्टाग्राम पे डाला, आजा पिया तो हे प्यार दू,
1: क्या
0: गोरी
1: खूबसूरत
0: बैया तो
1: गीत
0: पे
1: है।
0: वार
1: जी
0: दू।
1: जी जी जी
0: एक
1: गाइड
0: तो जो
1: फिल्म का ये गाना
0: अल्फाज
1: जी।
0: जो लिखाई होती थी उस वक्त की लिरिक्स लता जी जब गाती थी, तो कौन है जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा, आप मुझे बताइए।
1: जी
0: तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ पुराने गानों की। आज भी जब मुझे अगर गाड़ी में कोई गाने सुनने हैं तो मैं पुराने गाने सुनती हूँ जो
1: तो
0: मुझे
1: फिर उनमें से
0: सुकून
1: कोई
0: देते
1: एक
0: हैं।
1: हीरा जो आप बता दें तो हम हमारे श्रोताओं को सुनवा दें
0: एक तो पहले सुनाइए आजा पिया तो हे प्यार दो, गोरी बैया तो पे वार दो,
1: चलिए
0: उसके बाद
1: जी,
0: हाँ
1: उसके
0: ये
1: बाद की
0: गाना, उसके
1: भी
0: बाद लग जा गले
1: अच्छा
0: के फिर ये हंसी रात हो ना हो।
1: बड़ी बढ़िया सी फरमाइश है आपकी, पर
0: बहुत
1: हम
0: ज्यादा
1: आपके तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवा देते हैं ये प्यारा सा गाना जो है, आजा पिया तो है प्यार दूं, गाइड
0: प्लीज
1: फिल्म का गाना है,
0: प्लीज
1: सुनते हैं ये गीत।
0: प्लीज सुनाइए।

0: तो शबीना जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। गाना आपकी पसंद का हमने सुनवा दिया, लग जा गले ड्यू रहा, थोड़ी देर बाद हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचाएंगे।
1: अब मुझे ये पूछना है कि कोरियोग्राफ तो आपने किया है, छोटी सी शबीना जो है वो बड़ी हो रही हैं, 9वीं 10वीं की उम्र में आ गई हैं। मुझे नहीं लगता कि उस समय की बेटियों में इतनी समझदारी होती थी, मतलब कई चीजें तो हम जानते ही नहीं थे, और कई सारे लोग बोले बरन बरन के लोग मिलते थे, अलग अलग तरीके के लोग आपको मिला करते होंगे, आपकी माँ आपके साथ रहती थी तो आप मैनेज कर पा रही थी। पहला गाना कौन सा था जो एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर आपने कोरियोग्राफ किया था और आपको ऐसा लगा था हाय ये मैंने कर दिया?
2: सी, जब हम असिस्टेंट होते हैं तो हम कोरियोग्राफी नहीं करते, उस वक्त की बात है। आजकल अलग माहौल है
0: जी।
2: जब मैं असिस्टेंट थी तो मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है
0: जी।

0: तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा,
1: जी
0: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है,
1: जी
0: उस लेवल पे करना है, वहां पे असिस्टेंट कोरियोग्राफर की ड्यूटी सामने
1: शुरू हो
0: आती है,
1: जाती है जी।
0: शुरू हो जाती है। कई मास्टर होते हैं जो खुद डांस नहीं करते, जो खड़े रह के आपको दर्शाते हैं और आपको करके दिखाना है। मेरे जो मास्टर थे गणेश आचार्य जी, वो खुद बहुत अच्छे
1: ही इज
0: डांसर,
1: अ वेरी गुड डांसर।
0: वेरी
1: यस
0: ग्रेसफुल।
1: यस
0: उनका ग्रेस उनके मास्टर से आता है, जो कमल मास्टर जी थे।
1: जी
0: और
1: वो भी
0: कमल
1: बहुत
0: मास्टर जी
1: अच्छे।
0: बहुत कमाल, उन्होंने एक ट्रेंड, जिसे कहते हैं कि हमें ये मालूम है भगवान दादा का डांस होता था,
1: जी
0: भोली सूरत दिल के, जो वो हाथ का
1: वो
0: स्टेप
1: सब
0: था,
1: कमल जी का
0: वो
1: दिया हुआ
0: कमल
1: है। जी
0: जी
1: जी
0: उसमें माहिर थे। उनके असिस्टेंट है गणेश आचार्य जी,
1: जी
0: उनके असिस्टेंट हूँ मैं।
1: बड़ी अच्छी परिपाटी से चली आ रही
0: बिल्कुल,
1: है।
0: वो अपने मास्टर की कहानियां हमें सुनाते थे
1: हाँ
0: कि कमल मास्टर जी खड़े खड़े भी अगर पूरा गाना कर ले तो आपकी नजर नहीं हटेगी। और वही मास्टर जी करते थे, गणेश मास्टर जी, वही मैंने उनसे सीखा कि ग्रेस जान जाए बट ग्रेस ना जाए।
1: क्या डायलॉग
0: हाँ, मेरे लिए
1: है।
0: वो बहुत जरूरी है कि बिना ग्रेस के तो मैं बात भी नहीं कर सकती।
1: जी
0: तो ग्रेस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम गणेश आचार्य जी, जो उनके अंदर कूट कूट के
1: जी
0: भरा हुआ है। तो उनकी असिस्टेंट जब आप बनती हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है
1: बिल्कुल।
0: कि आपका मास्टर सेट पे एक हीरो होता है, हीरोइन होती है। तो आप किसी जेंट्स मास्टर की जब असिस्टेंट होती हो, तो आपकी जिम्मेदारी दुगना हो जाती है, क्योंकि आप फीमेल, आपको ही देख रही है। जो हीरोइन है वो आपको देखकर, वो सुन तो रही है मेरा मास्टर ये बोल रहा है, बट आपको देख रही है। तो
1: आगे के
0: इसलिए
1: एक्सप्रेशंस उसको आपसे मिलेंगे,
0: बिल्कुल
1: फीमेल वाले
0: अदायगी
1: एक्सप्रेशंस
0: मुझसे
1: आप ही
0: मिलेगी।
1: लोगी।
0: डुएट सॉन्ग
1: बिल्कुल
0: है, जैसे मैं बहुत फेमस गाना अगर गणेश मास्टर जी का बताऊं,
1: हाँ
0: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज, मैं असिस्टेंट थी
1: जी
0: मास्टर जी के साथ, मैं कर रही हूँ, गोविंदा और करिश्मा को दिखा रहे, तो करिश्मा मुझे देख रही है। तो
1: हाँ
0: मेरे अंदर मुझे वो कला लानी है जो मेरे मास्टर के अंदर बचपन से है। बस वही दिमाग हमारा होता था उस वक्त, घोड़े का चश्मा लगा के अपने मास्टर को कॉपी करना
1: जी
0: और करके दिखाना।
1: जी
0: तो वहां पे हमारे, आप जितने फेमस गाने उठा लो 90s के,
1: जी
0: जुड़वा के गाने, सारे सलमान खान के गाने, सारे गोविंदा के गाने, सारे सनी देओल के गाने, संजय दत्त के गाने, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शिरोडकर, ये जितनी, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सारे गाने, उनकी सारी फिल्में उठाओ, गणेश मास्टर ने की है।
1: और गणेश
0: और
1: मास्टर जी के साथ खड़ी थी शबीना खान।
0: शबीना खान, तो अब जब मैं कोरियोग्राफी करने निकली तो लोग बोलते, अरे रानी आपकी तरह डांस कर रही थी, कभी कभी तो करिश्मा आपकी तरह कर रही थी। तो ये
1: मैं ही
0: जो
1: सिखा रही थी
0: मैं
1: उस
0: ही,
1: समय।
0: हाँ उसी वक्त, क्योंकि वो लोग भी बहुत, उस वक्त के स्टार्स भी वैसे ही थे, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आपको सुनते थे, आपको करते। तो वो वाला एक एरा से हम आते हैं,
1: तो
0: यू नो।
1: फिर उन गानों में से कोई एक गाना जो आपको बहुत पसंद हो, हालांकि काश कि हम रेडियो पे वो डांस दिखा सकते हैं। अभी हम रेडियो पे वो डांस तो नहीं दिखा सकते आपका, पर हम चाहते हैं कि वो कोई एक गीत जो उस समय का, उस इरा का, जो आपने किया हो और आपको बहुत मजा आया हो कि यार असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बाद भी बड़ा मजेदार कर दिया
0: मैं
1: मैंने
0: मजेदार
1: असिस्टेंट
0: बताऊं थोड़े
1: कोरियोग्राफर।
0: से, लोग जो आज भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, पीपल से दैट हमें शबीना दिखती है उसमें,
1: जी
0: वो है रानी मुखर्जी का एक गाना था, कुड़ी कवारी तेरे पीछे
1: क्या
0: पीछे
1: बढ़िया
0: पीछे
1: गाना
0: पीछे।
1: है।
0: उसमें मैं असिस्टेंट थी, और जितने लोग मुझे अब देखते हैं,
1: जी
0: जिन्होंने देखा है, बोलते यार रानी लगता है शबीना तुम कर रही हो, बिकॉज वो सांझेदारी होती
1: नहीं, आपका चेहरा भी काफी मिलता है और आवाज भी बहुत मिलती है रानी जी से
0: थी। उस वक्त
1: तो।
0: काफी लोग रानी और मुझे कहते भी थे, और वी वर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स हाउ आप एक दूसरे को पसंद करके एक अच्छा गाना डिलीवर करते हो।
1: जी
0: तो वो गाना अगर आप देखोगे या आप प्ले कर पाओ,
1: बिल्कुल, ये
0: आपकी
1: गाना
0: मर्जी
1: हम
0: है।
1: जरूर हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत सा गीत है और शायद जसपिंदर नरूला जी
0: हाँ
1: ने
0: जी,
1: गाया हुआ
0: हाँ
1: ये
0: जी,
1: गाना है और बड़ा खूबसूरत, वो बुलंद आवाज के साथ, उस
0: बिल्कुल
1: बुलंदी के साथ जो किया गया है तो बेहतरीन है। तो ये गीत जरूर हम हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसमें रानी मुखर्जी दिख रही हैं, लेकिन रानी मुखर्जी को दिखाने के लिए शबीना खान पूरा डांस दिखा रही हैं, और जो रानी मुखर्जी है उस डांस को कर रही हैं। तो आपकी ये बेहतरीन असिस्टेंट कोरियोग्राफी डायरेक्शन, खूबसूरत सा गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी तरफ से।
0: ठीक है।

0: प्रॉब्लम।
1: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
0: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
1: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
0: रियली?

0: ये गीत तो बड़ा प्यारा है। हम तो स्टूडियो में बैठे हैं कुर्सी पे, तो हम नाच नहीं सकते, लेकिन जरूर से इस गीत पे मुझे विश्वास है कि हमारे सारे श्रोता जो हैं वो डांस कर रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। रानी मुखर्जी की बात आई तो आपका चेहरा बहुत ज्यादा रानी मुखर्जी से मिलता है, और आपसे बात होते होते आपने मुझे ये बात कही भी थी कि एक गाने में बहुत सारी जगह रानी को पैर में चोट लगी थी। वो किस्सा अगर आप खुद बता दें तो बड़ा अच्छा लगेगा।
1: सो ऐसे इंसिडेंट तो 2-3 बार हुए हैं।
0: जी
1: जैसे एक गाना मैं बताऊं अगर आपको, जिसमें टाइटल सॉन्ग है, जिसमें ऐसे दिखाना है कि मैं डांस कर रही हूं
0: हाँ
1: और अरबाज खान को
0: हाँ
1: रानी मुखर्जी का कैरेक्टर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो दिखाई देती है,
0: अच्छा
1: तो सलमान भाई ने कहा कि हु बेटर देन शबीना।
0: हाँ
1: सो बहुत कम लोगों को मालूम है, अभी आपके माध्यम से जितने लोग सुन रहे वो वापस जाके YouTube पे देखेंगे तब समझ आएगा, लेकिन लोगों को देखकर भी समझ नहीं आया था। आज भी बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है कि दो लड़कियां थी
0: ऐसा
1: वहां पे।
0: मुझे भी समझ नहीं आया था उस
1: हाँ आप
0: गाने में।
1: देखिए,
0: जी
1: गाना शुरू मुझसे होता है, सेम कपड़े सेम हेयर स्टाइल एवरीथिंग सेम, मैं डांस करना शुरू करती हूँ, हेलो ब्रदर दैट सॉन्ग, ब्रदर हेलो ब्रदर
0: उसमें दोनों जगह पे आप हैं,
1: मैं
0: बट
1: हूँ, और फिर वो चेंज होता है अरबाज खान के पॉइंट ऑफ व्यू से, रानी आती है,
0: ओ
1: तो वो जब हम कहते हैं तब पता चलता है कि अच्छा वो लड़की दूसरी थी क्या। बहुत लोगों को लगता था, इवन ऑन द सेट रानी मुखर्जी का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो घूम के मेरे पास आके मेरा मेकअप कर रहे हैं, तो दादा मैं हूँ शबीना रानी। तो हमारी हाइट पर्सनालिटी बाल काफी कुछ मिलता था उस वक्त।
0: जी
1: और फिर एक गाना था काली नागिन की जैसी जुल्फे
0: ब्यूटीफुल
1: तेरी काली
0: सॉन्ग।
1: काली,
0: यस
1: मैं असिस्टेंट थी और उसमें काफी वाइड शॉर्ट्स और मिड वाइड में हमें गाना जल्दी खत्म करना था, शायद पता नहीं रानी को भी ये बात पता है कि नहीं, तो वो आने से पहले काफी शॉर्ट्स मेरे साथ और आमिर जी
0: हो
1: के
0: गए
1: साथ
0: थे।
1: हो जाते थे,
0: अच्छा
1: तो वो एक गाना था। उसके बाद में चांदी की डाल पर सोने
0: वो
1: का
0: मटकी
1: मोह,
0: फोड़ने वाला गाना।
1: मटकी फोड़ने वाला गाना,
0: जी
1: वहां पे भी मैं असिस्टेंट थी और काफी वक्त ऐसे वाइड शॉट, तो काफी ऐसी फिल्में थी जहाँ पे लगे अच्छा जल्दी करना है, सनलाइट को संभालना है, तो आजा शबीना तू कर ले,
0: जी
1: तो आई यूज टू डू इट।
0: मतलब मजे मजे में जिंदगी में बड़े सारे काम कर लिए,
1: हाँ
0: मतलब जरूरत पड़ी तो हम खुद ही मेकअप करके उतर गए और डांस करके आ
1: बिल्कुल
0: गए।
1: बिल्कुल, यही अदायगी होती है।
0: जी। अभी आप असिस्टेंट कोरियोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर आप काम करते जा रही हैं, तो इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया होगा उस समय।
1: बहुत सारे
0: जी, उसके बाद आपने अपना खुद का जो पड़ाव है, या बोलना चाहिए मेरा कदम, वो कब लिया और कैसे लिया?
1: सो असिस्टेंट पीरियड की एक बात जो मैं जरूर मेंशन करना
0: जी
1: चाहूंगी ताकि जो आपके सुनने वाले हैं लड़कियां
0: जी
1: है वो समझे इस बात को, कि मेरी अम्मी ने एक शर्त रखी थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी तुमने,
0: पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जी बहुत
1: तो
0: बढ़िया
1: मेरे
0: बात है।
1: असिस्टेंट पीरियड में मैं पढ़ाई भी कर रही थी, 10th कंप्लीट की,
0: हाँ
1: कॉलेज जाना शुरू किया,
0: ओके
1: काम भी कर रही हूँ, कॉलेज भी जा रही हूँ और घर भी संभाल रही हूँ, अपने बहन भाइयों की
0: आप
1: पढ़ाई भी।
0: कॉलेज में क्या विषय पढ़ रहे थे उस समय?
1: मैंने 2 साल साइंस लिया था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी।
0: आप कोरियोग्राफी के साथ
1: हाँ तो क्योंकि मैं
0: मेडिकल
1: कोरियोग्राफर
0: की पढ़ाई
1: कभी
0: कर रहे थे।
1: बनना नहीं चाह रही थी, मैंने
0: जी
1: काम शुरू ही एक सोच के किया था, अम्मी और मेरी ये सोच थी कि हमने अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करना है और मैंने डॉक्टर बनना है,
0: जी
1: क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, 100% मार्क्स स्कोर करती थी स्कूल में। मैंने 1 साल पहला साइंस लिया, बहुत डिफिकल्टी से पढ़ाई भी की काम भी किया, सेकेंड ईयर फिर मुझे इसको स्किप करना पड़ा क्योंकि उस वक्त तक भाई बहन बड़े हो रहे थे,
0: पैसों की भी
1: पैसों की भी जरूरत थी, और पढ़ाई अगर करके मार्क्स कम आए तो मुझे वो गवारा नहीं था क्योंकि जिंदगी भर मैंने 100% स्कोर किया था,
0: हारे तो कभी नहीं थे।
1: कभी हारे नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है, फिर मैंने वहां से छोड़कर कॉमर्स में आ गई मैं, कि
0: अच्छा
1: कोई बात नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट करते फिर देखते क्या होता है, तो पढ़ाई साथ साथ चलती।

0: रही मेरी।
1: मतलब आपने जो भी पढ़ा अच्छा कठिन ही पढ़ा,
0: हाँ
1: 11th 12th भी अगर आप साइंस से पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, या फिर आप बायो की लाइन में पढ़ रहे हैं तो इतने सारे बायोटेक्निकल नेम्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे
0: तो ऐसा होता था कि असिस्टेंट डेज में मेरी किताबें मेरे साथ होती थी, अम्मी साथ होते थे, किताबें साथ होती थी, पढ़ाई भी कर रही होती थी।
1: ये बहुत बड़ी बात है और शायद ये प्रेरणा वाली बात है हमारे उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एक साथ पढ़ाई के साथ कुछ और नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल यही मैं चाहती थी कि आपके जरिए बता
1: तो
0: चले
1: हमारे
0: लोगों को।
1: कितने सारे श्रोताओं में जो कितने बच्चे हमें सुन रहे होंगे उनको कितनी अच्छी बात पता पड़ रही है कि आप काम भी कर रही हैं, कमाई भी कर रही हैं, दोनों चीजें हो रही हैं,
0: बिल्कुल
1: प्लस पढ़ाई भी हो रही है वो भी साइंस की, बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स,
0: बिल्कुल
1: ये तीनों बहुत हैवी सब्जेक्ट हैं, तीनों में बहुत पढ़ना याद करना, फिजिक्स की मैथ्स भी होती है।
0: बिल्कुल,
1: और
0: इसलिए जब सेकेंड ईयर पे आई तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी।
1: बट कॉमर्स भी इजी नहीं
0: हाँ
1: है
0: बीके में मास्टर थी मैं अपनी क्लास
1: जी,
0: की, मतलब मैं
1: क्या
0: खुद
1: बात है,
0: हाँ
1: बुककीपिंग
0: पढ़ाई में
1: से।
0: अच्छी। हाँ तो बुक कीपिंग वॉज वेरी गुड विच इज हेल्पिंग मी नाउ ऑल्सो। तो जो
1: हाँ
0: पढ़ाई है वो मेरी जिंदगी में आज भी मेरे बहुत सपोर्ट में है। जो मैं सिस्टमेटिकली अपने करियर को संभाल पाई हूँ वो सिर्फ एक नॉलेज था पढ़ाई का, डिसिप्लिन का।
1: जी
0: और आप एक स्टूडेंट होते हो तो आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो कि आपको जल्दी सोना है जल्दी उठना है,
1: जी
0: वो आज
1: बिल्कुल
0: भी मेरी लाइफ में है। इसलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैं करना चाहती हूँ आपके साथ कि आप कर सकते हो जब आपके दिल दिमाग में ये टारगेट बैठ जाता है कि आपको ये करना है।
1: यानी उस समय नींद कम होगी, पढ़ाई और मेहनत ज्यादा होगी, और वो
0: बिल्कुल
1: सब करके आप हर फील्ड में आप जीती।
0: बिल्कुल। और आज इंसान को, अच्छे खासे दिमाग वाले इंसान को 4 घंटे की नींद बहुत है, बहुत है।
1: जी
0: ये जो 6 घंटा 8 घंटा है वो एक्टरों के लिए ठीक है जिन्हें
1: जी
0: अच्छे दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन अगर आपको आपका करियर बनाना है तो
1: जी
0: आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। शाहरुख खान साहब बहुत अच्छा कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती और आपको भूख नहीं लगती और आप बेचैन हो तो
1: हाँ,
0: मतलब आप बहुत बड़े बनोगे आगे जाके।
1: क्या बात है,
0: आप सुकून की नींद सो गए तो खत्म।
1: सुकून की नींद नहीं, पेट भर
0: बिल्कुल
1: के भूख नहीं,
0: बिल्कुल,
1: और एक अलग
0: ये
1: बेचैनी।
0: बिल्कुल मैं अपने
1: इसके
0: आप को
1: लिए
0: आज
1: डॉक्टर के पास नहीं जाना है, काम
0: नहीं जा,
1: करने के लिए लग
0: चार
1: जाना है।
0: घंटे की नींद काफी होती है दिमाग को और तंदुरुस्ती को
1: जी
0: कायम रखने के लिए।
1: कई बार लोग इसे कह देते हैं कि हम डिप्रेस हो रहे हैं या हमें कोई और समस्या हो रही है, ये सब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान दे लो, आपके अंदर कुछ पनप रहा है,
0: बिल्कुल,
1: कुछ जाग
0: ये
1: रहा है।
0: बेचैनी जो है एक नए कल की शुरुआत है। हमेशा
1: जी,
0: हिमेश रेशमिया ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, हम जब प्रेम रतन धन पायो कर रहे थे, कहते हैं मैंने कहा सर कितना खूबसूरत गाना बनाया आपने, तो ही सेड रोटी की भूख मुझे आज भी है,
1: इतना होने के बाद
0: ये भूख ही मुझसे करवाती है। तो मैं सर
1: और उसके बाद वो लोग रोटी नहीं खाते मेंटेन करने के लिए
0: बिल्कुल। तो अब आपके सवाल के जवाब की तरफ आती हूँ
1: जी
0: कि ये कब हुआ, जब कोरियोग्राफी शुरू की।
1: जी
0: मैं कोरियोग्राफर बनना नहीं चाहती थी, मैं पढ़ाई करके कुछ बनना चाहती थी, कुछ अलग बनना चाहती, लेकिन जिंदगी का मकसद कुछ और होता है, ऊपर वाले का स्क्रीन प्ले कुछ और होता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती है ना फ्लो के साथ चलो। एक फ्लो आया जब मैं प्रभु देवा जी को असिस्ट कर रही थी, चेन्नई में थी मैं, गणेश मास्टर जी के साथ अब काम छोड़ दिया 4-5 साल के बाद, और अब लगा कि ठीक है दिशा बदलनी चाहिए, तो मैंने प्रभु देवा जी को ज्वाइन किया।
1: जी
0: मैं चेन्नई में शूट कर रही थी और मुझे बॉम्बे में राम गोपाल वर्मा जी ढूंढ रहे थे। हाँ
1: अच्छा, क्या
0: जी,
1: बात है,
0: तो असिस्टेंट डेज में जिनको भी साथ मैंने काम किया उनको एक चीज वो नहीं भूल पाए कि एक लड़की है जो ऐसा परफॉर्म करती है लगता है माधुरी दीक्षित नाच रही है। तो वो जो मेरा परफॉर्मेंस था लोग भूल नहीं पाए। हर इंसान, मतलब असिस्टेंट डेज में भी ऐसा होता था कि ऐश्वर्या रॉय गाना कर रही है हमारा दिल आपके पास, और वो पूछ रही है कि गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट शबीना है ना अभी भी।
1: अच्छा, प्रश्न ही होता था,
0: हाँ
1: शबीना आएगी
0: शबीना
1: ना
0: है
1: सिखाने
0: ना,
1: के लिए। हाँ
0: तो उन्होंने पूछा शबीना है ना, हाँ हाँ शबीना है, उनका वीजा नहीं लगा अमेरिका का, तो अनिल कपूर और बोनी कपूर चले जाते हैं वीजा लगवाने मेरा।
1: मतलब आपने इतना अच्छा काम किया कि आपके लिए अनिल कपूर
0: हाँ
1: जाके वीजा लगवा
0: वीजा,
1: रहे
0: और मुझे कॉल आता है कि भैया तुम्हारा 10 साल का वीजा लग गया है, समझ रही हो तुम, अनिल कपूर बोल रहा हूँ शबीना, मतलब वो लेवल का। शाहरुख भाई ने एक बार बोल दिया कि अगर असिस्टेंट्स को अवार्ड होता तो मैं शबीना को अवार्ड दिलवा देता।
1: क्या बात है,
0: जब मैं उनके साथ मैं तो हूँ पागल सॉन्ग कर रही थी, जब मैं परफॉर्म भी
1: हाँ,
0: कर
1: क्या
0: रही
1: खूबसूरत
0: थी,
1: गाना
0: तब तो मैंने बिल्कुल ज्वाइन पूरी तरह से किया नहीं था, मैं पढ़ ही
1: जी
0: रही थी,
1: जी जी
0: असिस्टेंट डेज की बात है।

0: वो वाले माहौल में राम गोपाल वर्मा मुझे ढूंढ रहे हैं मुंबई में, और वो कहते हैं कि एक लड़की थी जो गणेश आचार्य जी के साथ परफॉर्म करके दिखाया था उसने मुझे एक गाना,
1: जी
0: वो लड़की को ढूंढो उसको ब्रेक देते हैं, वो बिल्कुल माधुरी की तरह नाचती है, और फिल्म का नाम था जिसके लिए वो मुझे ढूंढ रहे थे, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
1: 2003 की ये फिल्म है।
0: बिल्कुल, और वो ढूंढ रहे हैं मुझे। फिर वहां से मुझे ढूंढा गया, चेन्नई से बुलाया गया और अपनी ऑफिस में बुलाया, अम्मी और मैं बैठे और बात कर रहे हैं उनसे, और मैं कह रही हूँ कि सर मैं कोरियोग्राफर नहीं बनना चाहती, मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता,
1: सीधे ब्रेक
0: मुझे
1: मिल रहा है, बट
0: बिल्कुल
1: आप जाना चाहती हैं पढ़ने के लिए। जी
0: मुझे आता ही नहीं कुछ, मैंने सिर्फ यही सीखा है कि अपने मास्टर्स के लिए अच्छा काम करना है, मैंने कभी टेक्निकली सीखा ही नहीं कि कैमरे के पीछे क्या होता है, तो मुझे बनना ही नहीं था इसलिए मैंने सीखा ही नहीं, मुझे एक ही बात आती है कि आपको परफॉर्म कैसे करना है। ही सेड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, ही सेड मैंने सरोज जी को साइन कर लिया है, मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम करो अंतरा के साथ ये फिल्म, अंतरा माली हीरोइन थी
1: जी
0: उसकी, चंदन अरोरा जी उनके डायरेक्टर थे जो बहुत बड़े एडिटर थे उस वक्त भी,
1: जी
0: सर मुझे कुछ नहीं आता, इसे चंदन है तुम्हारे साथ तुम्हें बता देगा, एक गाना करो मजा आया तो आगे करना,
1: वो
0: फिर
1: गाना कौन सा था पहला वाला?
0: तुमसे मिली नजर तो असर हुआ
1: हाँ
0: है आज
1: वो भी
0: ये
1: बहुत
0: दिल,
1: अच्छा किया था अंतरा माली जी ने,
0: आहा,
1: बढ़िया किया था।
0: बहुत फेमस हुआ था वो गाना। सर मैंने ऑडिशन किया है काफी लड़कियों को, बट तुम जाओ अंतरा से मिलो और देखो क्या होता है, मैं गई, अंतरा ने मुझे दो गाने दिए, इस पे कल आप परफॉर्म करके दिखा देना, मैंने किया, वो गाना था 1 2 3 और हमको आज कल है इंतजार,
1: वो
0: माधुरी
1: मुझे
0: दीक्षित
1: अभी
0: का।
1: अंतरा जी दिखाई दे रही हैं, अंतरा माली की, वो उस गेटअप में खड़ी हैं स्टेज पे और वो उसको परफॉर्म कर रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: तब वो गाना मैंने उनको परफॉर्म करके दिखाया, एंड शी जस्ट स्टूड अप एंड शी हग्ड मी एंड शी सेड तुम ही करोगी मेरे गाने,
1: क्या बात है।
0: तो मैंने कहा कि मैम मुझे आता नहीं है बिहाइंड द, तो चंदन अरोरा साथ में कर लेंगे, मेरी भी पहली पिक्चर है, सच अ
1: सीखेंगे
0: ग्रेसफुल डायरेक्टर, सच अ गुड एडिटर इज,
1: जी।
0: उनकी वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाई, उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम शॉट मुझे ऐसे बताना, गर्दन का मूवमेंट है तो यहाँ पे हाथ रखना गर्दन के नीचे, कमर का मूवमेंट है तो कमर की तरफ हाथ रख के बताना, पूरा फुल फिगर है तो बताना कि मुझे पूरा देखना है, इतनी सादी अल्फाज में उन्होंने मुझे एक कोरियोग्राफी सिखा दी, और फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ, और जब पहला गाना
1: कोई
0: एडिट करके
1: टेक्निकल वर्ड्स नहीं थे
0: ये सर
1: इसमें।
0: तुमने यही सीखना, और फिर जो सीखोगे अपने काम से सीखो, काम करते करते सीखो,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: राम गोपाल वर्मा इज माई फर्स्ट टीचर एंड चंदन अरोरा इज माई सेकेंड टीचर, आई टेक इट लाइक दैट, एंड अंतरा माली इज माई फर्स्ट स्टार हु, उस दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला चल साथ में करते हैं,
1: जी
0: तो वो फिल्म मैंने की और मुझे बहुत मजा आया, और फिर लगा कि ओ माई गॉड ये मेरा क्रिएशन है, जब 70 mm के पर्दे पे मैंने पहली बार अपनी रचना देखी तो मुझे लगा कि स्टेप्स भी मेरे हैं,
1: जी
0: लाइट्स भी मैंने बताई है, एंगल भी मेरे, ये मैंने क्रिएट किया है,
1: ये मेरा बच्चा है।
0: हाँ, तब मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मुझे ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये करना है, मम्मी बोले करो बेटा,
1: एक्चुअली में जब आप कुछ सजाते हो तो सजाने के पहले भी आप एक अकेले कमरे में बैठ के शायद उस
0: आप
1: डांस
0: उसको
1: को
0: जीते हो,
1: जी रहे होगे, उसके
0: बिल्कुल
1: साथ कुछ सपने भी बुन रहे होगे
0: बिल्कुल
1: और उसको आपने एक जीवन दे दिया।

0: मतलब मैं अगर आपसे ये कहूं कि हम रिहर्सल हॉल के अंदर बैठ के गाना एडिट तक देख लेते हैं, एडिटिंग तक। पहला प्रोसेस होता है, गाना आता है, कोरियोग्राफी होती है, डायरेक्टर को दिखाते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं।
1: जी
0: तो पहले प्रोसेस में बैठ के हम एडिटिंग रूम के अंदर गाना देख लेते हैं।
1: जी
0: ये इतनी खूबसूरत रचना है जिसको आप रचने जा रहे होते हो, तब मुझे वहां पे मजा आया और मैंने कहा कि अब यही करना है मुझे। फिर जिंदगी का मोड मुझे कोरियोग्राफी की तरफ ले आया और वहां से मेरी कहानी शुरू हुई।
1: आपको सुन के ना इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में आप एक 20 मिनट आधा घंटा किसी को सुन रहे हो, और सुनते सुनते आप उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके जीवन में काम आ जाएंगी, ऐसी मिलते जा रही हैं।
0: बिल्कुल
1: तो आपसे बात करके शबीना जी बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें कोई गीत तो सुनाना पड़ेगा, और आपके गीतों में से कोई गीत सुनाना है या पुराना सुनाना है हम आप पे बिल्कुल छोड़ देते हैं। आज आपकी पसंद हमारे श्रोताओं तक पहुंचनी चाहिए, जितनी भी जाएगी।
0: तो
1: तो
0: मेरा एक गाना है मेरी अपनी फिल्म का, जो मेरा अपना फेवरेट है,
1: जी
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म
1: हाय
0: से
1: हाय,
0: है। गाना है जलते दिए।
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: उसमें मुझे वो आत्मा दिखती है जो पुराने गानों में दिखती थी।
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: आप सुनेंगे या आप देखेंगे तब
1: जी
0: भी आपको लगेगा कि ये गाना रूह को टच करके जाता है।
1: इसके साथ एक प्रश्न आ रहा है मन में, वो जो बीच बीच में जो दिए जल रहे हैं
0: जी
1: और वो बीच में से जो आपकी अभिनेत्री नृत्य कर रही हैं और नृत्य करते करते यहाँ से वहां जा रही हैं, तो इस चीज के लिए भी विशेष सुरक्षा कुछ की जाती होगी कि कैसे
0: बिल्कुल।
1: वो कर रही हैं, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें तो हम गाना
0: सो
1: सुना
0: अगर
1: दें।
0: आप गाना देखेंगे आपके जरिए, जो इतने लोग
1: सुनेंगे और बाद
0: हिंदुस्तान
1: में
0: के
1: देखेंगे भी।
0: देखेंगे और सुनेंगे,
1: जी
0: तो ये जो दिए देख रहे थे आपके, गाना था जलते दिए,
1: जी
0: तो हमारे जो सूरज बजाते जी है उनके तो
1: जी
0: सब जानते हैं,
1: जी
0: सबके दिलों की धड़कन है वो।
1: जी
0: तो वो बहुत ही रियल लाइफ में जीते हैं अपनी।
1: बिल्कुल, बहुत
0: उनसे मैंने,
1: सरल
0: वो
1: है।
0: मेरे एक मेंटोर है, मेरे टीचर है, उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ।
1: जी
0: जब ये गाना आया उन्होंने कहा कि हम दिए खुद जलाएंगे,
1: खुद जलाएंगे यानी,
0: नकली दिए भी मिलते हैं जो
1: हाँ
0: आप
1: वो,
0: ऑन करके डाल
1: हाँ
0: दो।
1: एलईडी वाले।
0: ही
1: जी
0: सेड नहीं, उन्होंने अपने डीओपी को बोला, मणिकंदन हमारे डीओपी थे, ही सेड मैं चाहता हूँ कि हम दिए जलाएं, जितनी
1: असली दिए
0: दिए
1: जलाएं।
0: दिख रहे हैं हम
1: हाँ
0: जलाएंगे, भले 50-100 लोग भागे शॉट के पहले दिए जलाए और बाहर आ जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है
1: ये
0: इस
1: बढ़
0: गाने
1: जाती है
0: की।
1: जिसका ये काम है तो
0: हाँ, तो
1: होता
0: उसमें
1: है,
0: दिए
1: ये
0: जलाने में मैं
1: ऑथेंटिसिटी
0: भी होती
1: होती
0: थी, मेरे असिस्टेंट, उनके असिस्टेंट, वो भी भागते थे कि दिए जलाना है, पानी में भी दिए जल रहे हैं।
1: जी,
0: आपने जो
1: उसके
0: सवाल
1: साइड से
0: किया,
1: ही पट्टी
0: साइड
1: पे भी
0: में
1: जल रहे हैं। जी
0: जहां जहां वो जा रही है
1: हाँ
0: वो दिए जल रहे हैं,
1: जी
0: और उन दियों को हम जलाते थे और एक डिस्टेंस मेंटेन करके, क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी,
1: हाँ, और वो
0: तो वो
1: बहुत लाइट
0: चलकर,
1: नेट की
0: हाँ,
1: साड़ी है वो।
0: तो
1: जी
0: वो हमारा एंगल हम ऐसे रखते थे कि दिए लगे उनके बहुत करीब, बट वो होते थे बहुत दूर।
1: मेरा प्रश्न वही था कि हमें ऐसा
0: हाँ,
1: लग रहा था कि वो बिल्कुल दिए के बगल से निकल
0: नहीं,
1: रही है
0: वो
1: और वो।
0: हमारा एंगल ऐसे रखते हैं कैमरा के
1: जी
0: कैसा लगे कि है बहुत करीब,
1: जी
0: लेकिन वो है बहुत, हम जो भी फिल्म के सेट पे करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, हमारे जो लोग एक्सपर्टीज रखते हैं इस मामले, वो हमारे सेट पे होते हैं,
1: जी
0: और फायर के लिए बराबर से इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे नहीं होता। फिल्म
1: डॉक्टर्स होते
0: सेट,
1: हैं, एम्बुलेंस
0: डॉक्टर्स
1: होती
0: होते
1: है।
0: हैं, सारी चीजों को बहुत ध्यान में रख के फिल्म के सेट पे काम किया जाता है। जैसे
1: जी
0: लोग आजकल रील बना रहे हैं, उनको
1: हाँ
0: भी ये समझना चाहिए कि आप देख के रील बनाते हो, लेकिन आप भी इसका ध्यान रखो कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। घर में रील बनाते हो, पीछे पर्दे लगे हैं, वो
1: हाँ
0: पर्दे जल जाए, घर में रहने वालों को नुकसान हो जाए,
1: इक्विपमेंट्स
0: सेफ्टी
1: और सेफ्टी नॉर्म्स के
0: बहुत
1: साथ में
0: जरूरी है,
1: ही
0: बहुत
1: काम करना
0: जरूरी।
1: चाहिए।
0: तो इस गाने को बहुत ही प्यार से,
1: बहुत
0: कोमलता
1: रिच
0: से
1: सॉन्ग,
0: दर्शाया गया,
1: बहुत प्यारा, बहुत
0: बहुत
1: सॉफ्ट, बहुत गीत है और बहुत प्यारा गीत है ये।
0: बिल्कुल
1: दिल में ऐसे लगता है सुनते सुनते कि हाँ कुछ हो रहा है, तो
0: बिल्कुल
1: जब कुछ हो रहा है तो वो गाना सुन लेना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं के लिए इस प्यारी सी सूचना के साथ, जानकारी के साथ कि कैसे शूट किया गया ये गाना जलते दिए, आप सबके लिए।

0: अभी आपने फीमेल एक्टर्स का नाम लिया, ऐश्वर्या का नाम लिया आपने, आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया
1: जी।
0: बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, इंटरनेट पे सर्च किया, ढूंढा आपको, और वो ढूंढते ढूंढते तो कभी कभी ऐसी चीजें जो होती हैं सोशल मीडिया वाली, वो भी बड़ी काम आ जाती हैं। तो वहां से ये भी जानकारी मिली कि लगभग जब हम पढ़ रहे थे तो 34-35 महिलाएं जो हैं, एक्ट्रेस जो हैं, अभिनेत्री जो हैं, उनको आपने बढ़िया डांस करवाया है, बढ़िया कोरियोग्राफ किया है। तो पूजा जी हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, विपाशा हैं, परिणीति हैं, माधुरी हैं, रेखा हैं, रेखा जी को भी आपने सिखाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, या हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं बात, तो ये बड़ा वैसा प्रश्न है, कौन है जो बड़ी सरल सी है और बड़ी आसानी से सीख जाती है और बड़े प्यार से कर लेती है?
1: आपने अभी और पुराने सबका नाम एक साथ ले लिया।
0: नहीं, आप अलग से बता सकती हैं।
1: हर एक के बारे में बताती हूँ।
0: जी, जी,
1: जी। रेखा जी
0: है
1: हमारी मुड़ा जान
0: जी,
1: उनसे बेहतर कौन हो सकता है। उनके साथ मैंने सुपर नानी एक फिल्म

0: जितेंद्र कुमार जी की,
1: जी
0: मैं नई नई कोरियोग्राफर थी,
1: जी
0: और जब उनको पहली बार देखा मेरे पैर ठंडे हो गए, हाथ ठंडे हो गए, बिकॉज उनकी अदायगी
1: आज भी उतनी ही
0: आज
1: खूबसूरत,
0: भी उतनी
1: पचहत्तर
0: ग्रेसफुल,
1: तेहत्तर चौहत्तर बरस की उम्र में भी वही अदायगी।
0: आज भी वो स्टेज पे खड़ी हो जाए बस यूं देख ले तो
1: हाँ
0: दिल के अंदर तीर घुस जाते,
1: हाँ
0: वैसी है वो। और उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल किया, और उनके साथ मैंने वो फिल्म की,
1: जी
0: उसमें डांसिंग नंबर भी था एक, और
1: जी
0: बहुत प्यार से किया। मेरी उस साल नई शादी हुई थी, उन्होंने अपने हाथ से बना के एक मंगलसूत्र मुझे पहनाया
1: आह क्या बात है।
0: और अपने हाथ से एक लेटर दिया लिखकर। इसे मैं कहती हूँ अचीवमेंट है, ठीक है। उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा, बहुत ग्रेसफुल है,
1: अच्छा
0: बहुत ग्रेसफुल है, उसमें वो बात है
1: अच्छा
0: जो हम कहते हैं ना अदायगी, नज़ाकत,
1: हाँ
0: यू नो, वो है। परिणीति इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल।
1: यस
0: ग्रेसफुल मैं तब कहती हूँ ना, परिणीति के साथ अक्षय कुमार, परिणीति का एक गाना किया था, कीमती एक सॉन्ग था मेरा, बहुत ग्रेसफुल। जहां आपके पास डांस नहीं करना है, खड़े रह के कुछ बोलना है, कुछ गाना है, वहां पे आपकी नज़ाकत और आपका ग्रेस पता चलता
1: इसे
0: है।
1: अंग्रेजी में मिनिमल कहते हैं, या मतलब कमतर में बेहतरीन करके
0: बिल्कुल
1: निकल जाना।
0: बिल्कुल,
1: जी
0: आपको ज्यादा शोर शराबा जंप वंप करने की जरूरत नहीं है। आप बस आपका क्लोजअप लगा और आपने सिर्फ कैमरा को देखा और एक लाइन गा दी। इसे कहते हैं अदायगी, जो परिणीति में है, सोनाक्षी में है। सोनम इज रियली गुड, सोनम प्रूव्ड इन प्रेम रतन धन पायो, शी वर्कड रियली हार्ड विथ मी। अगर मेरा नाम परिचय इस दुनिया को और इस इंडस्ट्री को पता चला तो प्रेम रतन धन पायो फिल्म थी,
1: बिल्कुल
0: और उसमें मेरी हीरोइन थी सोनम कपूर।
1: सोनम
0: शी वर्कड
1: कपूर।
0: रियली हार्ड, रात को दो दो बजे तक रिहर्सल किया, और शी, क्योंकि मैं अपनी अदायगी को कैमरा के सामने तो दिखा सकती नहीं हूँ, बट मैं अपनी एक्ट्रेसेस के साथ, अगर वो मेरे साथ मेहनत करने तैयार है तो उनके साथ मेहनत करके अपने आप को उनके जरिए कैमरा पे दिखा सकती हूँ। जो जलते
1: बहुत
0: दिए में आप
1: सॉफ्टनेस
0: देखिए,
1: के साथ में उन्होंने
0: बिल्कुल
1: डांस किया जी।
0: शकुंतला बन गई थी वो, बिल्कुल उस
1: हाँ
0: गाने
1: ऐसा
0: में,
1: ही,
0: यही था।
1: दुष्यंत का ही इंतजार रह गया था। शी वॉज
0: शी
1: वेरी
0: वॉज
1: गुड,
0: वेरी ग्रेसफुल।
1: बहुत बहुत बहुत प्यारा किरदार उनका।
0: जितनी भी मेरे साथ, अभी मैं एक नई फिल्म कर रही हूँ, शर्वरी,
1: अच्छा
0: नई लड़की, आज की लड़की है, बहुत ग्रेसफुल है वो भी। तो होता क्या है, जब आपका प्रोफाइल बनता चला जाता है तो लोग आपको सर्च करते और फिर कहते हैं, ओह आपने इतनी ग्रेसफुल गाने की है, मुझे भी करवा दीजिए।
1: सही बात है,
0: यू नो,
1: कहेंगे लोग।
0: बस उसी की वजह से मेरा एक जो प्रोफाइल बना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डिलीवरिंग क्लासिक एंड गुड वर्क, जो बहुत जरूरी होता है, वही है। तो ये जितनी भी लड़कियों का आपने नाम लिया जिनके साथ मैंने काम किया, दे वर्क हार्ड विथ मी एंड दैट्स हाउ दे हैव।
1: इनके कोई
0: तो
1: नखरे नहीं होते थे कि तुम मुझे ये मत कराओ, वो मत कराओ, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वैसा नहीं करूंगी। जैसे माधुरी दीक्षित हैं, वो अपने आप में परिपक्व हैं नृत्य के लिए। ऐश्वर्या राय हैं, उन्होंने भी बहुत सारा कुछ सीखा हुआ है नृत्य में। तो इन लोगों का कुछ ऐसा अपनी फरमाइश नहीं होती है
0: सी, जैसे माधुरी दीक्षित की बात की
1: जी।
0: आपने, मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ।
1: जी
0: उनके साथ अब असिस्टेंट डेज में मैं एक पुकार फिल्म का गाना कर रही थी,
1: एक के जरा जरा
0: वो भी किया, और एक गाना था जो फिल्म में नहीं डाला, गणेश मास्टर जी कर रहे
1: जी
0: थे।
1: जी
0: जब वो मेरे सामने आए और मुझे उनको करके दिखाना था, और पहली बार मैंने अपनी प्रेरणा को अपने सामने देखा, तो
1: जी
0: मैं रो पड़ी। शी
1: हाँ
0: केम, शी हग्ड मी एंड शी गॉट टू नो दैट आई एम अ बिग फैन। शी सेड, अगर मेरी अच्छी फैन है तो मुझे करके दिखा ये गाना पूरा। और मैंने उनको पूरा गाना डांस करके दिखाया। शी सेड, मिरर लाओ, मुझे शबीना को कॉपी करना है।
1: क्या बात है
0: हाँ, ये होता है अचीवमेंट।
1: जी।
0: और मैं बिल्कुल शून्य थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित ने कभी लोगों को बदल के अपने परफॉर्मेंस नहीं किया। उन्होंने जितने कोरियोग्राफर के साथ काम किया, ये है लेजेंड होने की एक बहुत बड़ी निशानी। आप कब लेजेंड बनते हो, आपके अंदर ये क्वालिटीज होती है।
1: उन्होंने हर कोरियोग्राफर को
0: उन्होंने
1: गुरु
0: अगर
1: मान के
0: माधुर
1: उसके जैसा ही
0: उन्होंने
1: काम
0: सरोज
1: किया
0: जी को अगर निभाया स्क्रीन पे, तो उन्होंने जय बोराडे को निभाया।
1: जी
0: आपको पता है जय बोराडे ने उनके साथ बहुत बड़ी फिल्म की थी जो
1: जी
0: सूरज बड़जात्या की थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन।
1: जी बहुत
0: उन्होंने निभाया उनको,
1: खूबसूरत
0: उन्होंने उनको निभाया, गणेश आचार्य जी को निभाया, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल जो गाना है,
1: जी
0: मैं असिस्टेंट थी, वो भी उन्होंने किया,
1: जी
0: माधुरी दीक्षित जी ने। तो उन्होंने मेरे साथ जब वो गाना असिस्टेंट में किया, बड़ी मुश्किल भी, शी नेवर सेड कि मुझे चेंज करना है। शबीना ने बहुत अच्छा किया, शबीना मुझे बताओ कैसे किया, मुझे ऐसे करना है। जब एक दिग्गज कलाकार आपको ये कहता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है।
1: जी
0: और वही चीज लेकर चल रही हूँ अपने कोरियोग्राफी के पीरियड में मैं। टचवुड, अभी तक कोई ऐसी हीरोइन नहीं आई जिन्होंने ये कहा कि ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है, क्योंकि मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ उनको। और मेरे डायरेक्टर जैसे सूरज बड़जात्या, जलते दिए, साड़ी पकड़ के एक मोमेंट है चलना है, सूरज जी ने कहा सोनम मुझे यही चाहिए। जब तो आपका डायरेक्टर आप पे भरोसा करता है
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: एक्टर फिर खामोश हो जाता है।
1: हाँ
0: और सलमान खान,

0: जब वो गाना देखा, मैं और मेरा असिस्टेंट जो मेरा एसोसिएट कोरियोग्राफर है, मेरा छोटा भाई है, वो सगा भाई है,
1: जी,
0: वो भी मेरे साथ रह रहे कि वो भी एक एक्टरों की तरह परफॉर्म करता है।
1: अरे वाह,
0: हम दोनों ने जब करके दिखाया तो सलमान खान जी ने एक बात बोली कि मुझे पता चल गया मुझे कैसा करना है, मुझे इसकी तरह करना है, सोनम तू देख ले तुझे क्या करना है। सूरज जी ने बोला कि शबीना।
1: जी
0: तो वहां पे कभी कभी जब एक्टर कुछ बोलने जाता है तो आपका हीरो स्टार मेगा स्टार या आपका डायरेक्टर आपके साथ होता है तो फिर सब कुछ बैलेंस होके चलता है। और मेरे मामले में यही चीज मेरे साथ ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि जब ग्रेसफुली मैं करके दिखाती हूँ तो एक्टर लोग को लगता है मैम हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, आपका 50% भी हो जाए तो बहुत होगा।
1: हाँ,
0: उसके लिए आपको करना पड़ेगा, पहले
1: और उनको वहां तक लाना पड़ता
0: लाना
1: है,
0: पड़ेगा
1: मेहनत
0: आपको
1: करनी पड़ती है।
0: उनके कैरेक्टर को। मैं करके दिखाती हूँ, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मैं एक फिल्म एक वक्त में करती हूँ ताकि
1: हाँ
0: उस कैरेक्टर को जी पाऊँ, उसकी तरह बन पाऊँ, उसके जैसे लचक लाऊँ, उसके जैसे। वरना कैरेक्टर कुछ और कर रहा है, कोरियोग्राफर अगर कुछ और दिखा रहा है तो वो कैरेक्टर जी नहीं पाएगा फिल्म के अंदर बराबर से।
1: मतलब एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक DOP और उसके कई सारे लोग, इनके पीछे
0: सारे
1: इनके
0: एचओडीज
1: असिस्टेंट्स, एक कोरियोग्राफर और उसके कई सारे असिस्टेंट, उन किरदारों को खुद में जी रहे होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और तब कहीं जाके वो अकेला अभिनेता या अभिनेत्री नहीं जी रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उस
0: तभी
1: किरदार को
0: प्रेम
1: जी रहे
0: रतन
1: होते
0: धन
1: हैं।
0: पायो बनी है। मैंने वो ही फिल्म की 1.5 साल और कोई फिल्म को हाथ नहीं लगाया। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकती थी, मैं कर सकती थी, लेकिन उसके पीछे राज यही है कि पूरी फिल्म जब मैं अकेली कर रही हूँ, ये
1: जी
0: पूरी फिल्म मेरी अपनी फिल्म है,
1: जी
0: इसका कोई भी कोना कोई भी म्यूजिक मेरे हाथ से ना निकल जाए। और उस कैरेक्टर को मैं मैथिली को जीने लगी
1: जी
0: जो
1: बिल्कुल
0: सोनम का कैरेक्टर
1: जी।
0: है, फिर मुझे प्रेम को भी जीना है, फिर मुझे सूरज बड़जात्या जी को जीना है,
1: वो दो छोटी बहनों को भी जीना है
0: उनको भी
1: बीच में
0: जीना है, हर एक कैरेक्टर को जीना है।
1: जी।
0: तो फिर उतना टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको, तभी तो ये ऐसी फिल्में बनती है। अगर आप मेरा करियर स्पैन देखो, जितने साल मैंने काम किया है, मैंने मल्टीपल फिल्में क्वांटिटी में नहीं की है, मैंने क्वालिटी में की है।
1: तो ये बढ़िया बात आपके साथ चल रही है, और इसके बीच मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूं, क्योंकि इतनी अच्छी बात आपने बताई है, और शायद हमारे श्रोता भी इस बात को सुनकर समझ पा रहे होंगे। वहां तक
0: बिल्कुल
1: पहुंच, मैं तो सेट तक पहुंच चुकी थी, तो हमारे
0: बिल्कुल
1: श्रोता भी सेट तक पहुंच ही रहे होंगे। थे तो ये लग जा गले तो सुनाना बनता है।
0: उफ प्लीज।
1: तो आपका पसंदीदा गीत, और ये कहूं पूरी यूनिवर्स का पसंदीदा गीत, मदन जी ने क्या बढ़िया इसमें
0: बिल्कुल,
1: संगीत दिया है, क्या बढ़िया इस गीत को गाया गया है, और क्या फिल्माया गया है।
0: मैं फिल्माने पे अगर कुछ बोल पाऊँ इस
1: हाँ
0: पर,
1: बिल्कुल
0: अगर
1: जी,
0: आप इस गाने को फिर से मेरे मेरी इस
1: आपके
0: इंटरव्यू
1: नजरिए
0: के
1: से।
0: बाद अगर आप वापस से जितने आपके श्रोता है वो भी देखें तो उन्हें समझ आएगा कि इस गाने को ब्लैक एंड व्हाइट पे शूट किया गया। कोई सोच सकता है कि हर एक शॉट मूवमेंट में है, वहां पे कैसे शूट किया होगा, हर एक शेडो के साथ कैमरा का जब एंगल चलता है, कई बार हाथ में कैमरा लेके DOP ने शूट किया होगा, लेकिन उसकी स्मूथनेस,
1: हाँ
0: उसकी अदायगी देखिए, वो एडिट पे संभाला हुआ गाना नहीं है, वो वैसे शूट किया गया है। इसको पिक्चराइज इतना बढ़िया किया गया है कि मैं हर गाना आज भी शूट करने से पहले लग जा गले देखती जरूर हूँ,
1: अच्छा
0: क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप शेडो क्रिएट कर रहे हो चेहरे के ऊपर,
1: हाँ
0: जंगल में वो गाना शूट हो
1: हाँ
0: रहा है और दो लोग
1: लाइट
0: हैं,
1: इफेक्ट्स इतना खूबसूरत आ रहा
0: बिल्कुल
1: है जी,
0: दो ही लोग हैं और कुछ नहीं है,
1: कुछ नहीं है,
0: और दोनों हर फ्रेम में है,
1: और बहुत ज्यादा लाइट्स भी नहीं दिखाई
0: लाइट्स
1: गई
0: भी
1: हैं
0: नहीं है,
1: बैकग्राउंड में, क्योंकि वो
0: तो
1: जंगल का
0: उसको
1: है।
0: वो जो सूदिंग, वो गाना अगर सुनने में प्यारा है तो देखने के बाद भी लोगों ने उसको उतना ही पसंद
1: जी
0: किया है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ पे कोरियोग्राफर आता है बीच में, कि
1: तो ऐसे
0: कोरियोग्राफर एक
1: गानों में भी
0: म्यूज
1: कोरियोग्राफर का काम
0: बिल्कुल
1: होता है,
0: बिल्कुल
1: सिर्फ
0: होता है,
1: नाचने के लिए नहीं, बाकी
0: बिल्कुल होता है। आपने अगर अभी मेरा एक गाना सुनाया है जलते दिए,
1: जी
0: और आप ये गाना देखिए, आई
1: जी
0: वॉज इंस्पायर्ड बाय लग जा गले
1: जी
0: फॉर शूटिंग माई सॉन्ग जलते दिए।
1: जी
0: तो बीइंग अ सेंसिबल कोरियोग्राफर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शूट सच सॉन्ग्स विथ योर डायरेक्टर।
1: जी
0: डायरेक्टर नॉर्मली मूवमेंट वाले शॉट नहीं लेते, लेकिन म्यूजिक की डिमांड होती है,
1: की मोमेंट हो।
0: मोमेंट हो, कैमरा कॉम्प्लीमेंट करे जो लग जा गले में हुआ है।
1: जी
0: कैमरा इज कॉम्प्लीमेंटिंग एवरी इमोशन ऑफ साधना जी और
1: अरे
0: मनोज कुमार जी,
1: बहुत खूबसूरत गीत है।
0: और कैरेक्टर्स देखो उसके जो जी रहा है कोरियोग्राफर उस गाने में, इसी को मैं कहती हूँ कि अपने कैरेक्टर को जीना एक कोरियोग्राफर को आना चाहिए।
1: तो इतनी अच्छी बात के बाद तो ये गाना बनता है, तो जल्दी से सुना देते हैं ये लग जा गले।

जानी मनी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: पर है दूपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
2: परेशान हूं मैं।
1: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
3: हमारी जो डिसऑर्डर्स है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
5: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की
5: और आप

0: इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये दरहोरा, चंदौरा, सेमई, सरहरी, करंजवार, हरिहरपुर, परमेश्वरपुर, पकनी, खजूरी, सतकोना, मेंड्रा, कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर, रामानुजगंज, धमनी और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये खुखनिया, बदौली, जामदोहर, रेवतपुर, जवाखाण, धंधापुर, उधवा कटरा, नरसिंहपुर, पकरीडांड, जमुनिया, रामपुर, कनकपुर, चीनिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, कोटराही, पेंडारी, तनवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये अस्कला, दोरना, मोहरा, जरहाडी, चंगोरी, चंदेश्वरपुर, शिवनाथपुर, सरगा, पेटला, घासीडी, सिहारजोर, कठबुड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जिसपुर वन मंडल के कुनकुरी और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये पंडरीपानी, फरसकानी, खारीझरिया, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, साजा पानी, सोनार पहरी, तीता पाकेर, बड़नी झरिया, बटई केला, जुमे केला के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 129 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में 2 हाथी विचरण कर रहे हैं। ये पीड़िया, कोटमेर, कोरकोमा, कलगा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की

0: कुल संख्या 42 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटा झरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:06 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत।

कार्यक्रम के आरंभ में आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में असद भोपाली की शब्द रचना, उषा खन्ना का संगीत, एक पहली फिल्म का ये गीत।

और लीजिए आप सुनिए प्रेम बंधन फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

धर्मवीर इस फिल्म का गीत लीजिए, आप सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हसरत जयपुरी का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर और मुकेश की युगल आवाजों में लीजिए पेश है हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए पेश है उपासना फिल्म का गीत, मुकेश के स्वर में इंदिवर का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए पेश है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में राजेंद्र कृष्ण का बोल, रवि का संगीत, ये रास्ते हैं प्यार के, फिल्म का

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना, ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:35 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम, ईमेल करें, गीत सुनें।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। श्रोताओं, आज आपके साथ है मीनाक्षी। नमस्कार।

0: हाजिर है श्रोता हूँ आप सभी के बहुत सारे ढेर सारे ईमेल हाथों में लिए। साल्हेभाटा महासमुंद के ये श्रोता साथी हैं जीतू ध्रुव, केवल किरण, दिव्यांशु, खेमु ध्रुव, जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, अम्बागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा, हाँसी से राजू मिगलानी, बबीता, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। सुनवा रहे श्रोताओं आप सभी की फरमाइश पर काला समुंदर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, एन दत्ता का संगीत।
1: तस्वीर लेकर क्या करोगे।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना काला समुंदर फिल्म का, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले साथियों की आवाज़ों में। और अगले गीत की ईमेल पर मिली हुई फरमाइशें हैं आप सभी श्रोताओं की। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ, शौर्य नामदेव, भाटापारा से विष्णु साहू, पूरब वीरा, हर्ष कुमकुम, योगेश्वरी साहू, गिरिडीह झारखंड से यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफरा नवाज, चाहत सादिया, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये, नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, कोल सिटी बरकाखाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक, गोगावा से सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सौगा मगालोट से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। सुनवा रहे श्रोताओं आप सभी को लता मंगेशकर और मुकेश के स्वरों में मिलन फिल्म का गीत, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर,
1: पवन करे शोर।
0: हाँ

0: ईमेल करें, गीत सुने सुन रहे श्रोताओं, आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से कार्यक्रम के लिए अगली फरमाइशें आप सभी की। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेहराज जहां, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, राजपैलिस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, मुरली क्षत्रिय, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, मदनपुर से स्वर्ण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानास, तलत जहां, फरहत जहां, रिफत जहां, नुजहत जहां, साजिया शाहिनाज और नाजिया नूरी नाज। सुनवा रहे हैं आपको बातों बातों में फिल्म का गीत, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, अमित खन्ना का गीत है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठ सबके कदम, देखो रम पम।

ऐसे ही गीत और भी हैं आपकी फरमाइशों के। ये श्रोता हैं अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, देगलूर नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे, पुड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चोआराम, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन, भोजो कैचिया भटिंडा पंजाब से परेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। लीजिए पेश है आनंद बख्शी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर, अर्पण फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में।

कार्यक्रम के आखिर में सुनिए महबूब का गीत, ए आर रहमान का संगीत, बॉम्बे फिल्म का ये गीत हरिहरन की आवाज़ों में आप सभी की फरमाइश पर। यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, मनवर, प्रियांशी, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता, बठेना पाटनदुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा।

इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, आज शाम 7:30 पर आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे किसान वाणी। संसद समीक्षा रात 8 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। ईमेल करें, गीत सुने 6:20 पर, और शाम 7 बजे भी आप सुन सकेंगे रजनीगंधा रात्रि 8:15 पर।

श्रोताओं, कल के कार्यक्रम में कल सुबह 6:05 पर आराधना सुनेगा। खेती की बात में 6:30 पर सामयिक सुझाव सुनेगा। करेला में रोग नियंत्रण वाचन स्वर नंद कुमार यादव का होगा। 6:35 पर रामचरित मानस कान सुनेंगे। चिंतन सुनेगा 6:45 पर सच बड़ा सच संपूर्ण सच विषय पर। आज सुबह 7:05 पर और सदाबहार नग में 7:40 पर। 7:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। इसमें सुनिएगा प्रसव के तुरंत बाद होने वाले अवसाद को समझें और सुरक्षित रहें विषय पर डॉक्टर यशिका कौर से पद्मामणि की बातचीत। प्रायोजक होंगे GI फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। माटी के स्वर 8:30 पर। सुबह 9:00 सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग प्रायोजक विधि एवं न्याय मंत्रालय।

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: श्रोताओं, कल के कार्यक्रम में कल रात 8 बजे सुनिएगा कैच द रेन कैंपेन और कोरबा की बदलती तस्वीर विषय पर नगर निगम आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आशुतोष पांडे से की गई बातचीत। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और 6:30 पर कानून की बात हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कानून की बात में सुनेगा किशोर न्याय विषय पर श्रीमती शालिनी सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता बाल विकास से ली गई भेंटवार्ता। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार छत्तीसगढ़ी में। अब आकाशवाणी के रायपुर केंद्र

0: केंद्र से ही रिले करेंगे।
1: प्रसारित किए जाएंगे।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग अभिषेक के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री ह रायपुर में सेन शक्ति सम्मेलन और केश शिल्पी सम्मान समारोह में होइन शामिल। खाद्य मंत्री ह आज रायपुर में स्वचालित अनाज वितरण मशीन यानी ग्रेन एटीएम के करीन वर्चुअल शुभारंभ और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में 10 अगस्त के प्रदेश में 1 से 19 बछर के लैका और किशोर किशोरी मल्ला खवाए जही एल्बेंडाजोल के दवाई। अब समाचार विस्तार ले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ह आज रायपुर में रखे गए सेन शक्ति सम्मेलन और केश शिल्पी सम्मान समारोह में शामिल होइन। ए मौका में ओमन सेन समाज के भवन बनाए बर 50 लाख रुपया देहे के और संत शिरोमणि सेन महाराज के नाव में नवा रायपुर में एक ठिन चौक के नामकरण करे के घोषणा करिन। कार्यक्रम ल संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री ह कहिन कि सेन समाज ह सनातन परंपरा और सामाजिक समरसता के मजबूत आधार हवय। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ह आज रायपुर में स्वचालित अनाज वितरण मशीन यानी ग्रेन एटीएम के वर्चुअल शुभारंभ करिन। रायपुर के बिरगांव, बिलासपुर और दुर्ग जिला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ग्रेन एटीएम के शुरुआत करे गए है। श्री बघेल ह कहिन कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस ल आधुनिक और पारदर्शी बनाए बर ग्रेन एटीएम शुरू करे गए है। छत्तीसगढ़ है देश के 5वां राज्य है जिहां राशन कार्ड धारक है चाउर निकाले बर एटीएम के उपयोग कर सकी। ग्रेन एटीएम की सुरक्षा बर सीसीटीवी कैमरा और सुरक्षा कर्मी के व्यवस्था घलो करेगे है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में 10 अगस्त सम्मार के प्रदेश में 1 से 19 बछर तक के लैका और किशोर किशोरी मल्ला एल्बेंडाजोल के दवाई खवाई जही। एकर बर सरकारी और प्राइवेट स्कूल, आंगनबाड़ी और आने आने संस्था मन के माध्यम ले दवाई खवाए के व्यवस्था करे गए है। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता, शिक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन के निगरानी में ये दवाई खवाई जही। फिर कोनो लैका अगर 10 अगस्त के कुछ कारण ले दवाई नहीं खाए पाही तो ओला मापअप दिवस 17 अगस्त सम्मार के दिन कृमिनाशक दवाई खवाई जही। अभियान में प्रदेश में 1,10,00,000 लैका और किशोर किशोरी मल्ला एल्बेंडाजोल के खुराक देके लक्ष्य रखे गए है। प्रदेश में हर घर तिरंगा और वंदे भारत अभियान के तहत 17 अगस्त तक राज्य स्तरीय देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित होगी। 7 से 15 अगस्त तक वंदे मातरम गायन, 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान और 14 अगस्त के विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाए जही। उन्हें बीजापुर जिला में 7 अगस्त ले हर घर तिरंगा अभियान के शुरुआत हो गए है। कलेक्टर विश्वदीप और पुलिस अधीक्षक उमेश प्रसाद गुप्ता हा कीर्ति चक्र ले सम्मानित अमर शहीद सोढ़ी नारायण के घर में उकर परिवार मल्ला तिरंगा दे के ए अभियान के शुभारंभ करिन। इति धमतरी जिला में आज साइकिल तिरंगा यात्रा निकाले गिस। जिला प्रशासन डहर ले आयोजित ए यात्रा में अधिकारी कर्मचारी, युवा, विद्यार्थी और आने आने सामाजिक संगठन मन के प्रतिनिधि के संगे संग आम नागरिक मन हिस्सा लेन। ए दौरान राष्ट्रीय एकता, स्वस्थ जीवन शैली, पर्यावरण संरक्षण और नशा मुक्ति के संदेश देगी। प्रदेश में स्वच्छता दीदी मन कोती ले आने आने मांग ल लेके पाछू 1 अगस्त ले शुरू हुए हड़ताल ल राज्य सरकार ह कड़ा रुख अपनाए है। राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी सुडा ह सबो नगर निगम आयुक्त, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मन ल निर्देश जारी करत हुए कहे है कि अनुबंध के शरत अनुसार हड़ताल में शामिल हुए स्व सहायता समूह के अनुबंध ल खत्म करे और संबंधित सदस्य के सेवा समाप्ति के कार्यवाही करे जा सकत है। पत्र में ये घलो कहे गए है कि अगर हड़ताल के सेती कोनो निकाय में साफ सफाई नहीं होही तो निकाय प्रमुख के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करे जा सकत है। सबो नगरी निकाय ला निर्देश दे गए है कि अपन क्षेत्र में हर हाल में सफाई व्यवस्था बनाए रखे जाए। योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग और IIM रायपुर के बीच एक समझौता ज्ञापन ऊपर हस्ताक्षर हो है। AMOU के तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, नीति अनुसंधान, परामर्श, डेटा एनालिटिक्स, शोध और दस्तावेजीकरण समेत आने आने क्षेत्र में सहयोग करे जाही। उन्हें सरकारी अधिकारी मन बर नेतृत्व विकास, मिड कैरियर एग्जीक्यूटिव और कस्टमाइज मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित करे जाही। एकर अलावा इकोनोमेटिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक पॉलिसी

0: नेतृत्व और प्रबंधकीय कौशल जैसन क्षेत्र में घलो प्रशिक्षण देवा जही। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज हा 1235 पद में भर्ती बर विज्ञापन जारी करे है। एमा सहायक अभियंता ले लेके कनिष्ठ अभियंता और संयंत्र परिचारक ले लेके डेटा एंट्री ऑपरेटर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर और स्टाफ, विधि अधिकारी, वित्त अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी जैसन पद शामिल है। आवेदन और परीक्षा तारीख के विस्तृत जानकारी अलग ले जारी करे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा था। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़वो बाचे समाचार कोती। स्कूल शिक्षा विभाग ह शिक्षक मन के स्थानांतरण न लेके एक आदेश जारी करे है। विभागीय स्तर में तैयार करे गए सूची में 700 शिक्षक मन के ट्रांसफर करे गए है। स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालय मन के शैक्षणिक व्यवस्था और पढ़ाई लिखाई पर कोई भी प्रभावित नहीं होए से पहले स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालय मन के शैक्षणिक व्यवस्था और पढ़ैया लयिका मन के लाभ ला सबले पहली प्राथमिकता दे गए है। एकर संगे संग शिक्षा विभाग कोती ले आने आने राज्य में लागू ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणाली मन के अध्ययन घलो करे जावत है। स्कूल शिक्षा विभाग ह कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालय मन में कर्मचारी मन के कमी दूर करे बर स्कूल के गैर शैक्षणिक कर्मचारी, लिपिक और भृत्य मन के प्रतिनियुक्ति के व्यवस्था करे है। विभाग है एकर बर प्रक्रिया तय करत हुए निर्देश जारी करे है। आवश्यकता आधार में रिक्त पद मन के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव भेजे जा सकी। संगे संग ए सुनिश्चित करे जाही कि कोनो भी स्कूल के व्यवस्था प्रभावित झन होवे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ह काली रायपुर में बाढ़ आपदा प्रबंधन के तैयारी लले के कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी। एमा सबो जिला के आपदा प्रबंधन अधिकारी मन ला बाढ़ ले निपटे बर जरूरी दिशा निर्देश दे गए है। राज्य में 18 अगस्त ला टेबल टॉप एक्सरसाइज और 20 अगस्त के मॉक एक्सरसाइज होही। बैठक में आने आने विभाग के समन्वय, राहत और बचाव काम के तैयारी के समीक्षा घलो होही। आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश डहर ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संध्या 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। एक कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के सबो आकाशवाणी केंद्र एके संग रिले करही। एदारी के अंक में आप मन नारायणपुर जिला के गतिविधि के बारे में जानकारी सुनिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त ह प्रदेश के शासकीय और निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में भर्ती के पहली काउंसलिंग पर ऑनलाइन आवेदन मंगाए है। आवेदन ल निर्धारित फीस के संग 9 अगस्त ले 16 अगस्त तक भरे जा सकत है। ऑनलाइन आवेदन ले जुड़े जानकारी विभाग के वेबसाइट में उपलब्ध हवे। जशपुर पुलिस ह एक पूर्व माओवादी ल मुंबई ले गिरफ्तार करे है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 महीना पहली बुमतेल सरना टोली जंगल ले पुलिस ल चकमा दे के इंसास राइफल और आने हथियार ल छोड़ के भाग गए रहिस। पुलिस ह बतायन कि गिरफ्तार आरोपी ह पहली नक्सल संगठन के सदस्य रह चुके है और ओखर ले हथियार मन के बारे में जरूरी जानकारी मिले है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में 18 ले 21 अगस्त तक 26वां राज्य स्तरीय साले क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन करे जाही। ये प्रतियोगिता में प्रदेश के सबो संभाग के 14 ले 19 बच्छर के लगभग 440 खिलाड़ी भाग लिही। प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक, क्रिकेट, ताइक्वांडो और कबड्डी जैसन खेल आयोजित होही। आखिरी में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। मुख्यमंत्री हा रायपुर में सेन शक्ति सम्मेलन और केश शिल्पी सम्मान समारोह में होल शामिल। खाद्य मंत्री हा आज रायपुर में स्वचालित अनाज वितरण मशीन यानी ग्रेन ATM के करिन वर्चुअल शुभारंभ और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में 10 अगस्त के प्रदेश में 1 ले 19 बच्छर तक के लयिका और किशोर किशोरी मन ला खवाए जही एल्बेंडाजोल के दवाई। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम, ईमेल करें, गीत सुनें।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनो में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल स्वागत। ईमेल मिले हैं आप सभी के कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता प्रियाली पार्थ, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य, सुच्चा पाठक, जयपाल यादव, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया, नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम, अर्णव, दुर्गेश्वरी, राखी, तृप्ति जायसवाल, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, भाटापारे से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चौहाराम वर्मा, सूरज पारेकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, सादुर शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला, आरती, कुमकुम, गुड़िया, बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू, रजनी, प्रियंका देवांगन, पजोनिया जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, फाजिलका पंजाब से विनोद, मायल, सीमा, लक्षिता, यसिका, विद्या देवी, पूना जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता, अरुणा, सुलोचना, चेतन, भगत, आप सभी की फरमाइश पूरी कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं जुदाई फिल्म का गीत अलका याग्निक और अभिजीत के स्वरों में समीर का गीत नदीम श्रवण की तर्ज़।

जुदाई फिल्म का गीत आपने सुना अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में, और अगला गीत मैं हूं ना फिल्म का शीर्षक गीत है। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ें हैं, जावेद अख्तर की शब्द रचना, अनु मलिक की धुन। और इस गीत के लिए ईमेल पर फरमाइशें आप सभी की। कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, राजे जाधव, जय, संचित, प्रथमेश, सर्वद, प्रणाली, सानवी, हर्षता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा, ईशान, पूजा परिहार। बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम। अमरावती से हीरामन शेंडे, शीला देवी, सिद्धार्थ गोंडाने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सहिता, प्रिंस, एकांश। बिलाईगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल, प्रियांश, भाव्या। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, जोई, यामिनिया और उमा तिवारी। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवहानकर, निर्मला, विशाल नवहानकर। जो पेश है मैं हूं ना फिल्म का ये गीत।

दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल मेहरा कुणाल मेहरा, तेलंगाना मोहंगेर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन यूसुफुद्दीन, पलारी से नितेश कुमार देवांगन दुर्गा प्रसाद पराग पुनाराम देवांगन कृष्णा देवांगन, खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा घुरनी करिश्मा सुमार साय कलेश्वर साय सुखराम हीरामणि ऐश्वर्या पैकरा, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन मंगलाबेन राजेंद्र शाह, पिपरलोट सरगांव से दीपेश वर्मा पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, लच्छनपुर से रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया नमन और अपार ढिंगिया, तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम जया जगेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र मोहन सिंह सहोदरी मनमोहन सिंह और गिरजाबाई मरकाम। सुनवा रहे श्रोताओं आप सभी को किशोर कुमार के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा गीत, एस टी बर्मन की तर्स आराधना फिल्म का ये गीत है।

0: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: ईमेल करें गीत सुनिए, आप सुन रहे श्रोताओं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। बागबहरा भदरसी के इन श्रोताओं का ईमेल मिला है। पन्ना लाल सेन, खुशबू तारा, कौशल सेन, देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी मनीष पवार, लघान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर कचरीबाई, दीपक जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, लक्षनपुर से विश्वनाथ, पंकज, तिरुपति साहू, ततरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, अनुराग मोहन, सावतपुर से ऋषि, रितेश कंचन, माही सेन, तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया आयान, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी, हिमांश, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति ख्याति, नवाशहर पंजाब से गगनदीप तृप्ता, प्रियंका प्रशांत, प्रियम वामिका, वाणी थांदी, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी, हमीरपुर बुंदेलखंड से रामशरण, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक और पूजा खटक, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, चीनू और आसमा, छोटी बलिया मुंबई से अहमद भाई, दुखनी, सदफ, आजू, जूही, इकबाल, इमरान अहमद, धुर्राबांदा भाटापारा से प्रमोद साहू,

देव कुमार, नवीन युवराज साहू, संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, धमतरी से रमचंद माखीजा, काफिर सविता माखीजा, स्वाति माही, पूजा छुटकी, शरद डोडवानी, हिसार से राजकुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल यशस्वी, खंडवा से संजय, ममता और किट्टू, महाराष्ट्र से नासिर शेख, राजा नासिर, साजिद शाहिद, भाटापारा से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला, लोकेश जोशी, आकाश शर्मा, अंकिता लक्ष्मी ध्रुव, वैदेही जोशी और हंसिका जोशी। सुनिए अपना फन फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: अपनापन फिल्म के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचारों के लिए जुड़ेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।
1: 4 बजे मैं सोया था, 5 बजे उठ जागा, अरे 4 बजे मैं सोया।
2: रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ।

0: जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन और केश शिल्पी सम्मान समारोह में हुए शामिल। स्कूल शिक्षा विभाग ने 700 से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 10 अगस्त को बच्चों और किशोर किशोरियों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की दवा। अब समाचार विस्तार से। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज प्रदेश के 3 स्थानों में स्वचलित अनाज वितरण मशीन अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये ग्रेन एटीएम रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले में शुरू किए गए हैं। ग्रेन एटीएम के माध्यम से राशन कार्डधारी हितग्राही अब अपनी सुविधा के अनुसार चावल प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए मशीन के स्क्रीन पर हितग्राही को अपना आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद हितग्राही निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों में राशन लेने के लिए लगने वाली कतार और समय की बाध्यता से राहत मिलेगी। इसके तहत छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारियों के साथ ही अन्य राज्यों के राशन कार्डधारी भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। ग्रेन एटीएम के भंडारण की क्षमता लगभग 2500 किलोग्राम है। गौरतलब है कि ग्रेन एटीएम संचालित करने वाला छत्तीसगढ़ देश का 5वां राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन और केश शिल्पी सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सेन समाज को सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए प्रदान करने और

संत शिरोमणि सेन महाराज के नाम पर नवा रायपुर में चौक का नामकरण करने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेन समाज सनातन परंपरा और सामाजिक समरसता का मजबूत आधार है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। विभागीय स्तर पर तैयार की गई सूची में 700 शिक्षकों के स्थानांतरण किए गए हैं। स्थानांतरण प्रक्रिया में विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों के हित को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा अन्य राज्यों में लागू ऑनलाइन स्थानांतरण प्रणालियों का अध्ययन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टर और संभागीय आयुक्त कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए स्कूलों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, लिपिक और भृत्यों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की है। विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया तय करते हुए निर्देश जारी किए हैं। आवश्यकता होने पर रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जा सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्कूल की व्यवस्था प्रभावित न हो। प्रदेश में स्वच्छता दीदियों द्वारा अपनी मांगों के संबंध में बीते 1 अगस्त से जारी हड़ताल को लेकर राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य शहरी विकास अभिकरण ने सभी नगर निगम आयुक्त और नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार हड़ताल में शामिल स्वयं सहायता समूह के अनुबंध को समाप्त करने और संबंधित सदस्यों की सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जा सकती है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि हड़ताल के कारण किसी निकाय में सफाई व्यवस्था बाधित होती है तो संबंधित निकाय प्रमुख के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्र में हर हाल में सफाई व्यवस्था बनाए रखें। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज ने 1,235 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें सहायक अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता और संयंत्र परिचारक से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर, चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, फायर ऑफिसर्स और स्टाफ, विधि विभाग, वित्त अधिकारी, सुरक्षा विभाग तक के पद शामिल हैं। आवेदन और परीक्षा तिथि का विस्तृत विवरण अलग से जारी किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त ने प्रदेश के शासकीय और निजी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ 9 अगस्त से 16 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की वर्ष 2023 में पाटन विधानसभा चुनाव में हुई उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज करने की अपील को अस्वीकार कर दिया है। गौरतलब है कि भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने हाईकोर्ट में दायर एक चुनाव याचिका में आरोप लगाया है कि बीते विधानसभा चुनाव में मतदान से एक दिन पहले भूपेश बघेल ने रोड शो किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की अपील को खारिज करते हुए कहा है कि तथ्यों की जांच साक्ष्य के आधार पर हाईकोर्ट में ही होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 10 अगस्त को प्रदेश में 1 से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। इसके लिए शासकीय और निजी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से दवा खिलाने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी में दवा खिलाई जाएगी। कोई बच्चा 10 अगस्त को किसी कारणवश दवा नहीं खा पाता है तो उसे मॉपअप दिवस 17 अगस्त को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश में 1,10,00,000 बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजोल की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में हर घर तिरंगा और वंदे मातरम अभियान के तहत 17 अगस्त तक राज्य स्तरीय देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित होंगे। 7 से 15 अगस्त तक वंदे मातरम गायन, 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान और फिर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाएगा। वहीं धमतरी जिले में आज साइकिल तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस यात्रा में अधिकारी, कर्मचारियों, युवाओं, विद्यार्थियों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। भिलाई में 19 और 20 अगस्त को अखिल भारतीय रेडियो श्रोता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक परसराम साहू ने बताया कि इस सम्मेलन में देशभर से 500 से अधिक रेडियो श्रोता, आकाशवाणी केंद्रों और कम्युनिटी रेडियो के उद्घोषक शामिल होंगे। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में रेडियो सेट, छत्तीसगढ़ी गहने, व्यंजन, सिनेमा, साहित्य, पेंटिंग और बस्तर आर्ट

की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में नारायणपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जशपुर पुलिस ने एक पूर्व माओवादी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 2 महीने पहले बूमतेल सरना टोली जंगल से पुलिस को चकमा देकर इंसास राइफल समेत कई हथियार छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पूर्व में नक्सल संगठन का सदस्य रह चुका है और हथियारों के संबंध में उससे महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जांजगीर चांपा जिले की नवागढ़ पुलिस ने काले कागज को असली नोट बनाने का झांसा देकर 50,000 रूपये की ठगी करने के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया और फोन कॉल के जरिए लोगों से संपर्क कर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से केमिकल पाउडर, काले रंग के कागज और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में 18 से 21 अगस्त तक 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी संभागों के 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 440 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के तहत जिम्नास्टिक, क्रिकेट, ताइक्वांडो और कबड्डी जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने पुनर्वास नीति के तहत नक्सल हिंसा से पीड़ित 15 परिवारों के लिए 2,25,00,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। राज्य शासन ने भारतीय वन सेवा के 24 अधिकारियों की नए पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें कई जिलों के वन मंडल अधिकारी सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के किसान खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा 14 अगस्त तक करा सकते हैं। भिलाई के पावर हाउस स्थित आदर्श शासकीय आईटीआई में 10 अगस्त को सुबह 9:30 बजे से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया जाएगा। कांकेर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना के तहत एथलेटिक्स खेल के लिए प्रतिभा चिन्हांकन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के बालक बालिकाएं और छात्र छात्राएं 15 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकते हैं। और गोबरा नवापारा में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार एक आरोपी को जेल ले जाते समय आरोपी के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हमला करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने आज रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम का वर्चुअल शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में आयोजित सेन शक्ति सम्मेलन और केश शिल्पी सम्मान समारोह में शामिल हुए। स्कूल शिक्षा विभाग ने 700 से अधिक शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जारी किए। और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 10 अगस्त को बच्चों और किशोर किशोरियों को खिलाई जाएगी एल्बेंडाजोल की दवा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने का शेष भाग।

कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत श्रोता हूँ। और आप सभी के ईमेल हैं हमारे हाथों में, अमरावती के श्रोता हैं हीरामन शेंडे, शीला देवी, सिद्धार्थ गोंडाने, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, लोरमी चचेड़ी से कमलकांत मरा।

मरावी, प्रमिला नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी, सहारनपुर चंद्रनगर से सुरेश नारंग, आशु सोनाली, राजकोट से जगदीश प्रवीण, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन, हेमंत नामदेव, धर्मदास पाधवानी, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। अनोखी अदा फिल्म का गीत लीजिए सुनिए, मजरूह का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज पर किशोर कुमार के स्वर में ये गीत।

कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, दयापुर बावली से गजानन, नवदीप, विश्वदीप, अवंतिका, कुम्हार गली कोलगांव से पांडू, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश, चंदन, पांडुरंग कुम्हार, बुलढाणा वर्षिंगी से अमोल मानकर, शोभा ताई, दीपाली, श्लोक कुमार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल, ईशांत, पूजा परिहार, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग, बलौदा से दिलहरन, अंजलि, समृद्धि, आनंद पटेल, गुजरात से प्रवीण सोनी, जगदीश जौहरी, कुम्हारगली श्रीरामपुर से अशोक तले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत श्रेया घोषाल के स्वर में लीजिए पेश है, समीर का गीत नदीम श्रवण।

यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार, अर्पिता, हनुमानगढ़ से रज्जाक मोहम्मद, समीम इमरान खान, इरफान, जिशान खान, सहारनपुर से जॉन्डे केस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस टिकेस्ट्रो, नांदघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भागेश्वरी टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, बोरसरा नैला

प्रमोद कुमार, भीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, और एठीपारा भाटापारा से अनीता, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू, लुतरा खमरिया से नकुल शाह, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, नागपुर से प्रकाश, भारती, जानवी, वैष्णवी, हर्षल, रोहतक से सीताराम, बबीता बोध, निखिल कागड़ा, तन्वी बोध, खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक, जियाउल हक डावर। सुनवा रहे श्रोताओं आप सभी को जब वी मेट फिल्म का गीत उस्ताद राशिद खान की आवाज में, इरशाद कामिल की शब्द रचना है, संदेश शांडिल की धुन।

फ्लैट नंबर 9 इस फिल्म का गीत लीजिए पेश है मुकेश के स्वर में, मजरूह का गीत, उषा खन्ना का संगीत और फरमाइश ईमेल पर मिली हुई आप सभी की। नुत्रा खमरिया से अकरम अमीन अर्श आदि का, पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, रिया रोड राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति ख्याति, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, रिकेश, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू, पैठण से सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोना, सिया जाधव, गंडई पंडरिया से पवन कुमार, प्रभा देवी, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र, रौनक सेन, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ, रसीद वारसी, बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, जमानिया से एसपी जायसवाल, डिम्पल, आशुतोष, अभिनव जायसवाल। डीजे सुनिए मुकेश के स्वर में ये गीत।

गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम, गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गोकलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर सीताराम कांगड़ा, अर्चिका बोध, तमन्ना कांगड़ा, महाराष्ट्र से रूपेश महेश, प्रज्ञेश संघई, जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मन्नत, भरत कंवल साहनी, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी, नीरज शुभम, सौरभ, पांडरकवड़ा से अनिल उषा, अनुश्री धनश्री, जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नवेद अजरा तबस्सुम, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक और सीमा साहू। लीजिए पेश नमक हलाल फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान के लिखे गीत की धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए बेताब फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी वर्मन की धुन और फरमाइश आप सभी की। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, डोंडी लोहरा बालों से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया, अलकबीर, पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, मैंडी, सौरव, सेना शर्मा, पटियाला पंजाब से पी सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, गुड़गहन से रामदुलारी, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, सोनू, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, चनहेटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार, रागिनी, मुस्कान, हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नादा हनुमान और उत्तम जमदाड़े। डीजे पेश है बेताब फिल्म का

बेताब फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आपने सुना। इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम की ही समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। आकाशवाणी रायपुर से अब रिले करेंगे किसान वाणी।

0: राम राम मोनिका।
1: राम राम निधि, उस संगे संग हमर जम्मो संगवारी मल्ला हमर दिनों के
0: राम राम। संगवारी हो, बेरा है किसानवाणी के प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: मोनिका, हमारे यहाँ के ज्यादातर मनखे खेती किसानी ऊपर निर्भर हैं।
1: हाँ
0: माने हमारे आय के स्रोत तो यही आए ना। पहले के बेरा मा किसाना संगी मन पारंपरिक तरीका ले खेती करत रहिन हैं।
1: जेमा मेहनत ज्यादा अलग है, उपज उतना नहीं मिलत रही से। काबर के पारंपरिक तरीका मा हमन मौसम आधारित खेती करत रहे।
0: हाँ सिरतुन बहिनी, तोर गोट ला सुन के जुन्ना बेरा सुरता आगे। पहली के बेरा मा नांगर बैला डेकी और पुराना तरीका के चलन रही से।
1: अब देख, सावन भादो मा पानी बरसे के भरोसा मा जुन्ना बेरा मा खेती हुआ। मैंने पहले की खेती किसानी सड़क भरोसा रहा है। अब बेरा बदल गए। आज सबो जगह मा नवा नवा विचार अपना के हमर संगी मना नवा तकनीक मल्ला अपनावत है।
0: बिल्कुल, ये नवा तकनीक के उपयोग तेजी ले हुआ थे। अब हर किसान संगवारी ये ला अपना के आमदनी ला घलो बढ़ावा थे।
1: भाई ऐसे है कि अब नवा तकनीक ला हमन जैसे सिंचाई के गोट करन, ओहू में अब ड्रोन तकनीक घला आ गई है। अब पहले हमन जैसे जानते रहे कि भाई टपक सिंचाई फवारा विधि है, पानी की बचत करे। अब ड्रोन तकनीक ले सिंचाई हो लगी है। मैंने देख, जरूरत हिसाब ले पानी के उपयोग हुआ थे। मैंने पानी जेन है ना उखर बर्बादी नहीं हुआ थे।
0: और गोट करें ड्रोन तकनीक के ना मोनिका, तो यहू मैं ड्रोन की मदद ले कमती बेरा मा बढ़न खेत मा दवाई कीटनाशक और खाद के छिड़काव बने ढंग से हम कर सकत हन।
1: सिरतुन बात है, यह तकनीक मा पानी संग दवाई दोनों के बचत होते, संगे संग किसान संगी मन के स्वास्थ्य ला घलोक नुकसान नहीं पहुँचे। देख पहले का होतरी इसे ना कि किसान संगवारी मल्ला मेहनत ज्यादा करेल पड़े और बेरा देख ले पड़े कि भाई ये बेरा में हमला छिड़काव करना है। अब ये है कि ओमन ना अपन स्वास्थ्य के ध्यान बने रख सकते, खास करके जब ओमन छिड़काव कराते।
0: और संगवारी हो, नवा तकनीक के आय ले खेती किसानी के काम बूता है ना तिन्हा सरलग हो गए है।
1: हाँ
0: ये जो ड्रोन तकनीक है, एकर ले खेत के ऊपर ले फोटो खींच के फसल में लगे बीमारी के पता घलोक चल जाते।
1: ये बड़ सुघर बात बताया से निधि थी। हाँ देख, माटी के बात करन तो एकर जिन माटी के स्वास्थ्य कार्ड होते, कबर की खेत में पहली माटी की जांच जरूरी हवे। भाई ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन पोषक तत्व है, कितना मात्रा में है, ककरो कमी है, तो हमला कौन प्रकार के दवाई उपयोग करना है। जैसे हम मन के मन है, कबू बीमार हो जाते तो सबने पहले तो जांच कराते ना भाई कि कहूँ का बीमारी है, पता तो चले
0: शरीर में कोनो चीज के कमी है ना के का है, और उस हिसाब से मैं उद्यम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही माटी के जांच घलो उतके जरूरी हो जाते, और ये तकनीक के मदद लिए किसान भाई मन हा खेत की माटी के जांच घलो करवाते। जिला माटी स्वास्थ्य कार्ड है ना, और एकर ले माटी मा कौन से पोषक तत्व के कमी है ओकर पता लगा के ओकर पूर्ति करते।
1: और आज के जन बेरा है ना निधि, एला हमन हा डिजिटल युग के थन। भाई देख, हर मनखे के हाथ मा मोबाइल है। मैंने लैका ले लेके सियान तक जम्मो जन मोबाइल के उपयोग करत है।
0: लेकिन मोनिका, मोबाइल के उपयोग को हम सही ढंग ले करबो त मोबाइल तो भाई हमर बर वरदान हवे। काहे हम मोबाइल मा जम्मो जिनिस के बारे में हम जानकारी पा जाथन। भाई गोड बात तो दुरिया मन के संग तो करबे करथन, फिर मोबाइल मा बहुत अकन ऐसा जिनिस है जिन हमर काम ला और हमर बेरा ला सरलग बनाते।
1: खास करके हम खेती किसानी के बात करबो ना निधि, तो मोबाइल में ना मतलब हर जानकारी हवे। अब जैसे देख, अभी एक थीन ऐप आते मेघदूत, दामिनी, ये मन मोबाइल ऐप है जिन मौसम के पहले ही जानकारी दे देते। भाई ऐसे नहीं है कि मौसम के एकदम सटीक जानकारी ही मिली, ताजा हो जाते ना कि हाँ इसी इसी मौसम होगी तो हम उस हिसाब से तैयारी करके रखें।
0: मोनिका, ते अभी शुरुआत में गुड बात करत रहे ना कि माटी की जांच में पता चल जाते कौन पोषक तत्व की कमी है, का कर अधिकता है। देख कोनो भी मौसम रहे, हम अपन खान पान के कैसे ध्यान रखथन, हमारे शरीर बने हुई तो हम काम बुता बने कर सकते हैं। वैसे माटी के घलो आहार पोषण के ध्यान रखना हमारे कर्तव्य।

0: और येमा ओकर पोषक आहार के येमा पोषक आहार के ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाते कबर की बेरा बेरा मा हमर जानकार मन घलो हमने मतलब जानकारी देत रही थे कि हमर भुइया बर कौन कौन से खाद अच्छा माने गए है। जैविक खाद के तो हमन उपयोग करबे करथन, उही मा एक ठन गोट आते हरी खाद।
1: मैंने ते बात करत है हमारे आज के क्रम, आज की सलाह के
0: बने समझेस। ता आज के क्रम ला तो आप मन जानेगे और संगवारी हो कि हमर जो क्रम है हरी खाद विषय ले जुड़े है और आज के विषय घलो है हरी खाद का महत्व। ये विषय के संबंधित जानकारी देवत है डॉक्टर प्रज्ञा पांडे, वैज्ञानिक शस्य विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर ले। और आप मन संग गुड बात करें मोनिका जैन।
1: सुनथन और आप सुनवाथन ये सुगर सुगर जानकारी। संगवारी हो, खेती किसानी में खाद के बड़ महत्ता होते भाई। ऐसे है कि हमार जिन फसल की गुणवत्ता है उखर बढ़वार खातिर हमार माटी में जिन खाद होते वो बड़ उपयोगी होते। और खाद अलग अलग प्रकार के होते, आप मन जानता हो गला कि जैसे गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है। तो आज हमन गुड़ बात करबो हरी खाद ऊपर और जानबो कि एकर का महत्ता है। और ये विषय में जानकारी दे खातिर आज हमारे संग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रज्ञा पांडे जी है। आप मन है वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर मा। डॉक्टर प्रज्ञा पांडे जी अपन के स्वागत है हमारे क्रम मा।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हमारे विषय है कि हरी खाद के महत्ता, तो सबसे पहले तो यही बताते हो कि हरी खाद का होते।
2: जी जी मैडम, हरी खाद एक ऐसी फसल होती है मैडम जिसमें खेत में हरी अवस्था में ही हमें जुताई करके मिट्टी में उसे मिला दिया जाता है। इसका उद्देश्य अनाज प्राप्त करना नहीं होता बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना होता है। ढेंचा, सन, लोबिया, सिसबेनिया, इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की हरी खाद की फसलें हैं जिनका उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, एक हरी पत्ती खाद यूं नाम सुना माथे, तो ये का होते?
2: जी क्या है मैडम कि किसान भाई चाहे तो हरी खाद अपने खेत में उगा करके उसे जमीन में मिला सकते हैं, परंतु जब समय निकल गया हो तो वे क्या करें, तो उस समय हरी पत्ती खाद का उपयोग किया जाता है। या खेत के बाहर जो भी उपलब्ध पेड़, झाड़ी या अन्य पौधों की हरी पत्तियां होती हैं या कोमल टहनियां होती हैं उन्हें ला करके खेत में मिलाया जाता है। हमारे यहाँ नीम, ग्लैरिसीडिया, करंज, महुआ, अगस्ता जैसे सिसबेनिया भी कहते हैं, सुबबूल, आग के पौधे की पत्तियों को हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि कई प्रकार के खरपतवारों को भी हरी खाद के रूप में या हरी पत्ती खाद के रूप में जमीन में मिलाया भी जाता है।
1: ये तो बहुत सुखर बात बताया आप मना। अच्छा, हमारे जिन किसान संगवारी मन है अगर ये हरी खाद ला उपयोग करते तो एक हरो मल्ला का लाभ मिलते?
2: हरी खाद के अनेक लाभ व उपयोग हैं। इससे मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है, मिट्टी आपकी भुरभुरी बनती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है, लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है, रासायनिक उर्वरकों की उपयोग की क्षमता बढ़ती है और मिट्टी का तापमान और नमी भी बेहतर बना रहता है। साथ ही फसलों की जड़ें अच्छी प्रकार से विकसित हो पाती हैं और लंबे समय तक मिट्टी की उत्पादकता बनी रहती है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आप मन जब हरी पत्ती के बात बता रहे हो खाद खातिर, तो आप मन जिन जिन पत्ती मन के वृक्ष मन के नाम ले, अब अगर हम सिर्फ खाद की बात करें हरी खाद की, तो इमा कौन कौन से फसल हम ले सकते हैं जिनमें अच्छा माने जाते?
2: जी मैडम, हरी खाद के लिए भारत में मुख्य रूप से ढेंचा और सनई बहुत लोकप्रिय हरी खाद है। इसके अलावा लोबिया, सिसबेनिया, क्लस्टर बीन जिसे हम चुटचुटिया गवार फली भी कहते हैं, इसको भी हरी खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। कम समय में अधिक जैविक उत्पादन देने वाली और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में जोड़ने वाली ये हरी खाद बहुत उपयोगी होती है। यदि हम देखें तो सिसबेनिया जो कि काफी पॉपुलर हरी खाद है वो लगभग अपने 60 दिन के जीवन काल में 23 टन प्रति हेक्टेयर तक ग्रीन बायोमास या ड्राई मैटर प्रोवाइड करती है, प्रदान करती है और लगभग 133 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक भूमि में देती है। इसी तरह से सन हेम्प अपने 60 दिन के अवस्था में 30 टन प्रति हेक्टेयर तक ड्राई मैटर या सूखा मैटर प्रदान करती है और साथ में 134 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक प्रदान करती है। जो हम बरबट्टी या काउपी बोलते हैं वह भी 60 दिनों में लगभग 23 टन तक ड्राई मैटर और 74 किलोग्राम नाइट्रोजन इस भूमि को प्रदान कर सकती है।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो अपन बड़ विस्तार ले और सुघर जानकारी हमारे संगवारी मल्ला देवत हो कि कौन प्रकार के हरी खाद के हम उपयोग कर सकते हैं।
2: जी
1: फिर हमारे खेत में हरी खाद ला कब मिलाना चाहिए?
2: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए

0: हम किसानों को ये याद रखना चाहिए कि जो हरी खाद है वो सामान्यतः 45 से 60 दिनों की अवस्था में तैयार हो जाती है। फूल आने से पहले मिट्टी में इसे पलट देना चाहिए, क्योंकि फूल आने से पहले की अवस्था में पौधों में नमी की मात्रा पर्याप्त होती है, वे जल्दी सड़ने की क्षमता रखते हैं, और बहुत देर अगर हम कर देंगे, अगर उनमें फूल आ जाते हैं तो पौधे कठोर हो जाते हैं और उन्हें सड़ने में अधिक समय लगता है। इसी वजह से लगभग 45 से 50 दिनों में खेत में इसकी जुताई कर देनी चाहिए, पलट करके इसे दबा देना चाहिए।
1: और अगर हम धान की बात करें, काबर की देखो हमारे छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा धान की खेती होते,
0: जी,
1: तो अगर हम धान की बात करें तो इमा हरी खाद के काम आता है।
0: धान की खेती में हरी खाद का विशेष महत्व है। यदि धान की रोपाई के पहले ढेंचा या सनई जैसी फसल खेत में उगाई जाती है, जो लगभग मई में उगाई जा सकती है, और 45 दिन की अवस्था में जून में इसे दबा करके सड़ा करके फिर उसमें धान लगाया जा सकता है, तो नाइट्रोजन की उपलब्धता बहुत बढ़ जाती है। मिट्टी तो नरम रहेगी ही, साथ ही धान की पैदावार भी अच्छी हो जाती है, और साथ ही इसमें रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता कम पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, आप मन जैसे हरी पत्ती के जिन खाद होते ओकर विषय में हमें बताया, तो ये विषय में थोड़ा कुन विस्तार ले बताते हो कि हम कौन कौन से पेड़ ऐसे है जेखर पत्ती के हम उपयोग करके हरी पत्ती खाद बना सकते हैं।
0: जी, हमारे देश में कई पेड़ों की पत्तियां हरी खाद के लिए उपयोग की जाती हैं, जैसे कि नीम, ग्लेरिसीडिया, करंज, महुआ, सूबबूल, आक। इन सभी की पत्तियां जमीन में जल्दी गल जाती हैं और पौधों को आवश्यक पोषण तत्व प्रदान करती है। जैसे कि यह देखा गया है कि अगर हम सूखी हुई एयर ड्राई बेस पर यदि हम न्यूट्रिएंट कंटेंट या नाइट्रोजन की फॉस्फोरस की और पोटाश की मात्रा अगर हम देखें तो ग्लेरिसीडिया में लगभग 2.5% तक नाइट्रोजन, 0.28% तक फॉस्फोरस और 4 से 4.5% तक पोटाश पाया जाता है। जो हमारा नीम है जो इतनी हमें छाया प्रदान करता है, वो भी लगभग 3% तक नाइट्रोजन, लगभग 0.28% तक फास्फोरस और 0.35% तक पोटाश देने की क्षमता रखता है। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि खरपतवार भी हरी खाद की तरह उपयोग होते हैं, तो जो गाजर घास है, अगर हम फूल आने की अवस्था के पहले उसे हम जमीन में हरी खाद की तरह उपयोग करेंगे, तो वो भी लगभग 2.5% तक नाइट्रोजन, 0.68% तक फॉस्फोरस और 1.45% तक पोटाश देने की क्षमता लगता है। इसके अलावा जलकुंभी, जो आप हमें विभिन्न तालाबों और नदी की जगहों पे देखी जा सकती है, उसे भी हरी खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, एक भ्रांति होती है कि हम जैसे दूसर प्राकृतिक खाद या फिर जिनमर जैविक खाद के उपयोग करत हैं, तो इकले रासायनिक उर्वरक के उपयोग के कम जरूरत पड़ती, तो ये हरी खाद के उपयोग करे में का ऐसे होते कि रासायनिक जिन उर्वरक है या खाद है एकर उपयोग कम हो है?
0: बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ऐसा ही होता है। हरी खाद रासायनिक उर्वरकों का पूर्ण रूप से विकल्प तो नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता को काफी हद तक कम कर सकता है। हरी खाद से चूंकि नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है, जैव कार्बन बढ़ता है, पोषक तत्वों का संरक्षण होता है और जो हम उर्वरक प्रदान करते हैं उसके उपयोग की दक्षता भी बढ़ती जाती है। इस वजह से अगर हम हरी खाद का लगातार उपयोग करेंगे तो उर्वरकों की आवश्यकता निश्चित रूप से कम हो सकती है।
1: जी, डॉक्टर प्रज्ञा पांडे जी, आप मन आए हमारे संगवारी मल्ला, इतना सुघर सुघर और विस्तार ले जानकारी बताए कि भाई हरी खाद का होते, एकर का महत्ता है, और हमन हमारे जैसे धान की खेती है इमा कैसे उपयोग कर सकथन, कौन प्रकार से उपयोग कर सकथन, ये सारी जानकारी खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैडम, नमस्कार।
2: संगवारी हो, हरी खाद के का महत्व है ये विषय के जानकारी अभी आप मन पायो डॉक्टर प्रज्ञा पांडे जी ले, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान विभाग इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर ले। बात करत रही ने मोनिका।
1: निधि, देख अभी हमन बातें करत रहे ना कि नवा तकनीक के उपयोग कर ले हमला कितना फायदा हुआ थे, फिर अभी जैसे अब ये हमारे विशेषज्ञ मन है बड़ सुघर जानकारी दिन कि हरी खाद के का महत्ता होते, एकर कैसे उपयोग करे जाते, तो यू एक प्रकार के नवा तकनीक छे।
2: हाँ, नवा तकनीक है, संगे संग देख बदलत बेरा संग अब हमन मल्ला रिकिम रिकिम की किस्म के पता चली है ना, ओकर बाद खाद के पता चली, फिर हमन आगे बढ़ गए रहे, जरूरत पड़े में हमन कीटनाशक और रसायन के तो उपयोग करबे करत रहे, फिर देख का होते जमीन के उर्वरा शक्ति ला हमर जैविक खाद हरी खाद मन बढ़ाते, तो मनखे है जानकार हुई कि हमर बर का चीज अच्छा है, हमर माटी बर का अच्छा है, ओ प्रकार ले हमन उद्यम करें।
1: अब देख जैसे अभी हमन ड्रोन के बात करत रहे कि जैसे खाद के छिड़काव करना है, उर्वरक के छिड़काव करना है, तो कतकोन वक्त हमन ड्रोन के उपयोग कर सकते हैं। अब बात तो जैसे है ना, सियान मनखे मन घलोक खाद के उपयोग करत रही ने, फिर का होत रही से ना कि खाद हमन कुछ जानन, जैसे गोबर खाद ला जानन या कोनो प्रकार के खाद कम जानन, अब ऐसे है कि खाद मन हर रासायनिक रूप ले ले है, तो रासायनिक खाद ला घला हमन जानते।

0: फिर हमारे संगवारी मन है ना बड़ जागरूक हो गए। भाई जागरूक मैं बार कहता हूँ कि देख संगवारी मन है पहली कहावत से कि रासायनिक खाद ज्यादा उपयोग करे, तो मन समझ गए कि भाई ये खर उपयोग ले माटी की गुणवत्ता कम होते।
1: और यहू हे मोनिका, माटी के गुणवत्ता तो कम होबे करे थे, संग में ओकल जिन फसल मिला थे चाहे कोनो फसल रहे ओका स्वाद में भी हमला अंतर देखे बर मिलिस।
0: स्वाद संग हमारे स्वास्थ्य में घलो के खर प्रभाव देखे बर मिले,
1: स्वास्थ्य संग हमारे पर्यावरण ऊपर घलो असर पड़ीस। मने कुल मिला के एक ठन जिनिस के कतका नुकसान है इला अब हर मनखे हर संगी है जान गे है।
0: खास करके देख कोनो भी चीज लेना जब हमन सीमित मात्रा में उपयोग करथन तो ओखर हमन ला लाभ मिलते। इसने हमारे संगवारी मन ये बात ला जानते कि रासायनिक खातु उर्वरक दवाई कीटनाशी के उपयोग तो करना है, फिर ओ की मात्रा सीमित होना चाहिए। और ये खातिर रोमन विशेषज्ञ मन ले सलाह लेते कि भाई कतका मात्रा में कब कतना कैसे उपयोग करना है। और यही बात ला हमारे जिन विशेषज्ञ है बड़ विस्तार ले बताएं जिन हमारे संगवारी मन सुनिन गुनिन। और मतलब तो ऐसे लगते है कि हमन ला ये विषय में हमन पाती यह चिट्ठी लिख के जरूर बताएंगे। निधि देख इतना सुघर जानकारी के बाद ना मैं हमारे संगवारी मल्ला तो एक बने बने गीत सुनवाता हूँ।
1: सुनवा
0: तो संगवारी हो सुनता ना आपो मल्ला सुनवाथन सावित्री कहा नकुल जायसवाल की गाई सुघर सुघर गीत ला।

0: संगवारी हो, अभी सुने ये सुगर सुगर की जिला गाय रही है सावित्री का हार और नकुल जयसवाल मन हा।
1: मोनिका, हमर संगवारी मन हा हमर आज की सलाह क्रम ला कहूं ध्यान लगा के सुने हो ही। तो आज के जो कृषक प्रश्न मंच के जिन प्रश्न है तेकर उत्तर ला झटकुन बता दिए।
0: भाई हमारे संगवारी मन हमारे कार्यक्रम ला बड़ ध्यान लगा के सुनते गुनते देख कतकासन पाती आते तहूं देखा तो बना।
1: हाँ, तो झटकुन हम संगवारी मला प्रश्न बता दी थन।
0: बिल्कुल बता दे।
1: संगवारी हो, लिख डरो हमार प्रश्न ला। हरी पत्ती खाद कौन कौन से पेड़ के पाना मनला उपयोग करके बना सकथन? एक घाव बता देवन। हरी पत्ती खाद कौन कौन से पेड़ के पाना मनला उपयोग करके बना सकथन?
0: और सही जवाब पर मेल आईडी में बता देता हूँ। मेल आईडी है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। अब निधि पाछू हफ्ता हमारे संगवारी मल्ले हमन का पूछे रहन बता दे।
1: पाछू हफ्ता जी हमन संगवारी मल्ले पूछे रहन मौसम आधारित जानकारी खातिर वेब पोर्टल ऐप कौन से है? जिसका सही जवाब है मेघदूत।
0: और सही जवाब विजया संगवारी मन के नामला मैं बता देता हूँ। आप मन है महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर गुड़िया और रियांश ठाकुर। पिपरिया ले हैं कमलकांत गुप्ता दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता। मदनपुर कवर्धा ले हैं श्रवण कुमार साहू योगेश और राहुल साहू। कोई ग्राम भंगी टोला ले हैं ननकाराम ध्रुवे जामुनबाई फिरत राम और मालती ध्रुवे मनहा। तो सही जवाब भेजैया जम्मू संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा
1: बधाई।
0: और निधि हमर कराना हलो किसान वाणी ले जुड़ी एक सूचना है तेला संगवारी मल्ला बता देता। संगवारी हो अवैया मंगलवार 11 अगस्त 2026 के प्रसारित हो या हलो किसान वाणी कार्यक्रम में इधरी के विषय हुई दुधारू पशुओं में होने वाले थाइलेरिया बीमारी की रोकथाम उपाय एवं टीकाकरण ये विषय में आप मन के समस्या और जिज्ञासा के समाधान खातिर हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हुई डॉक्टर दिनेश कुमार पटेल अतिरिक्त उप संचालक पशु चिकित्सालय भाटा गाँव रायपुर। आप मन अपन जिज्ञासा और शंका के समाधान पाए खातिर हमला फोन कर सकते हो। हमारे फोन नंबर है पहले फोन नंबर है 4003482 दूसरा फोन नंबर है 4003483 और तीसरा फोन नंबर है 4003484 रायपुर के एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के बेरा हुई 11 अगस्त 2026 के भिंगिया 11:30 ले 12 बजे तक और ये कार्यक्रम के प्रसारण हुई वही दिन माने मंगलवार के ही संध्या 7:30 मा। तो भाई संगवारी हो आप मन के फोन कॉल के अग्रह रही और सूचना ही चे सिरावा थे।

0: भारत के किसान हम,
1: किसान हम,
2: किसान हम।
3: ये रही इस किसान वाणी, प्रायोजक रही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। संगवारी हो, आप मल्ला मौसम विभाग ले मिली जानकारी दे देथन। प्रदेश में अवैया 24 घंटा में कतकुन जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना है। रायपुर के बात करन ता बदरी छाए रही और एक दो जगह में गरज चमक के संग में वर्षा होए के संभावना है।
4: और निधि हमला कृषि उपज मंडी ले जिन बाजार भाव मिले है तिल्ला संगवारी मल्ला बता देथन। संगवारी हो, धान ही 1845 रुपया ले 2175 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूं के भाव है 2430 रुपया ले 2465 रुपया प्रति क्विंटल और मक्का के भाव है 1560 रुपये प्रति क्विंटल। निधि देख, गोड बात करते करत पेरा घलो हो गए है जाए के, मने घड़ी के सुई है इशारा करत है कि हमला संगवारी मल्ले विदा ले लेना चाहिए। भाई संगवारी हो, जाए के पहली आप मल्ला बता देतन काली के कार्यक्रम। काली संध्या बेरा चौपाल माँ आज की बात माँ गोड बात करवो बने फसल खातिर पोषक तत्व और संग माँ जल निकासी प्रबंधन काबर जरूरी है। और फिर हो ही क्रम आज की सलाह और ये क्रम माँ जानकारी के विषय हो ही कि हल्दी के उन्नत खेती कौन प्रकार ले कर सकथन। बताही विशेषज्ञ चंद्रशेखर उग्रे जी, आप मनहा शोधकर्ता है महात्मा गांधी उद्यानिकी महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र साकरा जिला दुर्ग माँ। क्रम हो ही कृषक प्रश्न मंच जेमा बताबो आज के प्रश्न, पांचों हफ्ता के प्रश्न और सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नाम। हो भाई आप मल्ला जवाब घलोक बताबो हो, ओखर बाद गीत संगीत के मधुरता घलोक बगर ही त देवा विदा। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला मोनिका
3: और निधि के
1: राम राम, राम।

0: किसानवाणी आकाशवाणी रायपुर से रिले किए जा रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं। संसद समीक्षा अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: कार्यवाही की समीक्षा सुनिए, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मानसून सत्र का ये तीसरा सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग तथा अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि इस दौरान कुछ अहम विधेयकों को बिना चर्चा के या संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही, जिस कारण से कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 बजे शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक

2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया। मेघवाल ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही 20 जुलाई को सदन में यह विधेयक पेश किया था। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2:10 पर ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। कुछ सदस्यों ने तख्तियां दिखाई, जिस पर सभापति ने आपत्ति जताई। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति ने बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। हंगामे के बीच ही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण में वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ोतरी हुई है। मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा और नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने सदन की बैठक दोपहर 2 तक स्थगित कर दी। बैठक 2 शुरू होने पर पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखने को कहा। इस दौरान विपक्षी सदस्य पहले की तरह ही शोर शराबा कर रहे थे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक मुख्य रूप से कर प्रशासन को सुव्यवस्थित करने तथा आयकर कानूनों में आवश्यक बदलाव करने के लिए लाया गया है। उधर राज्यसभा में भी राम मंदिर चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण बैठक बार बार बाधित हुई। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा गठित ट्रस्ट के कुछ सदस्यों पर चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए सवाल किया कि प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियां आरोपों की जांच क्यों नहीं कर रही हैं। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया और राम मंदिर निर्माण का विरोध किया। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 तक स्थगित कर दी। सदन की बैठक 12 शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बैठक शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने से जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया, किंतु सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून को ठीक से लागू नहीं कर देश और लोकतंत्र के साथ धोखा करने का आरोप लगाया।

और दावा किया कि वर्तमान सरकार इन दोनों के सार्वभौमिक पंजीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को और संशोधित कर विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को कड़ा बनाना है। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही और उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी पहले जैसी स्थिति ही रही। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग दोहरा रहे थे। हंगामा देखते हुए अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने चर्चा और पारित करने के लिए बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। सदन ने हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक होते ही विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर करीब 2.5 घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है, जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे और अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के कारण विधेयक पर चर्चा नहीं हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एन के प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इसके बाद बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुए अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। सुबह 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री के बयान की मांग

0: को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच ही कुछ सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। सदन में हंगामा थमते न देख सभापति ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक पुनः शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और उपसभापति हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर बैठक दोबारा शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलू उठाए। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति पीएसी की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर इसे लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। सप्ताह के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांग दोहराते हुए नारे लगाने लगे। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतनराम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में यह विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 15वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल शुरू नहीं हो सके। राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद शून्यकाल शुरू कराना चाहा। विपक्षी सदस्यों के ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी और इसके बाद सदन में हंगामा जारी रहने पर करीब 5 मिनट के भीतर ही बैठक दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: इस सप्ताह संसद में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए पेश है रजनीगंधा।

रजनीगंधा के आज के अंक में आपका तहे दिल स्वागत श्रोताओं। आज आपकी हम सफर है मीनाक्षी। नमस्कार।

और रोमांटिक होता है, जो प्रेम की मिठास को और भी बढ़ा देता है। सावन की रिमझिम फुहारों के साथ पकौड़े और चाय का आनंद तो मज़ेदार होता ही है, लेकिन आज हम बातें करेंगे सावन की उस मनमोहक परंपरा की, जो हरियाली, उमंग और उत्सव का प्रतीक है। कांच की चूड़ियाँ, हरे कांच की चूड़ियाँ, रिमझिम फुहारों के बीच इन चूड़ियों की खनक बढ़ा देती है मेरे दिल की धड़कन। मौसम सावन का है और नशा है तुम्हारी यादों का। तुम नहीं तो सावन सावन नहीं।

श्रोताओं, सावन का महीना आते ही प्रकृति हरे रंग की चादर ओढ़ लेती है। खेत खलिहान, पेड़ पौधे और धरती का हर कोना हरियाली से भर उठता है। इसी हरियाली के स्वागत में महिलाएं हरे रंग वस्त्र धारण करती हैं और हरी चूड़ियां पहनती हैं। सावन सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन विभिन्न स्थानों पर होता है, जहां पर हम देख सकते हैं हरे रंग की वैराइटीज और फैशन के नए अंदाज, और सुन सकते हैं हरी कांच की चूड़ियों की खनक। कांच की चूड़ियां भी कमाल करती हैं, सावन के मौसम में बवाल करती हैं। छन से बजती हैं जब भी कलाई तेरी, धड़कने मेरी ही क्यों बेहाल करती हैं।

श्रोताओं, भारतीय परंपरा में हरा रंग खुशहाली, नई उम्मीद, समृद्धि और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। कई स्थानों पर विवाहित महिलाएं सावन में हरी चूड़ियां पहनकर परिवार के सुख, समृद्धि और मंगल की कामनाएं करती हैं। वहीं युवतियां भी सावन के उत्सव, झूलों, तीज त्यौहार और लोकगीतों के आनंद के साथ पहनती हैं चूड़ियां। स्कूल कॉलेज में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय पर्व की रंगारंग प्रस्तुतियां हों, हर अवसर पर श्रृंगार अधूरा है कांच की चूड़ियों के बिना। बरखा की रिमझिम में सजी सावन की रात है, चूड़ियों की खनक में छिपी कोई मीठी बात है, छन छन की आवाज़ से गूंज रहा है ये सावन।

सावन का सौंदर्य केवल बारिश में ही नहीं बल्कि लोकगीतों, मेहंदी की खुशबू, झूलों की रौनक और चूड़ियों की मधुर खनक में भी बसता है। हमारे देश की, अंचल की विविध सांस्कृतिक परंपराएं हमें प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश देती हैं। यही परंपराएं हमारे लोक जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। झुमके, चूड़ियां, पायल, गजरा, सावन का मौसम

श्रोताओं, सावन का महीना हमें संदेश देता है कि जैसे बरसात से धरती हरी भरी हो जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी नई ऊर्जा, नए उत्साह, नए सपने और नई उम्मीदें बनी रहें। नई उम्मीदों का, खुशियों का सावन भी हमारे जीवन में बरसता रहे। हरी चूड़ियों की खनक में है सावन का प्यार, बरसती बूंदों संग महके जीवन हर बार। रिश्तों में अपनापन, मन में नई उमंग रहे, हर मौसम में यूं ही खुशियों की बहार रहे।

0: गोरी है कलाइया हला दे मुझे हरी हरी चूड़िया
1: मुझे। श्रोताओं, आज के समय में जब जीवन की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, ऐसे में हमारे पारंपरिक उत्सव हमें अपनी संस्कृति, परिवार और प्रकृति से जुड़ने का अवसर देते हैं। यही हमारी विरासत है और यही हमारी पहचान। सावन की हरियाली आप सभी के जीवन में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाए, यही कामना है। गोरे हाथों में सजी नौ चूड़ियों की बहार, पिया के नाम से महकता है ये सिंगार।

0: रजनीगंधा के आज के अंक में बस इतना ही श्रोताओं, विदा दीजिए मीनाक्षी को, नमस्कार। रजनीगंधा आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को है। समाचारों के लिए अब जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने

0: इस समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा। और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ये पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी।
1: आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
2: आज हमारे अमरेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अमरेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। ये शहरी सहकारी बैंकों को 24 घंटे साइबर निगरानी और सुरक्षा सहायता प्रदान करेगा। श्री शाह ने देश के सभी सहकारी बैंकों से राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम में शामिल होने का भी आग्रह किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए UPI निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि UPI के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाममात्र दर से लागू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन एक सक्षम प्रावधान है जिसका उद्देश्य UPI की दीर्घकालिक स्थिरता, तकनीकी उन्नति और उभरते जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करना है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 300 GW का आंकड़ा पार कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया।

0: कि पिछले 12 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 400% की वृद्धि हुई है। श्री जोशी ने कहा कि यह आंकड़ा भारत की स्वच्छ ऊर्जा उपयोग की दिशा में वैश्विक प्रगति को दर्शाता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने देश में महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की शिरोमणि अकाली दल की मांग का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा और निष्पक्ष तथा समान परिसीमन सुनिश्चित करना होगा, जिससे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिले। शिरोमणि अकाली दल ने चंडीगढ़ में अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये मांग रखी थी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC और राज्य में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का मामला अब सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य सरकार और विभिन्न छात्र संगठनों के बीच बातचीत जारी है।
1: 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों पर कायम हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे और जब तक ठोस परिणाम सामने नहीं आता आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच राज्य सरकार ने विभिन्न छात्र संगठनों से बातचीत का सिलसिला तेज कर दिया है। कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद सरकार ने उनकी मांगों और सुझावों पर आगे निर्णय लेने की बात कही है। प्रशासन ने आंदोलन के मद्देनजर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रेलवे ने मध्य प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए रोजाना चलने वाली इटारसी मदन महल पैसेंजर रेलगाड़ी को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ी 5 घंटे से अधिक समय में 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये बगरा तवा, सुहागपुर और दूसरे स्टेशनों पर रुकेगी। ये आकाशवाणी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में भोपाल में 5 अगस्त से चल रही 11वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में आज भोपाल घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इसका उद्देश्य ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 10 ब्रिक्स सदस्य और 4 सहयोगी देशों सहित कुल 14 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
2: बैठक की शुरुआत केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के संबोधन से हुई। इसके बाद ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक और भोपाल डिक्लेरेशन के प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी। इसके साथ ही भोपाल में आयोजित ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक के प्रमुख कार्यक्रम भी संपन्न हो गए हैं। अब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सांची के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे विश्व धरोहर और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होंगे। कल यानी 9 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल भीम बैठका का दौरा करेगा, जहां वे भारत की प्राग ऐतिहासिक और प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से विपिन मिश्रा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस कॉन्फ्रेंस 2026 में CEO गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में नवाचार, नियामक उत्कृष्टता, घरेलू विनिर्माण, मूल्य श्रृंखला, बाजार पहुंच और निर्यात को मजबूत करने के दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, ताकि भारत को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सके। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के साथ वार्ता करने और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अपनी सरकार के निर्णय का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करता है, ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करेगा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो ईरान इसे जारी रखने के लिए बाध्य नहीं होगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया था कि ईरान के साथ संघर्ष जल्द ही समाप्त हो सकता है। श्री ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित चल रही वार्ताओं पर भी सकारात्मक परिणाम की आशा व्यक्त की है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने सरकारी कंपनी अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ी एक जहाज पर होर्मुज जलडमरू मध्य के पास हुई

0: ईरान के हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह घटना समुद्री आवाजाही की आजादी की गारंटी देने वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। उधर ओडिशा में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडरा रहा है। बैतरनी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से भद्रक और अन्य निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
1: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है, जबकि कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। भद्रक में सालंदी और बैतरणी नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा फिर से पैदा हो गया है। भद्रक और तिहिड़ी ब्लॉक के कई निचले इलाकों और गाँव में पानी भरा हुआ है। कटक में सापुआ और कंटिया नदियों के उफान पर होने से पुराने कटक संबलपुर रोड के कुछ हिस्सों पर आवाजाही प्रभावित हुए है और खेतों में पानी भर गया है। भारी बारिश ने राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और अब कुछ खेल खबरें। अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। अश्मिता ने आज सेमीफाइनल में भारत की ही रक्षिता रामराज को हराया। अश्मिता का मुकाबला कल फाइनल में चीन की क्यू हान से होगा। उधर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा उनका देश कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नदियों का जलस्तर बढ़ने से ओडिशा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में कल अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Ashmita Chaliha to face Shaina's Che Han in women's singles final, a Korea Masters tournament. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory, addressing the 57th convocation of the Indian Institute of Technology, IIT Delhi, today. Mr. Modi urged the students to keep national interest at the center of their decisions and ask themselves how their actions can benefit the country and address its needs. The Prime Minister said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. He cited sectors such as semiconductors, space and drones and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Vikasit Bharat.
3: Aaj Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, इंडस्ट्री

0: श्रोताओं, यह गीत आपने सुना फिल्म पद्मावत से, आवाज नीति मोहन की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ गरिमा के और संगीत संजय लीला भंसाली का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प गीतकार के बारे में बातें करने जा रहे हैं। तमाम बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब क्या करें, इस गीतकार का नाम ही बावरा है। जाहिर है कि बावरेपन की बहुत सारी निशानियां होंगी इनकी इस दास्तान में।

आज के फनकार कार्यक्रम आज गुलशन बावरा पर केंद्रित है, एक ऐसी जुनूनी शख्सियत पर जिन्होंने अपनी शर्तों पर काम किया और फिल्म संसार में जबरदस्त नाम कमाया।

0: गुलशन बाबरा ने जहां कुछ बड़े ही संवेदनशील गाने लिखे, तो दूसरी तरफ उन्होंने कुछ बड़े ही मस्ती भरे गाने भी लिखे।
1: दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता।
0: उन्होंने दोस्ती का फलसफा भी हमें समझाया।

0: लड़के जी, मेरा जन्म 13 अप्रैल 1938 को जिला शेखुपुरा में हुआ, जो आजकल पाकिस्तान में है। साकी वाले दिन मैं जन्मा था। कुछ साल पंजाब में रहे, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ये तकदीर का ही खेल है कि जब पाकिस्तान बना और उसके बाद हम लोग हिंदुस्तान में आए, तो मैं तो अपने माता पिता खो चुका था। लकीली देखिए, हमारी एक बहन है कौशल्या देवी, जो जयपुर में रहती थी।
1: पढ़ाई लिखाई के बाद गुलचन बावरा को शौक लग गया लिखने का और वो चले आए मुंबई।
0: जब मैं आया था बम्बई में 1955 में, तो मुझे लगता है बम्बई की पॉपुलेशन 10 लाख थी, और आज इतनी पब्लिक को देखना, उनसे वाकफियत करना, उनसे बोलना।
1: लेकिन मुंबई वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं आए थे, वो तो आए थे गायक बनने के लिए। आपको बता दें कि गुलशन बावरा को रेलवे में नौकरी मिल गई थी और कोटा में उनकी पोस्टिंग हुई, और उसके बाद वो चले आए मुंबई। सन 1955 में वो मुंबई आए, रेलवे में क्लर्की करते और बाकी समय में फिल्मों में लिखने के लिए और गायकी के लिए जद्दोजहद करते।
0: मुंबई ऐसी नगरी है कि

0: यहां पर आदमी अगर 6 दिन रह जाए, 7वें दिन उसको कोई ना कोई काम मिल जाता है और बंबई उसको अपना लेती है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं इसलिए फिल्म इंडस्ट्री को अपनी माँ से भी ज्यादा इज्जत देता हूँ।
1: यही वो दिन थे जब रेलवे में माल गोदाम की नौकरी के दौरान उन्होंने देखा कि पंजाब से आई मालगाड़ी गेहूं के एक के बाद एक बोरे उतारे चली जा रही है। गेहूं की इस जबरदस्त पैदावार को देखकर गुलशन बावरा के मन का जो गीतकार था वो कह उठा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये कविता उन्होंने अपनी डायरी में लिखकर रख ली और मनोज कुमार को उन्होंने दिखाई, जो उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और गुलशन बावरा के दोस्त भी थे। मनोज कुमार को ये कविता याद रह गई। आगे चलकर जब उन्होंने फिल्म उपकार बनाई तो इस कविता को एक नामी गीत में बदल

0: गुलशन बावरा का नाम गुलशन बावरा कैसे पड़ा, इसकी भी एक कहानी है।
1: बात यूं है, जब मैं नया नया दिल्ली से आया था तो मेरा कुछ रहने या कपड़ों का स्टाइल कुछ ऐसा था जो दिल्ली वाले नीले पीले कपड़े और पहना करता था। तो लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे। एक गीत लिखा, चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जा। तो जब वो गीत रिकॉर्ड हुआ, उसके साथ ही मेरा दूसरा गाना रिकॉर्ड हुआ, तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे, मोहब्बत की राहों में मिलके चले थे। तो एक दफा कल्याण जी भाई के घर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हुआ था, तो उसने बोला, एक तीसरा गाना लिखना था भजन, तो उसने उसको बोला कि ये गाने तुम उसी से ही लिखवाओ जिसने ये दोनों गाने लिखे। तो बोले, ये सामने बैठा हुआ है लड़का, इसी ने लिखा है वो गाना। तो बोले, झूठ मत बोलो कल्याण जी भाई, आपका जोक मारने का स्टाइल है, तो ये क्या लिखेगा, ये तो पिक पॉकेट था, पॉकेट मार था लग बावरा। तो उस फिल्म में शैलेंद्र और हर्षद के भी गीत थे, तो उन्होंने रविंदर भाई से पूछा कि रवीन भाई, ये कल्याण जी करेक्ट बोल रहे हैं कि ये गाने इसी ने लिखे हैं? बोले, हाँ बिल्कुल इसी लड़के ने लिखे। तो बोले, अगर ये गाने इसने लिखे हैं तो मैं इसका ही नाम दूंगा बैनर पर और लिखूंगा गुलशन बावरा, ये बावरा सा लगता है, उस हिसाब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया।
0: तो भाई वहीं से गुलशन कुमार मेहता बन गए गुलशन बावरा। सबसे पहले गुलशन बावरा ने सन 1959 में कल्याण जी वीरजी शाह के संगीत निर्देशन में अपना पहला गीत लिखा, जिसे लता मंगेशकर ने गाया। वो गाना था सन 1961 में गुलशन बावरा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी ताकत से फिल्मों में गाने लिखने लगे। गुलशन बावरा ने सबसे ज्यादा काम आरडी बर्मन के साथ किया। पंचम के साथ उनकी दोस्ती बड़ी ही मशहूर रही है। गुलशन बावरा ने एक एल्बम भी जारी किया जिसमें वो पंचम से जुड़ी दोस्ती की और गाने बनने की कहानियां सुनाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें गुलशन बावरा ने बताया था कि एक दिन बारिश का समय था और पंचम का उनके पास फोन आया। उन्होंने फोन पर गुलशन बावरा को एक धुन दी जो थी चाबू चाबू चिया चिया, चाबू चाबू चिया। गुलशन बावरा ने कहा, ये क्या है, इस पर मैं क्या गाना लिखूं? तो पंचम ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हारे घर पर आता हूं। दरवाजा खटका और पंचम गुलशन बावरा के घर में घुसते हुए गाना गाने लगे। मक्के की रोटी पकाना अंजू, सरसों का साग बनाना अंजू, गीत क्या है

इस तरह से बड़े ही सुंदर और मस्ती भरे माहौल में गुलशन बावरा और पंचम ने कुछ अनमोल गाने दिए। गुलशन बावरा को दो बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, सन 1974 में जंजीर फिल्म के इस गाने के लिए।

0: सन 1968 में फिल्म उपकार के इस गाने के लिए।
1: ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।
0: जरा हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना सुन लीजिए और ये सोचिए कि गुलशन बावरा ने किस तरह के मजेदार और सुरीले गाने दिए फिल्म संसार।

बाबरा बहुत लंबे समय तक लिखते रहे, यहाँ तक कि अजय देवगन के अभिनय वाली हकीकत फिल्म का ये मशहूर गाना सुनिए जो उनके बाद के दौर का गाना है।

0: अखियों के पेच लड़ा ले हम,
1: ले पतियां जबियां पाले हम, अखियों के पेच लड़ा ले हम।
2: लेकिन उनके सबसे मजेदार गाने तो वही हैं जो 70 और 80 के दशक में उन्होंने दिए, जैसे झूठा कहीं का फिल्म का ये गाना।

वैसे आपको बता दें कि गुलशन बावरा पर्दे पर भी नजर आए फिल्म जंजीर के इस गाने में जो शख्स हारमोनियम बजाता हुआ थिरक रहा है वो गुलशन बावरा ही है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था फिल्म संसार को बहुत ही मस्ती भरे और अनमोल गाने देने वाले गीतकार गुलशन बावरा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में।

श्रोताओं को मंजी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। इश्क की दुनिया में मौसम कभी सिर्फ मौसम नहीं होता, कभी बारिश की सर्द उजली नन्ही सी बूंद अपने महबूब की याद बनकर पलकों पर ठहर जाती है। ऐसे में चांदनी भी शरारते कर उसके चेहरे पर नूर की रोशनी बन उसे बे इंतहा खूबसूरत बना देती है। उसकी खामोशी उसकी नज़रें बयां कर देती हैं और मैं चुपचाप उसकी नज़रों को पढ़ लिया करता। पहले दिल के करीब इतना कोई नहीं आया था, कहीं उससे मुझे इश्क तो नहीं हुआ है।

0: मौसम इश्क का एहसास फिजाओं में बिखरी खुशबू संग और भी जज्बाती हो गया। उनकी एक झलक से पलकों ने झपकना ही छोड़ दिया था। उसकी कजरारी नजरों का हौले से कुछ कहना और दिल का मचलना, इन मदमस्त हवाओं की शोखियों ने भी तो कानों में धीमे धीमे से कुछ ऐसा कहा कि आसमान पर बिखरे बादल किसी ख्वाब की तरह नजर आने लगे। ऐसे में दिल हसीन जज्बातों को महसूस करने लगा।
1: तुम

दिल की धड़कनों पर दस्तक देती ये नर्म फुहारों की सरगम, ये डालियों का भीग कर हवाओं का आंचल लपेट कर झूमना, ये बादलों की मखमली उड़ती चादर

अपने साथ ले आई उसकी यादों की बारात। ये चांद सा उजला मुखड़ा वो माथे पर सजी सुर्ख बिंदिया और फैल गई चेहरे पर उसके हया की लाली। तेरे हुस्न के आगे ये फिजाएं भी फीकी लगने लगी।

उसने भी मुझे किस कदर सताया है। मेरे इशारों को समझकर भी ना समझने का ये अंदाज भी बड़ा कातिलाना है। न जाने किस नाम से तुमने मुझे पुकारा, इश्क प्यार मोहब्बत कोई जुल्म तो नहीं, ये तो मोहब्बत की बारिश की रवानगी, जानने की नज़ाकत और दिल की धड़कनों का मधुर संगीत है। इसे तो ख्यालों में ख्वाबों में आने का बस एक बहाना चाहिए।

हर लफ्ज इश्क का कहता है, हर धुन दिल में उतर जाती है, तलाशती है उसे जिसमें चाहत की खुशबू है, बेहिसाब रंग है, एहसास है। कभी मुस्कुराती हैं आंखें तो कभी छलकती हैं, कभी दिल झूम कर गा उठता है, बरस उठता है इन बादलों की तरह। चंचल शोख अदाओं की मस्तियाँ लहरों की तरह मचलने को बेताब रहती हैं। किसी के खिलने किसी के हंसने से महक उठती है सांसों की लय भी। कहीं सितार बज उठते हैं तो कहीं चांदनी सी निखर उठती है।

रिमझिम फुहारों को बनाकर साज ये दिल भी गुनगुनाने लगा है। तुम संग साथ हो तो बारिश में भी मजा आने लगा है। ये खिले गुलाबों से नर्म फूलों की तरह तुम्हारी हंसी, मुझे एहसास हो चला है कि तुम्हें तारीफ की चाहत है। तभी तो ये नजाकत भरे अंदाज, ये आंचल का लहराना, ये कदमों से लिपटी पायल के घुंघरुओं का बजाना, हर मंजर मोहब्बत का एक नया अफसाना बयां करने लगा है।

0: समझ बैठे कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
1: तो अब छाए गीत के इस खूबसूरत सुरों की महफिल से मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। एक प्यार भरे नमस्कार से विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 11 बजे हैं। समाचार अब आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखें। श्री मोदी ने IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक पीढ़ी अपने समय की विशिष्ट चुनौतियों का सामना करती है और अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी निभाती है।
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में नए क्षेत्र उभर रहे हैं जो युवाओं को नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता की पहल विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने IIT दिल्ली में उच्च दक्षता के कंप्यूटिंग केंद्र परम प्रज्ञा का उद्घाटन भी किया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुंबई में आज सहकार नव क्रांति कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी बढ़ रही है और बैंकिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मजबूत फॉरेंसिक सहायता की आवश्यकता है। श्री शाह ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम तथा राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
3: आज हमारे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और NFSU फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जो समझौता हुआ, इससे हमारी छोटी सी छोटी बैंक की हर ब्रांच में भी ये सारी सुविधाएं बहुत कम लागत में देने का काम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इससे साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक, कर्मचारियों का इस दोनों क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान, ये सभी व्यवस्था एक साथ बैंक इन बॉक्स से हो जाएगी।
1: सहकारिता मंत्री ने एक सुरक्षा संचालन केंद्र का भी शुभारंभ किया। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स, वॉल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ भी समझौता किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्टार्टअप के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार का लेन देन शुल्क नहीं देना होगा, जबकि अधिकांश व्यापारी लेन देन भी निःशुल्क रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यदि व्यापारी छूट दर शुल्क लागू किया जाता है तो ये केवल एक निश्चित सीमा से अधिक के सीमित व्यापारी लेन देन पर नाम मात्र दर से लागू होगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य नहीं होगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में तेज बारिश हुई। राजधानी में कल सुबह भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।